FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 11वीं तिथि, तदनुसार 1 जून सन 2026। प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और

0: मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में एक एक सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में एक एक सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलानबटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए, अब प्रस्तुत है विचार बिंदु। आज इस कार्यक्रम में हम आपको प्रभु कृपा विषय पर विचार सुनवा रहे हैं।
2: भगवान को परम आनंद मिलता है अपने भक्तों की सेवा में, जिसका जीवंत उदाहरण है स्वामी विवेकानंद के जीवन की हृदय स्पर्शी घटना। ग्रीष्म की वह झुलसाने वाली धूप थी। स्वामी जी तारीघाट स्टेशन पर उतरे। उनके पास था केवल पहने हुए गेरुए रंग के वस्त्र और किसी का दिया गया निकट के रेलवे स्टेशन का तृतीय श्रेणी का टिकट। एक कमंडलू भी नहीं था। वे तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान पर एक स्तंभ के सहारे जमीन पर बैठ गए। स्टेशन की उस भीड़ में एक अधेड़ बनिया स्वामी जी के सामने दरी बिछाकर छाया में बैठा था। विगत रात्रि वे दोनों एक ही डिब्बे के सहयात्री थे। स्वामी जी को भूखा जानकर भी उसने अपने धन के बल पर स्वयं खूब खाया पिया था। गाड़ी जब कभी स्टेशन पर रुकती, स्वामी जी को प्यास से व्याकुल होने पर भी प्यासा ही रहना पड़ता था, क्योंकि पानी वाले को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उस बनिया ने अपनी प्यास बुझाने हेतु पानी खरीद कर पिया और फिर देने लगा ताना, कितना मीठा पानी है, तुम तो सन्यासी हो, संपत्ति का त्याग कर रखा है, पानी खरीद नहीं सकोगे, इसलिए बिना पानी के प्रसन्न रहो।

0: मेरी तरह धन क्यों नहीं कमाते। जब वे दोनों तारीघाट स्टेशन पर उतरे तो उसने तुच्छतापूर्वक फिर से कहना शुरू किया, मैं पूरियां और लड्डू खा रहा हूँ, परंतु तुम्हें तो धन कमाने की तनिक भी चिंता नहीं, इसलिए तुम्हें भूखे पेट और प्यासे गले रहकर संतोष करना पड़ेगा। स्वामी जी शांत रहे, उनके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। कुछ ही पलों में वहीं का रहने वाला एक व्यक्ति वहां आ पहुंचा। किसी स्वच्छ स्थान पर उसने दरी बिछाई, सब वस्तुएं उस पर रखकर स्वामी जी को पुकारने लगा, आइए बाबा जी, मैं भोजन लाया हूँ, स्वीकार कीजिए। स्वामी जी आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, मित्र मुझे नहीं लगता इसके पूर्व हम कभी मिले भी हैं। उसने कहा, नहीं नहीं, आप वही बाबा जी हैं जिन्हें मैंने देखा है। स्वामी जी की उत्सुकता जाग उठी और बोले, कब देखा है मुझे आपने? वह चढ़ाने वाला बनिया यह सब देख रहा था। नवागत स्वामी जी से बोला, मैं एक मिठाई वाला हूँ, दिन के भोजन के बाद मुझे नींद आ गई, सपने में प्रभु राम जी आए और आपकी ओर इंगित कर कहा कि कल से मेरा यह भक्त भूखा व प्यासा रहने से मैं दुखी हूँ। तुरंत कढ़ी व पूरी बनाकर रेलवे स्टेशन ले जाओ, साथ में मिठाई ठंडा पानी और दरी भी लेते जाना। मैं जाग तो गया परंतु एक सामान्य सपना समझकर करवट बदलते हुए फिर सो गया, किंतु प्रभु राम ने फिर से आकर झकझोरते हुए मुझे जगाया। अब तो मैंने तुरंत कढ़ी बनाई, पूरियां उतारी, मिठाई साथ में रखी, शीतल जल लिया और एक दरी सहित दौड़ता हुआ सीधे यहाँ आया, दूर से ही आपको पहचान भी लिया। अब आइए बाबा जी और भोजन कीजिए, आप बहुत भूखे होंगे। स्वामी जी ने सजल आँखों से और बड़े प्यार से उस भोले भाले व्यक्ति को धन्यवाद दिया, लेकिन वह दयालु इन धन्यवादों को स्वीकार नहीं कर पाया और कहने लगा, ना ना बाबा जी, मुझे धन्यवाद मत दीजिए, यह सब कुछ तो कृपा सिंधु प्रभु राम की इच्छा है। वह निर्दयी बनिया इस घटना से अचंभित हो गया। उसने स्वामी जी से अपने कठोर वचनों के लिए क्षमा मांगते हुए उनकी चरण धूलि माथे लगाई।
1: प्रभु कृपा। अभी आपने इस विषय पर आज के विचार सुने। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आराधना। सुबह की इस पावन बेला में जब सूरज की किरण धरती को छूती है तो मन अपने आप उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में झुक जाता है। इसी आध्यात्मिक ऊर्जा को आपके भीतर जगाने के लिए हम लेकर आए हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। तो चलिए अपने दिल और दिमाग को शांत करके जुड़ जाते हैं इस रूहानी सफर में। आज की आराधना की शुरुआत हम करेंगे देवों के देव महादेव के चरणों में शीश झुकाकर। शिव जो सत्य है, सुंदर है और शिव ही इस ब्रह्मांड के रचयिता है। आइए सुनते हैं आज की पहली प्रस्तुति, शिव कितना सुंदर।

वाकई शिव कितना सुंदर। महादेव की इस महिमा के बाद चलिए अब रुख करते हैं उस नटखट माखन चोर की तरफ, जिनकी बांसुरी की धुन पर पूरी सृष्टि थिरक उठती है, जो हर भक्त के दिल का चैन है। कार्यक्रम आराधना में हमारी अगली प्रस्तुति समर्पित है हमारे प्यारे यशोदा नंदन को।

सचमुच कान्हा का नाम ही इतना प्यारा है कि मिश्रे की तरह कानों में घुल जाता है। कान्हा की इस मोहक छवि को मन में बसाए एक बार फिर लौटते हैं कैलाश पर्वत की ओर, जहां डमरू की डमडम है और गले में नागराज हैं। संकटों को हरने वाले और हर भक्त के कष्ट मिटाने वाले भोलेनाथ का जयकारा लगाते हैं। अगली प्रस्तुति जय शिव शंकर की।

जय शिव शंकर इस भजन के बोल ही नस नस में एक नई ऊर्जा भर देते हैं। आइए अब चलते हैं अगले भजन की तरफ। कहते हैं सृष्टि के कण कण में हर जर्रे में सिया और राम बसते हैं। जहाँ प्रेम है, जहाँ मर्यादा है, वहाँ राम है। तो आइए आराधना कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में सुनते हैं इस बहुत ही खूबसूरत और पावन भजन को।

श्रोताओं, इसी भक्ति गीत के साथ अब वक्त हो गया है इस कार्यक्रम को समाप्त करने का। आज आराधना कार्यक्रम में हमने आपको सुनाई अनीता प्रसाद, शिवानी निगम, सुरेश वाटकर और महेंद्र कपूर के गाए भक्ति गीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है आज की बात। कैलेंडर का पन्ना आज बदल चुका है। मई की तपिश के बाद अब हम कदम रख चुके हैं साल के छठवें महीने यानी जून में। आज है 1 जून। तारीख सिर्फ बदलती नहीं है, अपने साथ इतिहास की कई कहानियों को भी समेटे चलती है। तो चलिए आज के सफर में पलटते हैं इतिहास के कुछ बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण पन्ने और जानते हैं आज का दिन देश और दुनिया के लिए क्यों खास है। सभी श्रोताओं को विभू कृष्णा का प्यार भरा नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज के दिन की सबसे खास बात से। आज पूरी दुनिया विश्व दुग्ध दिवस मना रही है। साल 2001 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO ने इस दिन की शुरुआत की थी। दूध को हमारी थाली का कंप्लीट फूड यानी संपूर्ण आहार माना जाता है, लेकिन ये दिन सिर्फ सेहत का ही नहीं बल्कि उन करोड़ों डेयरी किसानों की मेहनत को सलाम करने का भी है जिनकी वजह से रोज़ सुबह हमारे घरों में चाय की प्याली मुस्कुराती है। और आपको बता दें आज भारत का राष्ट्रीय दुग्ध दिवस नहीं है, वो 26 नवंबर को वर्गीस कुरियन जी के जन्मदिन पर होता है। आज पूरा विश्व इस सफ़ेद क्रांति का जश्न मना रहा है। विश्व दुग्ध दिवस महज एक उत्सव नहीं, ये एक ऐसा आंदोलन है जो दूध को एक महत्वपूर्ण और सुलभ खाद्य स्रोत के रूप में उजागर करता है जो अरबों लोगों का पोषण करता है। दूध आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है जो हड्डियों के स्वास्थ्य विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे ये बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस दिवस का आनंद लें। अब थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में। साल 1835 आज ही का वो दिन था जब कोलकाता मेडिकल कॉलेज ने आधिकारिक तौर पर अपना काम शुरू किया था। ये न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया में यूरोपीय चिकित्सा पद्धति की शिक्षा देने वाला पहला मेडिकल कॉलेज था। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक भारत की बुनियाद आज ही के दिन रखी गई थी। छुक छुक करती रेलगाड़ी के शौकीनों के लिए आज का दिन बेहद खास है। 1 जून 1930 को भारत की पहली लग्जरी और बिजली से चलने वाली डेक्कन क्वीन की शुरुआत मुंबई और पुणे के बीच हुई थी। इस ट्रेन को भारतीय रेलवे की रानी भी कहा जाता है, जिसने शान

और रफ्तार के साथ सफर की परिभाषा बदल दी। बात इतिहास की हो और सिनेमा का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आज बॉलीवुड की उस महान अदाकारा का जन्मदिन होता है जिन्होंने मदर इंडिया जैसी कालजयी फिल्म से सिनेमा जगत में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नरगिस दत्त जी की, जिनकी आज जन्मतिथि है। आज ही के दिन सन 1 जून 1929 को उनका जन्म हुआ था। और इसी के साथ आज की जनरेशन के चहेते अपनी सादगी और बेहतरीन अभिनय से सबका दिल जीतने वाले अभिनेता आर माधवन का भी जन्मदिन है। थ्री इडियट्स के फरहान से लेकर रॉकेट्री के नंबी नारायणन तक उनका हर किरदार बेमिसाल है। श्रोताओं, हम मीडिया और खबरों की दुनिया से आते हैं और ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि दुनिया का पहला

सादगी और बेहतरीन अभिनय से सबका दिल जीतने वाले अभिनेता आर माधवन का भी जन्मदिन है। थ्री इडियट्स के फरहान से लेकर रॉकेट्री के नंबी नारायणन तक उनका हर किरदार बेमिसाल है। श्रोताओं, हम मीडिया और खबरों की दुनिया से आते हैं और ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि दुनिया का पहला 24 घंटे चलने वाला न्यूज चैनल आज ही के दिन 1 जून 1980 को अमेरिका में लॉन्च हुआ। इसने दुनिया भर में खबरों के प्रसारण का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। तो श्रोताओं, इतिहास का ये सफरनामा हमें सिखाता है कि हर दिन कुछ नया रचने का अवसर लेकर आता है। 1 जून का ये दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि शुरुआत चाहे एक कॉलेज की हो, एक ट्रेन की हो या एक न्यूज़ चैनल की, अगर विज़न साफ हो तो वो इतिहास बन जाता है। आज की बात में बस इतना ही। अब विभू कृष्णा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:45 होने वाले हैं। आइए अब सुनते हैं देशगान।

अभी आप देशगान सुन रहे थे FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। विविधा के एक और नए अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में आज हम बात करेंगे हमारे घर आंगन की खुशियों और जिम्मेदारियों की, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। सभी श्रोताओं को विभू कृष्णा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज दो बहुत ही खूबसूरत दिन एक साथ मिल रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाल संरक्षण दिवस भी है और अंतर्राष्ट्रीय अभिभावक दिवस भी, यानी आज बच्चों की मासूमियत की हिफाजत करने का संकल्प लेने का दिन है और माता पिता के निस्वार्थ प्रेम को सलाम करने का भी। कितनी सुंदर बात है ना। एक तरफ वो नन्हे पौधे जिन्हें सुरक्षा की छांव चाहिए और दूसरी तरफ वो मजबूत दरख्त यानी हमारे माता पिता जो खुद धूप में तपकर भी बच्चों को छांव देते हैं। पहले बात करते हैं बच्चों की। 1925 में जिनेवा में बाल कल्याण पर विश्व सम्मेलन के दौरान 1 जून को बाल संरक्षण दिवस के रूप में चुनने की नींव रखी गई थी। इस दिन को मनाने का मकसद सिर्फ उत्सव मनाना नहीं, बल्कि खुद से एक सवाल पूछना है। क्या हमारे आसपास हर बच्चे का बचपन सुरक्षित है? क्या उन्हें शिक्षा, सही पोषण और हिफाजत भरा माहौल मिल पा रहा है? बच्चे हमारे कल की तस्वीर हैं और अगर तस्वीर को खूबसूरत बनाना है तो आज उनके बचपन को संभालना होगा, उन्हें हर तरह के शोषण से बचाना होगा और इस बचपन को सबसे सुरक्षित और खूबसूरत कौन बना सकता है? हमारे अभिभावक, हमारे पेरेंट्स। संयुक्त राष्ट्र ने सन 2012 में 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिभावक दिवस घोषित किया था। ये दिन उन हाथों के सम्मान का दिन है जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया। पहाड़ की चढ़ाई हो या जिंदगी की राह, माता पिता की दुआएं और उनकी मेहनत हमेशा हमारे साथ ढाल बनकर रहती है। खुद के फटे कपड़ों को सिलकर बच्चों के लिए नए कपड़े लाना, अपनी ख्वाहिशों को मारकर

0: बच्चों के सपनों को उड़ान देना, ये जादू सिर्फ पेरेंट्स ही कर सकते हैं। माँ की वो ममता भरी लोरी और पिता का वो अनुशासित लेकिन फिक्रमंद हाथ, इनके बिना हम क्या ही होते। आज का दिन उन्हीं को थैंक यू कहने का दिन है। आज के इस दौर में जब हम आगे बढ़ने की होड़ में इतने व्यस्त हो गए हैं कि कहीं ना कहीं संवाद की कमी आ रही है, बाल संरक्षण सिर्फ कानून से नहीं होता, वो घर के माहौल से शुरू होता है। जब हम बच्चों की बात सुनते हैं, उनके डर को समझते हैं, उन्हें अपनी बात कहने की आज़ादी देते हैं, तब जाकर एक सुरक्षित बचपन का निर्माण होता है। और अभिभावकों के लिए सबसे बड़ा उपहार क्या है? हमारा वक्त, हमारा सम्मान। आज जब आप घर लौटें या अगर आप घर पर ही हैं, तो अपने माता पिता के पास दो मिनट बैठिए, उनका हाथ थामिए और कहिए, आपकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, थैंक यू। यकीन मानिए, आपकी ये एक बात उनकी बरसों की थकान मिटा देगी। तो आइए 1 जून को नया संकल्प लेते हैं, अपने बच्चों को एक ऐसा सुरक्षित और स्वस्थ माहौल देंगे जहां वे बिना किसी डर के मुस्कुरा सकें, और अपने अभिभावकों को वो आदर और समय देंगे जिसके वो हकदार हैं। क्योंकि जब बुनियाद मजबूत होगी, तभी तो भविष्य की इमारत शानदार बनेगी। विविधा के इस अंक में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिना यू मिन आंग लाइंग इत्यनेन सह चर्चां करिष्यति। उभयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकानां सभ्यतानां च संबंधान इतोपि सुदृढीकरणाय वार्तालापः भविष्यति। वार्तालापावधौ म्यांमार भारतयोः मध्ये सुरक्षा संपर्कौ च समेत्य सम्पूर्णेषु विभिन्नेषु विषयेषु चर्चाः भविष्यन्ति। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः गतरात्रौ दिल्ल्याम् अतिथिगणमान्यैः सह मेलनं विहितवान्। अवधेयं यत् म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः शनिवासरे भारतस्य 5-दिवसीय यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्तवान् आसीत्। म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतेः भारतस्य आधिकारिक यात्रायाः कारणात् उभयोः देशयोः मध्ये बहुपक्षीय सम्बन्धः इतोपि सुदृढः भविष्यति इत्यपेक्षास्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रकृति संरक्षणे, स्थानीय समाह्वानानां निराकरणे, अन्य सामाजिक कार्येषु च तेषां प्रेरक उपक्रमाणां उपलब्धीनां च विषये अनेकेषां नागरिकाणाम् उत्कृष्ट योगदानाय प्रशंसा कृता। आकाशवाण्याः स्वकीये मासिक कार्यक्रमे मन की बात इत्यनेन कार्यक्रमेण राष्ट्रम् अभिसंबोधयन् श्रीमोदी झारखंड राज्यस्य रांचीनगरे आयोजिते राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धायां उदयोन्मुख क्रीडकानां उत्कृष्ट प्रदर्शनस्य प्रशंसाम् अकरोत्। प्रवर्तमानायाः उष्णतरङ्गस्य स्थितिं प्रति चिन्तां प्रकटयन् प्रधानमन्त्रिणा जनान् अधिकृतान् उपदेशान् अनुसृत्य सुरक्षितं स्थातुं पूर्वसूचनानुसारं कार्यं च कर्तुं उद्बुद्धवान्।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: पश्चिम बंगाल राज्यस्य मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं करिष्यति। 35 नूतनाः मंत्रिणः मंत्रिमंडले समाविष्टाः भविष्यन्ति। शपथ ग्रहणं प्रातः 11 लोकभवने भविष्यति। नूतनेन समावेशेन शुभेन्दु प्रशासने महत्वपूर्णरूपेण संवर्धनं भविष्यति, येन मई मासस्य 9 दिनांके पंचमंत्रिभिः सह कार्यभारं स्वीकृतमासीत्। अनेन विस्तारेण राज्यमंत्रिमंडलस्य मंत्रिणां कुलसंख्या 41 यावत् वर्धिता भविष्यति। निर्वाचनायोगेन 10 चतुर्विंशतिः राज्यसभासदस्यानां द्विवार्षिकनिर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य घोषणा अद्य क्रियते। भूतपूर्वः प्रधानमन्त्री एच.डी. देवगौड़ा, केन्द्रीयमन्त्रिणौ जॉर्ज कुरियन तथा रवनीतसिंहश्च तेषु सदस्येषु अन्तर्भवन्ति। आन्ध्रप्रदेशे, गुजराते तथा कर्णाटके प्रत्येकस्मिन् राज्ये 44 आसनानि सन्ति। राजस्थाने तथा मध्यप्रदेशे प्रत्येकस्मिन् राज्ये 3 आसनानि सन्ति। झारखण्डे 2 आसने स्थः, मणिपुरे, मेघालये, अरुणाचलप्रदेशे च, मिजोरमे च प्रत्येकस्मिन् राज्ये 1 आसनं रिक्तमस्ति। आयोगस्यानुसारं जूनमासस्य 18 मतदानं भविष्यति, मतगणना अपि तस्मिन्नेव दिने भविष्यति। महाराष्ट्रस्य, तमिलनाडुराज्यस्य, ओडिशाराज्यस्य च प्रत्येकस्य 1 आसनस्य कृते राज्यसभायाः उपनिर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य अपि आयोगेन घोषणा क्रियते। एतत् निर्वाचनमपि अग्रिममासस्य 18 भविष्यति। 91-वर्षीया प्रख्यात गायिकायाः सुमनकल्याणपुरस्य मुम्बईनगरे स्वनिवासस्थाने मृत्युः अभवत्। 50-29 वर्षात् 70-29 वर्षं यावत् चलचित्रसङ्गीतस्य स्वर्णयुगे नैकासु भारतीयभाषासु कृतकार्याणां कृते एषा वयोवृद्धगायिका प्रसिद्धा आसीत्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे अन्तिमस्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलं 5 पराजित्य गतविजेतृदलेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्यनेन अस्य वर्षस्य श्रृंखलापि विजिता इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। 1 का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्मी संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के

0: उलान बटार स्थित गंधन तेगचिनलिंग मठ में अहर्त सारिपुत्र और अहर्त महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोदसुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के मोगली वेंकटरामन ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ये इस वर्ष की प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। रिले स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भूमिका, ताहुरा, सेहनूर और नीरू की महिला टीम ने 4x400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने 3:38.07 के समय के साथ चैंपियनशिप का रिकॉर्ड भी बनाया। काजल, भावना, आरती और निपम ने 4x100 मीटर में 45.05 के समय के साथ रजत पदक जीता। पीयूष राज, सैयद सबीर, रंजीत कुमार और मोहम्मद अशफाक की पुरुष टीम ने 4x400 मीटर में कांस्य पदक हासिल किया। ये चैंपियनशिप विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग इवेंट है। विश्व चैंपियनशिप 5-9 अगस्त तक अमरीका के ओरेगन में यूजीन में आयोजित होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीता। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली ने नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। रात्रि 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन और रात्रि 9:30 पर पब्लिक स्पीक। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से कुछ ही क्षणों उपरांत 7:10 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग भाग 111। 12:30 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार, जिसमें आज चर्चा होगी रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकिल का गोल्डन रूल और अभिभावकों के अनुभव हमारी पूंजी। 1:30 पर आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की कड़ी संख्या 1296। किसान भाई अपना कार्यक्रम खेती की बातें सुनेंगे तिनके 2:30 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे पर्वतीय क्षेत्रों हेतु कीवी की वैज्ञानिक खेती विधि से बागवानी, और जानकारी देंगे डॉक्टर SK वर्मा। युवा साथी अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी सुनेंगे शाम 5:15 पर। आज की बात में आप सुनेंगे अभिभावकों की सीख, जीवन की सीख। उत्तरायण शाम 5:45 पर प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम में सुनिएगा वैश्विक अभिभावक दिवस, विश्व दुग्ध दिवस पर वार्ता, साथ ही मिशन लाइफ कचरा कैसे करें निस्तारण विषय पर वार्ता। वार्ता सुनिएगा इसी कार्यक्रम में ईजा बाबू प्रति हमार कर्तव्य और दायित्व, वार्ताकार होंगी श्रीमती ज्योति पत्नी। 7:00 ग्राम जगत कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आज की बातें में आप सुनेंगे डिजिटल कृषि के लाभ, विश्व दुग्ध दिवस और फसलों पर मौसम परिवर्तन का प्रभाव विषय पर वार्ता।

शास्त्रीय संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 8:30 पर और 11:30 पर। लोकगीत आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर लोकमंजरी कार्यक्रम में, दिन के 2 बजे उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम में और शाम 5:05 पर शैलस्वर कार्यक्रम के तहत। सुगम संगीत का लुत्फ उठाएगा सुबह 10:05 पर सबरंग, दिन के 1:15 पर सुगम संगीत, रात्रि 8 बजे सबरस और रात्रि 10 बजे सुगम संगीत में। शाम 6:45 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा और फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:05 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत निर्झर में, सुबह 10:35 पर सुरबहार में एक ही फिल्म, 11 बजे सैनिकों के लिए, दिन के 12 बजे मेरी पसंद में, दिन के 2:45 पर फिल्म संगीत में आप सुनेंगे एक ही फनकार, अपराह्न 3 बजे सदाबहार फिल्मी गीत में, शाम 7:40 पर फिल्म संगीत में, रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष और रात्रि 10:30 पर फिल्म संगीत में। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग भाग 111।

अयोध्या से आई बारात के जनवासे में सुविधापूर्वक स्थापित हो जाने का समाचार पाकर मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर राजा दशरथ के पास पहुंचे। अवध नरेश ने मुनि की चरण धूलि सिर से लगाकर दंडवत प्रणाम किया। दीर्घ अवधि के बाद राम लक्ष्मण को अपने चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदित करते देख दशरथ जी का हृदय आनंद से भर आया। उन्होंने पुत्रों को उठाकर गले से लगाया। भरत ने छोटे भाई शत्रुघ्न समेत श्री राम को प्रणाम किया और दोनों भाई लक्ष्मण जी से गले मिले। श्री राम को देखकर बारात में आए अयोध्यावासियों का जी जुड़ा गया। राजा दशरथ के चारों पुत्र पिता के पास ऐसे शोभायमान हैं मानो अर्थ धर्म काम तथा मोक्ष ने साक्षात शरीर धारण कर लिए हों। अगवानी में आए पुरोहित शतानंद, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, विद्वान तथा भाटों ने राजा दशरथ और बारातियों की अभ्यर्थना की। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, ये जनकपुरवासियों के लिए विशेष आनंद का बानक बन गया है।

अभी आपने श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग सुना, भाग 111। गायक कलाकार थे सुरेश वाटकर और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 7:20 होने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में हमारे देहरादून केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष उनियाल। पहले मुख्य समाचार। देश भर में आज से खेत बचाओ अभियान शुरू होगा। किसानों को मृदा स्वास्थ्य, प्राकृतिक खेती और कृषि भूमि संरक्षण के प्रति किया जाएगा जागरूक। मसूरी स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में पासिंग आउट परेड के साथ 133 नए अधिकारी आईटीबीपी में शामिल हुए। राष्ट्र सेवा और सीमा सुरक्षा के लिए शपथ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। आईपीएल फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। देशभर में आज से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान शुरू होगा। इसका राष्ट्रीय शुभारंभ मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से किया जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे किसानों और खेती के भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण अभियान बताया है। अभियान के तहत किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग, मिट्टी परीक्षण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और नकली खाद बीज की पहचान जैसे विषयों पर जागरूक किया जाएगा। अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र, ICAR संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय तथा केंद्र और राज्य सरकारों के कृषि विभाग भाग लेंगे। वहीं खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ आज देहरादून के सैसपुर स्थित ढाकी क्षेत्र से किया जाएगा। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि 1 जून से 30 जून तक चलने वाले इस अभियान के माध्यम से किसानों में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान किसानों, कृषि विशेषज्ञों और विभागीय अधिकारियों के साथ संवाद कर कृषि भूमि संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन और कृषि क्षेत्र के विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य कृषि भूमि संरक्षण के साथ साथ किसानों के सम्मान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना भी है। मसूरी स्थित आईटीबीपी अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड के साथ 133 नए अधिकारी बल में शामिल हो गए। 50 सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अधिकारियों ने राष्ट्र सेवा और सीमा सुरक्षा की शपथ ली। समारोह में देश के

0: मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने नव नियुक्त अधिकारियों को आईटीबीपी की गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए पूरी निष्ठा के साथ देश सेवा करने का संदेश दिया।
1: जहां सामान्य जीवन की कल्पना भी कठिन हो जाती है, वहां आईटीबीपी का जवान, उनके ऑफिसर, उनके सभी साथीगण पूरी निष्ठा और दृढ़ता के साथ राष्ट्र की सुरक्षा में और राष्ट्र के प्रति समर्पित राष्ट्रभाव से तैनात रहते हैं।
0: कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी देश की सीमाओं की सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आईटीबीपी के इस बैच में डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य उच्च शिक्षित युवा शामिल हैं। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें युद्ध कौशल, शस्त्र संचालन, आपदा प्रबंधन, मानवाधिकार, सैन्य प्रशासन और नेतृत्व क्षमता से संबंधित विशेष प्रशिक्षण दिया गया। वहीं नवनियुक्त अधिकारियों ने कहा कि वे पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश सेवा के लिए तैयार हैं।
2: बचपन से जैसे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के होने के कारण आईटीबीपी को हम देखते रहते थे, आईटीबीपी का जो काम है, और हम एक एस्पिरेशन भी रखते थे कि आईटीबीपी में एक अधिकारी पद पर आए। तो आज मेरे लिए एक बहुत ही गौरव का पल है कि मैं आईटीबीपी में एक अधिकारी के तौर पर पास आउट हो रहा हूँ।
3: जो फौज की एक तरीके से लाइफस्टाइल है, वो सिविलियन लाइफस्टाइल से थोड़ी हटके है। जो फिजिकल ट्रेनिंग को जिस तरीके से महत्व दिया जाता है, आपकी हेल्थ भी एक तरीके से मैनेज रहती है, और साथ में आप हर वक्त किसी न किसी काम में एंगेज रहते हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि अगर जो अपनी फिजिकल हेल्थ को देखते हुए और साथ में राष्ट्र सेवा के लिए चाहते हैं कि आगे उसमें अपना करियर बनाए, तो फौज में
4: आए। 6 महीने का प्रयत्न है, आखिर आज पासिंग आउट परेड के रूप में हम बाहर आ रहे हैं। एक सिविलियन की तरह आए थे, अभी हम एक अच्छे फौजी की तरह निकल रहे हैं।
0: चमोली जिले की सीमांत नीति घाटी में कल नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का शुभारंभ हुआ। पर्यटन विभाग द्वारा भारतीय सेना और आईटीबीपी के सहयोग से आयोजित इस 3 दिवसीय आयोजन में देश के 28 राज्यों से आए 933 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन के पहले दिन कल रिमखिम नीति मलारी के बीच 75 किलोमीटर अल्ट्रा रन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 117 प्रतिभागियों ने भाग लिया। वहीं मलारी नीति मलारी 42 किलोमीटर अल्ट्रा रन में 118 प्रतिभागी शामिल हुए। इस 3 दिवसीय आयोजन में आज और कल 5, 10 और 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। समापन अवसर पर गमसाली से मलारी के बीच 30 किलोमीटर एमटीबी चैलेंज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।
5: के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं ताजा समाचार। के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा है कि वह अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने बताया कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल रात खेले गए आईपीएल के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। वॉशिंगटन सुंदर ने नाबाद 50 रन की पारी खेली। बेंगलुरु की ओर से रसिक सलामडार ने 3 विकेट लिए, जबकि भुवनेश्वर कुमार और जोस हेजलवुड ने 2-2 विकेट हासिल किए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18 ओवर में 5 विकेट खोलकर 161 रन बनाते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 42 गेंदों में नाबाद 75 रन की मैच विजयी पारी खेली। गुजरात की ओर से राशिद खान ने 2 विकेट लिए। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सीजन के अंत में वैभव सूर्यवंशी को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार दिया गया। उन्होंने 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप भी जीती और सबसे कम उम्र में यह उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी बने। कगिसो रबाडा ने 29 विकेट लेकर पर्पल कैप अपने नाम की। आगामी मानसून को देखते हुए देहरादून जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक

0: में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को मानसून से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए। एक रिपोर्ट।
1: जिलाधिकारी ने सड़क, विद्युत, पेयजल, सिंचाई, नगर निगम, पुलिस और अन्य विभागों को अपने स्तर पर टास्क फोर्स, कंट्रोल रूम और वॉर रूम स्थापित कर जन शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने सड़कों पर संचालित प्राथमिकता वाली जनहित परियोजनाओं के कार्य 7 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही परियोजनाओं के पूरा होने के बाद संबंधित सड़कों की मरम्मत और पुनर्स्थापन का कार्य तत्काल शुरू करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को नदी, नहरों और बरसाती नालों के चैनलाइजेशन कार्य शीघ्र पूरा करने, सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने और जल निकासी व्यवस्था को सुचारू रखने के निर्देश दिए। जलभराव की आशंका वाले क्षेत्रों में त्वरित प्रतिक्रिया दलों की निगरानी बढ़ाने और संवेदनशील स्थानों पर वाटर पंप के साथ टास्क फोर्स तैनात करने को भी कहा गया। जिलाधिकारी ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों की नियमित निगरानी और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने को भी कहा गया। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से पंकज सनवाल, खुलबे।
0: बागेश्वर जिले के पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक से लौटते समय लापता हुए पर्यटक की तलाश कल लगातार दूसरे दिन भी जारी है। पर्यटक की खोज के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर सर्विस, पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा दुर्गम क्षेत्रों में खोजबीन अभियान चलाया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: देश भर में आज से खेत बचाओ अभियान शुरू होगा। किसानों को मृदा स्वास्थ्य, प्राकृतिक खेती और कृषि भूमि संरक्षण के प्रति किया जाएगा जागरूक। मसूरी स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में पासिंग आउट परेड के साथ 133 नए अधिकारी आईटीबीपी में शामिल हुए। राष्ट्र सेवा और सीमा सुरक्षा के लिए शपथ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक मंजरी। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति में सुनिए प्रदीप कुमार का गाया कुमावनी लोकगीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।

0: खुशहाल।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक मंजरी। और आइए अब कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं सुरेश प्रसाद का गाया कुमावनी लोकगीत।

कार्यक्रम लोक मंजरी। और आइए अब कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं सुरेश प्रसाद का गाया कुमावनी लोकगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन ऑलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन ऑलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जन प्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,00,00,000

0: 28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
0: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
2: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
0: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
4: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है।
5: नाना करते प्यार
4: सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा, सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार

0: लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसो रबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां FTA, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार। जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों की राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आपने पंडित मोहन चंद्र पांडे का सितार पर बजाया राग जौनपुरी सुना। आपके साथ तबले पर संगत की थी सुरेश प्रभाकर ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क

0: सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव के

0: पनामा, भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा और उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स आज नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के दूसरे संवाद की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार बैठक में रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाने, सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने, रक्षा उद्योग में साझेदारी, सह विकास और सह उत्पादन के अवसरों पर चर्चा होगी। ये बैठक हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता तथा सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्म संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रहीं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीता है। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को IPL क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप हासिल की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:05 हुए हैं। अब हम हाजिर हैं आपके फरमाइशी पत्रों, व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल और फरमाइशी गीतों के साथ आपके अपने कार्यक्रम गीत निर्झर में। श्रोताओं, आज का सफर बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पिटारे में आपकी पसंद के वो नगमे हैं जो सीधे दिल पर दस्तक देते हैं। तो बिना किसी देरी के सुरों के इस कारवा को आगे बढ़ाते हैं। पर उससे पहले, संगीत की दुनिया में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कानों को नहीं छूती बल्कि रूह में उतर जाती।

एक ऐसी ही रूहानी आवाज जिसने 5 दशकों से भी ज्यादा समय तक भारतीय संगीत जगत को अपनी मिठास से सींचा, वो आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। जी हाँ, हम सब की चहेती और सुरों की मल्लिका सुमन कल्याणपुर जी अब हमारे बीच नहीं रही। संगीत के आसमान का एक चमकता सितारा हमेशा के लिए विदा हो गया। सुमन जी ने उस दौर में अपनी पहचान बनाई जब लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे दिग्गज गायिकाएं मौजूद थी, लेकिन सुमन जी की आवाज की सादगी, उनकी शास्त्रीय समझ और उनके सुरों की पाकीजगी ने उन्हें एक अलग मुकाम दिया। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे और मुकेश जी के साथ मिलकर हमें ऐसे युगल गीत दिए जो आज भी हर पीढ़ी की जबान पर है। आज भले ही सुमन जी शारीरिक रूप से हमारे बीच ना हों, लेकिन उनके गाए सैकड़ों अमर गीत हमेशा हमारे दिलों में उन्हें जिंदा रखेंगे। आइए इस महान फनकार को नम आँखों से अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सुनते हैं उनकी आवाज़ में ये बेहद खूबसूरत और सदाबहार फिल्मी गीत।

इस गीत को सुनते ही पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। सुमन जी और रफ़ी जी की आवाज़ का जादू ही ऐसा है। ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत लिखा हजरत जयपुरी ने और संगीतबद्ध किया शंकर जयकिशन ने। इस गीत को सुनना चाहा था एरोड्रम थाना लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खर्चे ललिता गणेश कार्तिक संजना मालती प्रयाग और देविका चौधरी उत्तर प्रदेश मऊ नाथ भंजन से राजेश कुमार वर्मा प्रीति वर्मा कार्तिक वर्मा आर्यन वर्मा पिंकी रितेश कृष्णा पीहू और इनके समस्त परिवार के सदस्य पांठर करवा से अनिल बुराडे उषा बुराडे प्राची बुराडे अनुश्री बुराडे धनश्री और बल्ला रशा से सूरज जी लोड़े प्राची और एकलव्य। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज की तारीख बेहद खास है क्योंकि आज भारतीय सिनेमा की मदर इंडिया यानी कि हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन अदाकाराओं में से एक नरगिस दत्त जी की जन्मतिथि है। नरगिस जी ने पर्दे पर जो भी किरदार निभाया उसे अमर कर दिया। उनकी याद में हमारे श्रोताओं की फरमाइश पर आइए आपको सुनाते हैं उनकी एक ऐसी फिल्म का गीत जो आज भी प्यार करने वालों की पहली पसंद है। फिल्म चोरी चोरी का गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ों में हजरत जयपुरी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने और फरमाइश आप सभी की परेम सिंह जोड़ा मनजीत कौर जोड़ा करणदीप वरिंदर सिमरन एकम और अमनजीत पंजाब से भेजते हैं। नांदे से गौतम नगर से प्रभाकर जोगले आरती जोगले चंडीगढ़ से सतीश अनेजा विमला अनेजा और बिहार कॉलोनी लोनी से नसीमुल इस्लाम प्रकाशवीर बलौद से कमलेश जयपुरिया टाउनशिप भिलाई से अनुश्री प्रदीप पिंकी और प्रमिला रायगढ़ से लालचंद मिश्रा। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत।

कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और हेमंत कुमार का गाया गीत पतीता फिल्म से। हजरत जयपुरी के लिखे बोलों को सरगम में बांधा है शंकर जयकिशन ने और इस गीत को सुनना चाहते हैं आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश मैंडी, सौरभ साइना और निवान शर्मा। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है चंडीगढ़ मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर और डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज, साहिल और छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय, तुषार, डॉली, बेबी, पूजा, प्रभा देवी। राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से ही योगेश, आशा, नीरज, नीलेश, अंजलि, देवशंकर तामुरिया, अजय, तुषार, डॉली, बेबी और प्रभा। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत।

कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म पाकीज़ा से। शब्द रचना कमाल अमरोही की है और संगीत निर्देशन किया है गुलाम मोहम्मद ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सदानंद और सुभाष। इसी गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना आशीष राजा, चैतन्य मेघा, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना, केशव रिधान खुराना। इसी गीत को सुनना चाहते हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, ईशान पूजा परिहार और सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार पुडाना और इनके साथ ही शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, इकबाल फराती, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन और बिट्टू, हिना कौसर, साजिदा रानी। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत।

अभी हमने पाकीज़ा के उस खूबसूरत मौसम को महसूस किया और अब वक्त है उस आवाज़ की तरफ रुख करने का जो कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, तो कभी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा सिखा जाती है। किशोरदा की आवाज़ की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वे हर जज्बात को सीधे दिल तक पहुंचा देते थे। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जब हम थोड़े मायूस होते हैं या ठहर कर सोचना चाहते हैं तो उनका ये गीत एक मरहम की तरह काम करता है। फिल्म बड़े दिल वाले से आर.डी. बर्मन साहब के संगीत से सजा ये गीत हमें सिखाता है कि वक्त चाहे जैसा भी हो, मुस्कुराकर जीना ही जिंदगी है। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर किशोरदा की आवाज़ में ये सदाबहार नगमा। हरिद्वार लक्सर से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही महराज जहां, सितारगढ़ बिहार से तलत जहानाज, फरहत, रियत, नुजत, वसीम, नदीम, शमीम, अमन, इसी गीत को सुनना चाहते हैं। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, रायगढ़ से अकरम नूर जहां, डब्लू वसीमुल्ला, राजनाथ से याकूब आसमा, यूसुफ इमरान इरफान, रायगढ़ से रेशमा तिवारी।

श्रोताओं इसी गीत को पसंद कर रहे हैं चौखुनटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शनवास सरफराज फरदीन, सुहान अरजान अब्बान और समस्त अब्बासी परिवार।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
2: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का, कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गीत निर्झर में। श्रोताओं, फरमाइशों का ये सिलसिला थमेगा नहीं। अब हम उस दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे हिंदी सिनेमा का गोल्डन एरा कहा जाता है, और जब बात उस दौर की हो तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर और दर्द के बादशाह मुकेश जी को भला कौन भूल सकता है। तो आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं अगला गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म शोर के एक गीत से, जो सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि जिंदगी की पूरी परिभाषा है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत, संतोष आनंद जी के बेहद गहरे बोल और इन दो महान फनकारों की आवाज। इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है ग्राम बनघेरा से, छत्तीसगढ़ से योगेश, आशा, नीलेश, नीरज, अंजलि, जालना जाफराबाद से सुधाकर, राजदेव, जुक्की, साक्षी, सचिन, प्रथमेश देशमुख, स्वाति, स्वर्णी, प्रणाली, सानवी देशमुख, जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन फुटानी चौक नरहन स्टेट से इस गीत को सुनना चाहते हैं। ललन मिश्रा, उदयकांत, आमन पारसर, बेबी आराध्या, लल्लू पंडे। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत।

इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी थी छत्तीसगढ़ चुड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खदीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, फर आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा।

एक प्यार का नगमा है कि गहरे जज्बातों के बाद सदाबहार यादों का ये कारवां अब एक ऐसे महान सिनेमाई जादूगर के मुकाम पर आ पहुंचा है जिन्होंने अपनी फिल्मों से भारतीय समाज के पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों को बेहद संजीदगी से पर्दे पर उतारा। आज की तारीख यानी 1 जून हिंदी सिनेमा के दिग्गज निर्माता और निर्देशक मोहन कुमार जी की जन्म तिथि को भी है। अनपढ़, आई मिलन की बेला, अमीर गरीब और अवतार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले मोहन कुमार जी को एक ऐसे निर्देशक के रूप में याद किया जाता है जो दशकों तक याद किए जाएंगे और दर्शकों की नब्ज पहचानने के लिए जाने जाते थे। मोहन जी के निर्देशन के इसी सुनहरे सफर की शुरुआत हुई थी साल 1961 में आई उनकी बतौर निर्देशक पहली फिल्म जिसका नाम था आसका पंछी। इस फिल्म में जुबली स्टार राजेंद्र कुमार और खूबसूरती की मल्लिका वैजयंती माला जी मुख्य भूमिका में थे। फिल्म जितनी बड़ी हिट थी इसके गाने आज भी उतने ही तरोताज़ा लगते हैं। हमारे बेहद ख़ास श्रोताओं ने आज उनकी जन्मतिथि और उनको याद करते हुए इस फिल्म के गीत को सुनने की इच्छा जाहिर की है। तो आइए आपको सुनवाते हैं आसका पंछी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। शैलेंद्र के लिखे बोलों को सरगम में बांधा है शंकर जयकिशन ने और इस गीत को सुनना चाहते हैं। पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, उत्कर्ष नेताम, इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है अल्मोड़ा से बाबा फरहान, संजू, सानिया, नीलोफर, शब्बो, नैनीताल से मुकेश, नीलेश, आराध्या और संतोषी, इसी गीत के लिए हमें फरमाइश आई है ग्राम लोहारी खंडवा से राजेश कुमार धनजे, राहुल धनजे, विशाल धनजे, शीला गायत्री, मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद की। तो लीजिए आप सभी लोगों की पसंद पर आपका गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। फरमाइशी फिल्मी गीतों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अगला फरमाइशी गीत आप सबको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में दिल एक मंदिर फिल्म से। हजरत जयपुरी के लिखे बोलों को सरगम में बांधा है शंकर जयकिशन ने और इस गीत को सुनना चाहते हैं बलिया से ओम प्रकाश, उषा, अमित कुमार राय, गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी, प्रांजल, अवधेश, प्रीति, नवनीत, पानीपत से नरेश मनोत्रा, लक्ष्य, लाडो, कोयल, नानक चंद मनोत्रा, रोहतक से पीयूष सिक्का, कनिका सिक्का, डुग्गू और कोयल, बिहारी कॉलोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन, कुमारी वली और डब्लू, सरगुजा मैनपाट से सोनिया, सोनम, आदिबा। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत।

और आइए श्रोताओं, अब कार्यक्रम के समापन में आपको सुनवाते हैं भरोसा फिल्म का गीत लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण के लिखे बोलों को सरगम में बांधा है रवि ने और इस गीत को सुनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर शेख, शमा परवीन, अलकरम बेगम, अफसाना महजबी शेख, मिर्जा नसरीन, पश्चिम बंगाल रानीगंज से रेहान शर्मा, रोशनी, रवि, इंदर, करणदीप और भूपेंद्र। इसी गीत के लिए फरमाइश है मध्य प्रदेश से हुकुम चंद कटारिया, पिंटू बाबूलाल, हरी निवास, कृष्ण विराज, अलरव, कल्लिका काव्यांशी और प्रभा कटारिया।

0: तो श्रोताओं, सफ़र चाहे कितना भी लंबा हो, खूबसूरत रास्ते और अच्छे हम सफ़रों के साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। आज की हमारी ये मुलाकात भी कुछ ऐसी ही रही। बातों बातों में घड़ी की सुई हमें याद दिला रही है अब विदा लेने का वक्त आ गया है। लेकिन जाने से पहले दिल में एक उम्मीद और चेहरे पर एक मुस्कान छोड़ जाना ज़रूरी है। और जब बात ज़िंदगी की हो तो सबसे बड़ी ताकत होती है भरोसा। खुद पर भरोसा, अपनों पर भरोसा और आने वाले एक बेहतर कल पर भरोसा।
1: कितनी देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी,
2: आज की मुलाकात बस इतनी।
0: तो आज की इस मुलाकात को अब हम यहीं विराम देते हैं इस वादे के साथ कि अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।

0: अभी आप फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्जर सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेष

0: देशों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा और मतगणना भी उसी दिन की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले

0: के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा और मतगणना भी उसी दिन की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था और इस विस्तार के साथ ही राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्म संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रहीं। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार तथा तुमने पुकारा और हम चले आए शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीत लिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम की पहली पेशकश में सुनिए आशा भोसले का गाया गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दस लाख की लॉटरी मुझे,
3: फर्जी ऑफिस से सावधान।
4: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: बिना आईएसआई के निशान वाला कोई सामान मत लाया करो।
6: बिना सामान चेक किए शुरू मत हो जाया करो। सारा सामान आईएसआई का ही है।
5: जब से आपने आईएसआई के निशान वाला सामान लाना शुरू किया है, हमारी तो झगड़ा ही खत्म हो गया है।
6: ये तो है। आईएसआई के निशान वाला सामान लाए,
5: झगड़ा मिटाए,
6: विश्वास जगाए।
7: इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरंग, और आइए अब आपको सुनवाते हैं पंकज उदास का गाया गीत।

0: सोनू निगम के गाए इसी गीत के साथ हमारा आज का सबरंग कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 10:30 होने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में हमारे देहरादून केंद्र से प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी देहरादून है। अब आप आशुतोष उनियाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के आवास पर जाकर उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, यह सम्मान श्री कोश्यारी के दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन, राष्ट्र सेवा और सामाजिक सरोकारों के प्रति समर्पित योगदान का राष्ट्र स्तर पर किया गया सम्मान है। श्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन से लेकर प्रदेश के विकास और राष्ट्र निर्माण की विभिन्न जिम्मेदारी के निर्वहन में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि श्री कोश्यारी ने जो आदर्श स्थापित किए हैं वे नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और उनका राष्ट्र के प्रति समर्पण सदैव समाज को प्रेरित करता रहेगा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के देवलगढ़ स्थित मां राजराजेश्वरी मंदिर के समीप सड़क से गुफा तक पहुंच मार्ग व सौंदर्यीकरण कार्य और गौरा देवी मंदिर समूह परिसर में प्रतिधारक दीवार का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन कार्यों से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। डॉक्टर रावत ने कहा कि राज्य सरकार देवभूमि की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण व संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस दौरान उन्होंने श्रीकूट क्षेत्र में प्रस्तावित नवीन पशु चिकित्सालय भवन के लिए चयनित भूमि का भी स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को भवन निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आधुनिक पशु चिकित्सा सुविधाओं के विकास से क्षेत्र के पशुपालकों को लाभ मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।

0: बागेश्वर जिले के पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक से लौटते समय लापता हुए पर्यटक की तलाश कल लगातार दूसरे दिन भी जारी है। पर्यटन की खोज के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर सर्विस, पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा दुर्गम क्षेत्रों में खोजबीन अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस उपाधीक्षक अजय शाह ने बताया कि कठिन भूभाग और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए खोज अभियान में ड्रोन कैमरों की भी सहायता ली जा रही है।
1: सही, जब 29 तारीख को जब ये पिंडारी से वापस लौट रहे थे, मलियादौड़ पे जब ये पहुंचे, तो इन्होंने अपने गाइड से कहा कि मैं फोटोग्राफी करके आता हूं। जब ये वापस नहीं आया तो ये गाइड थे, इन्होंने वापस उस स्थान पर देखा तो वहां नहीं मिले। उन्होंने फिर खाती में आके फॉरेस्ट को बताया मिसिंग के बारे में। इसके क्रम में हमारे द्वारा पुलिस की टीम है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और फायर की टीम का सर्च अभियान चल रहा है। ड्रोन की टीम भी इसमें हमारी कार्रवाई कर रही है। अभी तलाश जारी है।
0: केदारनाथ धाम यात्रा को सुरक्षित, सुचारू और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए प्रभारी निरीक्षक नीलाभ खाली की अध्यक्षता में सोनप्रयाग में स्थानीय हितधारकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में बढ़ती श्रद्धालु संख्या को देखते हुए यातायात प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था, शटल सेवा संचालन, बाजार क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण और यात्रियों की सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई। प्रभारी निरीक्षक ने आपदा और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित समन्वय और स्थानीय स्तर पर जनसहयोग सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने, मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण रोकने और आपातकालीन वाहनों के लिए मार्ग हमेशा खुला रखने के निर्देश भी दिए गए। चमोली स्थित विश्व धरोहर व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। क्षेत्रीय रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि सुबह से ही पर्यटकों का पंजीकरण शुरू हो गया था। उन्होंने बताया कि अभी तक 65 से अधिक पर्यटक फूलों की घाटी की सैर के लिए रवाना हो चुके हैं। घाटी में 300 से अधिक प्रजातियों के पुष्प व दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। देश विदेश से आने वाले पर्यटक इस अनोखी प्राकृतिक धरोहर की दीदार के लिए हर वर्ष बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल इस घाटी के खुलने से स्थानीय पर्यटन व्यवसाय को भी नई ऊर्जा मिली है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पतियों के संरक्षण के लिए फूलों को तोड़ने व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों से बचने की अपील की है। मसूरी स्थित आईटीबीपी अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड के साथ 133 नए अधिकारी बल में शामिल हो गए। 50 सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अधिकारियों ने राष्ट्र सेवा और सीमा सुरक्षा की शपथ ली। समारोह में देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों को आईटीबीपी की गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए पूरी निष्ठा के साथ देश सेवा करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी देश की सीमाओं की सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर बहार।

स्वागत है आप सभी का श्रोताओं हमारे इस बेहद खास शो में, जहां सुरों की महफिल भी सजेगी और यादों के चिराग भी जलेंगे। दोस्तों, आज तारीख है 1 जून। आज का दिन भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक बेहद मुकद्दर दिन है। आज के दिन ही इस दुनिया में एक ऐसी शख्सियत आई जिसने अपनी आंखों की मासूमियत, चेहरे के नूर और अपनी बेमिसाल अदाकारी से ब्लैक एंड वाइट जमाने के पर्दे पर अनगिनत रंग भर दिए। जी हाँ, आज जन्मतिथि है बॉलीवुड की मदर इंडिया यानी हम सब की प्यारी नरगिस दत्त जी की। नरगिस जी का जिक्र आते ही जहन में जो सबसे पहला नाम और चेहरा उभरता है वो है राज कपूर साहब का। इन दोनों की जोड़ी ने पर्दे पर जो जादू बिखेरा उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। तो आज इनकी जन्मतिथि पर हम उनकी एक ऐसी फिल्म के सफर पर चलेंगे जिसका हर गाना अपने आप में एक इतिहास है। सभी श्रोताओं को विभू कृष्णा का प्यार भरा नमस्कार।

नरगिस जी की पाकीज़गी अदाकारी को नमन करते हुए सीधे चलते हैं फिल्म श्री 420 की तरफ और सुनते हैं इस फिल्म का

श्रोताओं, इस फिल्म में जहां एक भोला भाला राज यानी राज कपूर शहर आता है और उसे मिलती है विद्या यानी नरगिस जी। विद्या जो सच्चाई और सादगी की प्रतीक है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो बैकग्राउंड में दिलकश आवाज गूंजती है, ये सदाबहार नगमा दिल का हाल सुने दिलवाला। क्या सादगी थी उस दौर के गीतों में। फिल्म श्री 420 में नरगिस जी का जो किरदार था विद्या का, वो सिर्फ एक नाम नहीं था, वो सही मायनों में राज के लिए एक गाइड, एक शिक्षक की तरह था। जब राज शहर की चकाचौंध और अमीरी के झूठे जाल में फंसने लगता है, तब विद्या ही उसे सही रास्ता दिखाती है। सुनिए इस फिल्म का गीत।

0: हम
1: श्रोताओं, इस कहानी में सिर्फ सीख नहीं थी, इसमें अल्हड़पन था, तकरार थी और था मासूमियत सा इकरार। और जब मोहब्बत का इकरार हो तो भला बारिश का होना तो लाजमी है ना। पर्दे पर वो काली रात, एक छाता, झमाझम बरसती बारिश और उस छाते के नीचे नरगिस और राज कपूर, भारतीय सिनेमा का सबसे आइकॉनिक विजुअल, शैलेंद्र साहब के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत और मन्ना डे, लता मंगेशकर की आवाज़ें।

मैं ना रहूँगी, तुम ना रहोगे, फिर भी रहेंगी निशानियाँ। वाकई आज नरगिस जी हमारे बीच नहीं हैं, राज साहब भी नहीं हैं, लेकिन पर्दे पर उनकी ये निशानियाँ हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुकी हैं। श्रोताओं, श्री 420 सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये आज़ाद भारत के बदलते समाज, गांवों से शहरों की तरफ आते लोगों के सपनों और उनके संघर्षों का आईना थी। फिल्म में एक तरफ जहां अमीरी का खोखलापन था, वहीं दूसरी तरफ फुटपाथ पर रहने वाले आम लोगों की वो अमीरियत थी जो पैसों से नहीं, दिलों से नापी जाती थी। जब राज भटक जाता है तो विद्या का दिल टूट जाता है। उस टूटे दिल की कसक को नरगिस ने अपनी आंखों से जिस तरह बयां किया, उसे देख पाना आज भी आंखें नम कर देता है। और उसी फिल्म के सीन के बीच एक गाना चलता है, सुनिए इस गीत को।

शोदाव सच्ची मोहब्बत की यही तो खासियत होती है कि वो कभी हार नहीं मानती। फिल्म के अंत में विद्या की वही निश्चल मोहब्बत राज को वापस अच्छाई के रास्ते पर ले आती है। नरगिस जी विद्या के किरदार में जो गरिमा, जो ठहराव और जो सच्चाई फूकी, उसी ने इस फिल्म को एक मास्टरपीस बनाया। आज नरगिस दत्त जी की जन्मतिथि पर उनके अभिनय के इस खूबसूरत दर्पण को देखते हुए हमारा दिल बस यही कहता है कि सिनेमा के फलक पर आपके जैसा सितारा न कभी था न कभी होगा। तो श्रोताओं, आज की हमारी ये संगीतमय और यादों की मुलाकात आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। अब शो के समापन का वक्त हो चला है और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं फिल्म श्री 420 के उस गाने के साथ जो जिंदगी को एक उत्सव की तरह जीने का हौसला देता है। लता जी।

तो श्रोताओं, सुर बहार कार्यक्रम में एक ही फिल्म में आज हमने आपको सुनाए क्लासिक फिल्म श्री 420 फिल्मों के गीत और याद किया नरगिस दत्त जी को उनकी अदाकारी के लिए। यादों को संजोते रहिए और अब मुझे विभू कृष्णा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, दिल है कि मानता नहीं फिल्म से अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में। फैज अनवर के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में सुनिए उस्ताद अलाउद्दीन खान का सरोद पर बजाया राग अलैया बिलावल।

जो जीता वही सिकंदर फिल्म के इसी गीत के साथ हमारा आज का सैनिकों के लिए कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। जय हिंद।

0: उस्ताद अलाउद्दीन खां का सरोद पर बजाया राग अलहैया बिलावल अभी आप सुन रहे थे। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। मध्याह्न के 12 बजे हैं और इस समय श्रोता सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद।

मेरी पसंद के सभी श्रोताओं को अंजू पांगते का स्नेहिल नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरी पसंद में। चुप तुम रहो, चुप हम रहें, एक खूबसूरत शाम और मेहमानों से सजी महफिल, और इस महफिल में गीत गाता एक क्लब सिंगर जिसने भी 1996 की हिंदी फिल्म इस रात की सुबह नहीं देखी। इस फिल्म को देखा है तो उन्हें ये गीत शायद याद हो। पूरी फिल्म में वो क्लब सिंगर सिर्फ और सिर्फ इस गाने में ही नजर आता है। दुबला पतला सा एक युवक जो कुछ सालों में ही तमिल फिल्मों का सुपरस्टार और हिंदी फिल्मों का जाना माना अभिनेता बना। अपनी खास व्यक्तित्व और बेहद कमाल की अदायगी से वो हर दिल अजीज हीरो के रूप में स्थापित हुआ। उस जाने मानी मशहूर अभिनेता का नाम है आर माधवन। आज आर माधवन को हम खास तौर पर याद कर रहे हैं। 1 जून है आज और आज है आर माधवन का जन्मदिन, तो उन्हें ढेर सारी हम शुभकामनाएं देते हैं उनके जन्मदिन पर। और आज का मेरी पसंद कार्यक्रम उन्हीं की अभिनीत फिल्मों से सजा सवरा है।

जमशेदपुर में हुआ। उनके पिता रंगनाथन टाटा स्टील में कार्यरत थे और उनकी माता का नाम सरोज है, जो कि बैंक में काम किया करती थी। उनके परिवार में शिक्षा और अनुशासन का बड़ा ही एक अहम स्थान था। और जब माधवन युवा अवस्था में आए तो उनका सपना अभिनेता बनना नहीं, बल्कि वो सेना में जाना चाहते थे और एनसीसी के उत्कृष्ट कैडेट हो रहे और कई राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में उन्होंने भाग भी लिया। हालांकि आयु सीमा और अन्य कारणों से वो सेना में भर्ती नहीं हो सके। बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि ये उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था और फिर उन्होंने ज़िंदगी को अलग ढंग से देखा और अभिनय की ओर उनके कदम बढ़े। और ये भी शायद कम लोग जानते हों कि वो जब फिल्मों में आए उससे पहले वो पब्लिक स्पीकिंग सिखाते थे, व्यक्तित्व विकास की वो कक्षाएं चलाते थे और कॉरपोरेट प्रशिक्षण भी दिया करते थे। और इन्हीं कक्षाओं में उनकी मुलाकात उनकी पत्नी जो बाद में बनी सरिता बिरजे से हुई। तो श्रोताओं, उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। 1990 के दशक में मुंबई में फिल्मों में आसानी से उन्हें काम नहीं मिला। उन्होंने कई विज्ञापनों और टीवी धारावाहिकों में छोटे छोटे रोल किए और ये भी उनसे कहा गया कि वो पारंपरिक फिल्मी हीरो जैसे नहीं दिखते हैं। बहरहाल उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी और छोटे पर्दे पर वो अपने कदम आगे बढ़ा चुके थे। और 90 के दशक में धीरे धीरे एक के बाद एक उन्हें अच्छे धारावाहिकों में काम करने का मौका मिला, जैसे बनेगी अपनी बात, साया, घर जमाई, सी हॉक्स जैसे कई धारावाहिकों में उन्होंने भूमिकाएं निभाई और इनके ज़रिए वो घर घर में अच्छे खासे मशहूर हो गए।

0: फिल्म इन्फर्नो और 1998 में आई शांति शांति शांति नाम की एक कन्नड़ फिल्म से किया था, और साल 1997 में ये फिल्म आई थी, और फिर उन्होंने 2001 में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ रहना है तेरे दिल में फिल्म से डेब्यू किया, और इस फिल्म में उनके किरदार मैडी को लोगों ने बहुत सराहा। दिया मिर्ज़ा इस फिल्म में अभिनेत्री की भूमिका में नजर आई थी।
1: रीना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।
2: अभी?
1: नहीं, शायद कल कहता हूँ। रीना, मैं एक बार फिर कहता हूँ, मैं आज का दिन कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं चलता हूँ।

श्रोताओ, रहना है तेरे दिल में फिल्म के इस गाने को आज भी जब हम सुनते हैं तो तरोताज़ा हो जाते हैं। और इस फिल्म में मैडी का उन्होंने जो किरदार निभाया था वो आज भी यादगार है। लोग उन्हें आज भी आर माधवन को मैडी के नाम से जानते हैं। उसके बाद 2005 में रामजी लंदन वाले ये फिल्म आई। ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी और इस फिल्म में आर माधवन ने अभिनय के साथ साथ कहानी और पटकथा लेखन में भी योगदान दिया, यानी लेखन में भी उनका इंटरेस्ट है। और इसके बाद मशहूर फिल्म आई साल 2006 में रंग दे बसंती। इस फिल्म में माधवन फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय राठौर की भूमिका में नज़र आए और उनका किरदार फिल्म की कहानी का महत्वपूर्ण मोड़ बना था।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: तो शुरू 2007 में एक और चर्चित फिल्म आई गुरु, और इस फिल्म में एक पत्रकार की भूमिका में नजर आए माधवन। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन भी मुख्य भूमिकाओं में थे। फिर आया साल 2009 और इस साल आई बेहद लोकप्रिय चर्चित फिल्म 3 इडियट्स, और ये भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है। और इस फिल्म में माधवन ने फरहान कुरैशी का किरदार निभाया, जो अपने सपनों और परिवार की अपेक्षाओं के बीच संघर्ष करता है, और इस फिल्म में उनकी भूमिका को बेहद सराहा गया। साथ में आमिर खान, शर्मन जोशी, करीना कपूर जैसे दिग्गज कलाकार थे। इनके बीच आर माधवन ने अपनी एक खास छवि से दर्शकों को बेहद प्रभावित किया।

तो श्रोताओं, मणिरत्नम की तमिल फिल्म अलाई पायुथे से डेब्यू करने वाले आर माधवन ने रन विक्रम वेधा और आया एथुजू जैसी तमिल की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया और साल 1999 में उन्होंने सरिता बिरजे से विवाह किया। उनका एक पुत्र है वेदांत माधवन, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर तैराक हैं और अपने परिवार को माधवन बहुत महत्व देते हैं। कई बार अपने बेटे वेदांत माधवन के खेल करियर के लिए उन्होंने समय निकाला और इस उनकी अपनी ओर से उन्होंने अपने बेटे को फुल सपोर्ट किया। वेदांत ने अंतर्राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिताओं में भी पदक जीते हैं और उनकी यूं तो कई फिल्में हैं जिसमें उनका दमदार अभिनय हमने देखा है। साल 2011 में तनु वेड्स मनु और 2015 में तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, इन दोनों फिल्मों में कंगना रनौत के साथ आर माधवन की जोड़ी को बहुत सराहा गया और ये फिल्में बड़ी व्यावसायिक सफल फिल्मों में से एक रहीं और माधवन के करियर की सबसे सफल फिल्मों में भी ये दोनों ही फिल्में गिनी जाती हैं। और इस फिल्म में, दोनों ही फिल्मों में माधवन के अभिनय की लोग मिसाल देते हैं।

जहां सकारात्मक भूमिकाओं से उन्होंने आर माधवन ने दर्शकों का दिल जीता, वहीं उन्होंने नकारात्मक भूमिका निभाई शैतान फिल्म में, जो कि साल 2024 में आई, और इसमें उन्होंने एक रहस्यमय खतरनाक खलनायक की भूमिका निभाई जिसे दर्शकों ने बेहद सराहा। और द रेलवे मैन साल 2023 में भोपाल गैस त्रासदी की पृष्ठभूमि

बनी इस सीरीज में भी उनके बेहतरीन अभिनय की चर्चा हुई। तो माधवन, जहां रोमांटिक फिल्मों की बात करें, रहना है तेरे दिल में या अन्य फिल्में हो, कॉमेडी की बात हो तनु वेड्स मनु में और थ्री इडियट्स में उनका एक अलग किरदार, और थ्रिलर की बात करें तो विक्रम वेधा जैसे विविध आयामों से सजी फिल्मों में उन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय का लोहा मनवाया है। साल 2022 में रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, इस फिल्म का उन्होंने निर्देशन भी किया और इस फिल्म में अभिनय के साथ साथ लेखन और निर्माण भी किया। तो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं आर माधवन।

श्रुतों, आर माधवन पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक विनम्र, पढ़े लिखे और अनुशासित अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। उनकी यही पहचान है। फिटनेस की बात हो, शिक्षा की बात हो या परिवार की, इन सभी को वो सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। अपने कई साक्षात्कारों में उन्होंने ये भी कहा है कि सफलता से अधिक ज़रूरी है लगातार सीखते रहना और अपने काम को बेहद ईमानदारी के साथ करना। वो हिंदी, तमिल, अंग्रेज़ी और अन्य भाषाओं में बोल सकते हैं और दक्षिण भारतीय और हिंदी दोनों ही फिल्म उद्योगों में समान रूप से सफल अभिनेताओं में गिने जाते हैं आर माधवन। तो आज एक बार पुनः आर माधवन को उनके जन्मदिन की हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और यही कामना करते हैं वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आगे भी कई फिल्मों से हमें एंटरटेन करते रहें।

0: स्वागत है बहनों आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम है संसार में, और आप सभी को आपकी रेडियो सखी सारिका शाह का स्नेह भरा नमस्कार। कैसी हैं बहनों? हम तो यही आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और बड़ी बेसब्री से हमारे कार्यक्रम का इंतजार कर रही होंगी। बहनों, आपका यही प्यार और विश्वास हमारे साथ यूं ही सदा बना रहे, और आपके इसी प्यार के साथ करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत। बहनों, आज है विश्व दुग्ध दिवस। ये दिवस दूध पर ध्यान केंद्रित करने, स्वस्थ आहार और डेयरी उत्पादों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। ये दिवस ये दर्शाता है कि दूध एक वैश्विक खाद्य पदार्थ है। अब बहनों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। बहनों, हम सभी को शॉपिंग करना पसंद ही है, और जब हम बाज़ार जाते हैं तो ऐसा लगता है ये भी खरीद ले, वो भी खरीद ले, लेकिन उसके बाद जो सामान हमारी ज़रूरत का है वो तो काम आता है, और बाकी ऐसा लगता है कि इसे हम क्यों लाए। तो बहनों, सामान ऐसा खरीदें जो ज़रूरत का हो और उसका बाद में इस्तेमाल किया जा सके। तो बहनों, आज हम रियूज और रिसाइकिल का गोल्डन रूल विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। बहनों, अपशिष्ट प्रबंधन के 3 R सिद्धांत को 2000 के दशक की शुरुआत में विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य हम सभी को कचरे की मात्रा को कम करने और अनावश्यक रूप से उत्पादित वस्तुओं की मात्रा को घटाने में मदद करना है। बहनों, 3 R का अर्थ है रिड्यूस मतलब कम करना, रीयूज पुनः उसका उपयोग करना, और रिसाइकल पुनः चरकन करना। ये 3 छोटे शब्द अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहनों, हमें अपने द्वारा उत्पादित कचरे की मात्रा को कम करने का प्रयास करना है, और अनावश्यक वस्तुओं की खरीद को भी कम करना है। बहनों, अगर कोई वस्तु खरीदनी ही पड़े तो उसके उपयोग के बाद उसे किसी और काम में लाने का प्रयास करें। यदि उसका पुनः उपयोग संभव ना हो तो अंतिम रूप से उसे आप रिसाइकल करें। हालांकि बहनों, रिसाइकल को अंतिम चरण माना गया है, फिर भी ये प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहनों, जब हम बाजार जाती हैं तो केवल वो ही सामान खरीदें जिसकी हमको ज़रूरत हो, और प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े और जूट के बैग का इस्तेमाल करें, तो इस तरह से हम सामान को रीयूज कर सकती हैं। बहनों, रीयूज करने के लिए जैम, सॉस और कॉफ़ी की खाली कांच की बोतलों को धोकर हम उसमें मसाले और अचार रखने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। बहनों, घर में पुरानी टी शर्ट, जीन्स तो सभी के घर में होती है, तो हम उससे डोर मैट, कुशन कवर और शॉपिंग बैग बनाकर इसका पुनः उपयोग कर सकती हैं। और बहनों, आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से हम अलग अलग आइडियाज़ लेकर सामान का रीयूज कर सकती हैं। बहनों, रिसाइकल करने के लिए भी कुछ इस तरह से हम वस्तुओं को नया रूप दे सकती हैं। घर में पुराने अखबारों का इस्तेमाल लिफाफे और बच्चों के क्राफ्ट वर्क के लिए आसानी से कर सकती हैं, और जो किचन में हमारी सब्जियों के छिलके और चाय की पत्तियों को एक जगह इकट्ठा करके उसकी जैविक खाद बनाकर हम अपने बगीचे के पौधे के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इसी तरह बहनों, हम इस सिद्धांत की शुरुआत अपने घर से आसानी से कर सकती हैं। बहनों, इसके द्वारा हम सभी सामूहिक रूप से उत्पादित कचरे की मात्रा को कम करने में मदद देते हैं, जिससे हम जलवायु परिवर्तन से निपटने में अपना योगदान तो दे ही सकते हैं। बहनों, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के इस महत्व को समझते हुए अब कार्यक्रम में लेते हैं छोटा सा अंतराल।
1: सामान मत लाया करो,
2: बिना सामान चेक किए शुरू मत हो जाया करो, सारा सामान ISI का ही है।
1: जब से आपने ISI के निशान वाला सामान लाना शुरू किया है, हमारी तो झगड़ा ही खत्म हो गया है।
2: ये तो है। ISI के निशान वाला सामान लाएं,
1: झगड़ा मिटाएं,
2: विश्वास जगाएं।
3: जागो ग्राहक में जागो।
0: बहनों, हमारे माता पिता हमारे लिए एक कृतज्ञता का विषय है। 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार वैश्विक माता पिता दिवस की घोषणा की। तब से ये दिवस विश्व भर के माता पिता को सम्मानित करने के लिए

अभी श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी कार्यक्रम घर संसार।

0: वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। भले ही बहनों हम में से कई लोगों को अपने कमरा साफ करने के लिए बार बार टोकना पसंद ना आया हो, लेकिन धूल मिट्टी से निपटने में मदद करने के लिए कोई ना कोई तो हमारे साथ था ही। सच कहें तो बहनों, अगर हमने छोटी छोटी जिम्मेदारियों को निभाना नहीं सीखा होता तो आज इस जीवन का सामना करने की हमारी कोई उम्मीद ही नहीं होती। इसीलिए आइए इस दिन अपने पहले शिक्षक अपने माता पिता को धन्यवाद करें। और साथ ही कार्यक्रम में सुनते हैं अभिभावकों के अनुभव हमारी पूजी विषय पर ये वार्ता, और वार्ताकार है श्रीमती कविता जोशी।
1: अभिभावक ये वो शब्द है जो अपने में ही सुंदर, विशाल, कर्तव्य और भी कई विशेषताओं को समाये हुए है। संपूर्ण सृष्टि के कर्मदाता, पालनहार और जीवनदाता हमारे अभिभावक ही होते हैं। अभिभावक शब्द का अर्थ है अपने आप में बहुत अधिक प्रबल या श्रेष्ठ। हमारे अभिभावक अर्थात हमारे माता पिता का स्थान ईश्वर से भी ऊपर पूजा जाता है, क्योंकि ईश्वर तो हमें इस धरती पर भेजते हैं, पर हमारे माता पिता हमें न केवल जन्म देते हैं बल्कि जन्म के साथ ही हमारे पालन पोषण की जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी पूरी जिंदगी हमारी तकदीर को संवारने में लगा देते हैं। वो न केवल बचपन में हमारा हाथ थामे हमारे साथ चलते हैं बल्कि पूरी जिंदगी हमारा हाथ पकड़कर हमें हर मुश्किल से बचाकर बस आगे की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा बनते हैं। अगर देखा जाए तो हमारी असली विरासत रुपया, पैसा, जमीन जायदाद नहीं बल्कि असली दौलत तो हमारे अभिभावक, उनके विचार, उनका साथ, उनका धैर्य, उनके अनुभव, उनके संस्कार और उनकी मेहनत ही हमारी सबसे बड़ी विरासत है। अभिभावकों के साथ से ही होती है जिंदगी की शुरुआत। अभिभावक ही लाते हैं हमारे जीवन में खुशियों की बरसात। जिंदगी भर इनका साथ ही हमारी सच्ची दौलत है। इनके प्यार और आशीर्वाद से ही हमें जीने की मिली मोहलत है। इनके प्यार और आशीर्वाद से ही हमें जीने की मिली मोहलत है। वो दोस्तों कहते हैं ना कि जो दूध का जला होता है वो छांस को भी फूंक फूंक कर पीता है। अर्थात सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि हमें कभी कोई ठोकर लग जाती है तो दोबारा वही गलती ना हो तो हम बहुत सोच समझकर फिर दोबारा उस गलती को नहीं करते। ऐसे कई अनुभव हमारे अभिभावकों के अपनी जिंदगी में रहते हैं, तो वह चाहते हैं कि जो ठोकर उन्हें लगी वह हमारे बच्चों को ना लगे, क्योंकि वह उस चीज़ का अनुभव कर चुके होते हैं। वही गलती हमारा बच्चा ना दोहराए ये सोचकर वे कभी कभी हमें डांट भी देते हैं और हमारे लिए काफ़ी सख्त भी बन जाते हैं, पर इसमें भी वह हमारी भलाई ही सोचकर हमारे लिए चिंतित रहते हैं। अभिभावकों की इस डांट या सख्ताई को कभी कभी बच्चे दिल से लगाकर बुरा मान जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनके इस गुस्से में भी हमारे लिए प्यार और हमारी भलाई ही छिपी होती है। हमारे माता पिता तो हमारे लिए हमेशा सब कुछ करते चले जाते हैं, पर कभी भी बदले में हमसे कुछ नहीं मांगते। वे केवल यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे का हमेशा ही भला हो, वह हमेशा खुश रहे, बस। हमारे अभिभावक तो अपने अनुभवों के आधार पर ही हमारा उचित मार्गदर्शन करके हमारी मंजिल तक पहुँचाने की एक सशक्त सीढ़ी होते हैं। हमारे अभिभावक अर्थात हमारे माता पिता, उनके जो अनुभव होते हैं ना, वह सीखे हुए अनुभव होते हैं। वह अपने जीवन काल में वो सब कुछ देख चुके होते हैं। हर परिस्थिति, हर समस्या, जीवन के उतार चढ़ाव से उन्होंने बहुत कुछ सीखा होता है। वही सीख हमारे अभिभावक हमें सिखाकर हमें हमेशा हर समस्या से बचाना चाहते हैं। हमारे अभिभावकों के विचार, उनके अनुभव, उनका निस्वार्थ भाव का प्यार, उनकी छत्रछाया हमारे लिए एक बहुमूल्य पूंजी है। ये पूंजी हमारे लिए एक धरोहर, एक अमूल्य विरासत है। आज पूरे विश्व में अभिभावक दिवस मनाया जा रहा है। ये कोई दिखावा या आडंबर नहीं बल्कि हमारे अभिभावकों, हमारे माता पिता, उनके प्यार, समर्पण, उनकी निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा सुरक्षा के प्रति एक आदर भाव है और उन्हें दिल से धन्यवाद बोलने का एक आधुनिक तरीका है। यूं तो हम अपने माता पिता का ऋण कभी भी चुका नहीं सकते, पर उन्हें खुश रखने की, उन्हें खुशी देने की एक छोटी सी कोशिश करके उन्हें दिल से सम्मान देने की एक पहल तो कर ही सकते हैं ना। ग्रंथों में भी

0: कहा गया है, सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेहमय पिता मातरम पितरम तस्मातम सर्वयत्नेन पूज्यते, अर्थात माता में सभी तीर्थों का निवास होता है और पिता में सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए अभिभावकों का स्थान भगवान गुरु इन सब से ऊंचा माना गया है। अभिभावक ही हमारे जीवन के पहले गुरु होते हैं और पहली पाठशाला हमारा घर ही होता है। अभिभावक के संरक्षण में ही बच्चा चलना बोलना अच्छा व्यवहार अच्छे संस्कार सब घर पर ही सीखता है। हमारे अभिभावकों ने अपने जीवन काल में इतना कुछ देखा समझा होता है कि उनके प्रत्येक अनुभवों से हमें कई सीख मिलती है, जैसे सही गलत का ज्ञान, संघर्ष का महत्व, रिश्तों की मर्यादा, धैर्य संयम साहस, सही समय पर सही निर्णय लेने का ज्ञान आदि कई अनुभव। हमारे अभिभावकों का हर अनुभव हमें एक नई प्रेरणा एक नया ज्ञान अवश्य देता है। उनके ये अनुभव हमारे लिए अति बहुमूल्य हैं, इसीलिए हमें अपने अभिभावकों का सम्मान करना चाहिए, उनकी हर बात को सुनकर मनन करना चाहिए, उनके अनुभवों की पूंजी को हमेशा अपने जीवन में लागू करना चाहिए, क्योंकि धन जमीन जायदाद कभी न कभी समाप्त हो सकते हैं, लेकिन बड़ों के अनुभवों वाली पूंजी कभी भी समाप्त नहीं होगी। उनकी ये पूंजी सदैव हमारा मार्ग प्रशस्त कर हमारे जीवन को सफल बनाने की कभी भी खत्म न होने वाली एक अमूल्य पूंजी है। हमारे अभिभावकों के अनुभव सीखे हुए अनुभव होने के कारण हमारा हमेशा सही और उचित मार्गदर्शन करते हैं। वह हमारा उचित चरित्र निर्माण करने के लिए अपने जीवन के संघर्षों की कहानियां सुना सुनाकर हमारे अंदर नैतिकता का विकास करने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। संकट के समय में धैर्य रखकर किस प्रकार हम मुश्किल समय से जीत सकते हैं, यह साहस भी हमें हमारे माता पिता से प्राप्त होता है। हम अपने अभिभावकों के प्रत्येक अनुभव को अपने जीवन में उतार कर अपने आत्मविश्वास में वृद्धि कर बिना किसी डर के अपना उद्देश्य पूर्ण कर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हमारे अभिभावक ही हमें मितव्ययी होना भी सिखाते हैं, ताकि हम छोटी छोटी बचत करके धन समय अपनी ऊर्जा आदि की बचत कर उसका सही समय पर सही जगह उपयोग करें। यह सब हमारे अभिभावकों की ही देन है, जो हमें समय समय पर कुछ ना कुछ सिखाती ही रहते हैं। कम समय में अगर कहा जाए तो हमारे अभिभावकों के अनुभव एक ऐसी किताब है जिसका हम प्रतिदिन अध्ययन करते रहे तो हमारा ज्ञान बस बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि हमारे अभिभावकों का अनुभव ज्ञान रूपी एक ऐसा दीपक है जो हमारे भविष्य की राहों को अंधकार से दूर हटाकर रोशनी प्रदान कर हमेशा प्रकाश की तरफ हमारे भविष्य को ले जाकर एक उचित जीवन का निर्माण करने में सहायक हैं। हमारे माता पिता के अनुभव हमें एक अच्छा व्यक्ति एक अच्छा इंसान और एक कुशल नागरिक बनाने में सहायक होते हैं।
1: दोस्तों, हमारे अभिभावक हमारे जन्म से लेकर हमारे जीवन पर्यंत तक सिर्फ और सिर्फ हमारा कल्याण ही चाहते हैं, और बचपन से पकड़े हुए हमारे हाथों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहते। पर ये बड़ा सोचनीय विषय है, क्या हम उनके इन उपकारों के बदले उन्हें हर खुशी दे पाते हैं? शायद नहीं, क्योंकि आज हर इंसान सोशल मीडिया, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, मोबाइल का अधिक से अधिक प्रयोग और अन्य कार्यों में इतना व्यस्त हो गया है कि वह आज अपने अभिभावकों को अपने बुजुर्गों को समय ही नहीं दे पाते। आज भी कुछ ऐसे अभिभावक हैं जो अपने बच्चों के मात्र प्यार से बोलने के लिए तरस रहे हैं, पर बच्चे इतने व्यस्त हो चुके हैं कि उन्हें इस बात का जरा भी ज्ञान ही नहीं। पर ये बिल्कुल गलत है। माना हम अपने अभिभावकों का ऋण बिल्कुल नहीं चुका सकते, पर उनकी खुशियों में तो शामिल हो ही सकते हैं ना।
0: कठिन सफर में भी बिल्कुल आसान सा सफर लगता है, ये कोई चमत्कार नहीं, बस हमारे माता पिता के आशीर्वाद का असर लगता है। पूंजी यदि हमारे अभिभावकों के अनुभवों की हमारे पास है तो फिर ये जीवन सफर बड़ा ही सुलभ और आसान है
2: बहन अभी आप कार्यक्रम में सुन रही थी अभिभावकों के अनुभव हमारी पूंजी विषय पर ये वार्ता, और वार्ताकार थी श्रीमती कविता जोशी। मैनु आइए कार्यक्रम में सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

स्वागत है मैनू फिर से आप सभी का। मैनू आज है सोमवार और आज हम आपको अल्पसंख्यकों हेतु योजना के अंतर्गत प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। मैनू ये योजना भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली एक शैक्षिक योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1 से 10 तक के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर सकें। मैंने इसके कुछ मुख्य पात्रता भी है, छात्र मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन और पारसी समुदाय से होना चाहिए। छात्र किसी मान्यता प्राप्त सरकारी निजी स्कूल में कक्षा 1 से 10 में पढ़ रहा हो। छात्र ने पिछली कक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हो। छात्र के माता पिता की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। बहनों इस योजना का आवेदन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको केंद्र सरकार की आधिकारिक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP पर आवेदन करना होता है। आप पोर्टल पर पंजीकरण करें। आप अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करके OTP के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें। अपनी ID से लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म भरें। आप अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करें जैसे अपना जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र और फॉर्म को सबमिट कर दें। इस तरह से बहनों इस छात्रवृत्ति को भरकर इसका लाभ उठाएं और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को निखारें जिससे बच्चे बड़े होकर अपने सपनों को पूरा कर सके। बहनों कार्यक्रम में इस गीत की तरह चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

बहनों, धीरे धीरे कार्यक्रम में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। बहनों, इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी दीपिका पंत। बहनों, अब इन्हीं शब्दों के साथ अपनी रेडियो सखी सारिका शाह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: बहनों, अभी थोड़ी देर में सुनते हैं हमारी दिल्ली केंद्र से हिंदी के समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही

0: रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 सीट और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण प्रदान किए गए हैं। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। बॉम्बे एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक दोपहर तक 84 अंक गिरकर 74,692 पर और निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,516 पर आ गया। बिजली, पूंजीगत वस्तुएं, उपयोगिता और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। आवास सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने नैनीताल जिले में झीलों के संरक्षण और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार की परियोजनाओं का निरीक्षण किया। प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी। शासन प्रशासन ने श्रद्धालुओं की बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा की व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर देहरादून नगर निगम ने तेज की तैयारियां। निगम की टीम लगातार शहर में साफ सफाई को बेहतर बनाने में जुटी। और हरिद्वार जिले में सरकारी जमीनों पर कब्जा हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। और अब समाचार विस्तार से। नैनीताल जिले में झीलों के संरक्षण, पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारू करने की दिशा में कई कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आवास व राज्य संपत्ति विभाग के सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने जिले में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करते हुए अब तक हुए कार्यों की समीक्षा की है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भीमताल झील के पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 25 करोड़ 67 लाख रुपए की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके तहत झील के आसपास स्थित प्रमुख पार्कों का पुनर्विकास, दीनदयाल पार्क के समीप बोटिंग डॉक का विकास, झील किनारे कॉबिल स्टोन पैदल मार्ग, उद्यानों का सौंदर्यीकरण और पार्किंग व्यवस्था में सुधार सहित अन्य कार्य प्रस्तावित हैं। सचिव ने संबंधित अधिकारियों को इन सभी कार्यों को मानकों के अनुरूप शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान नौकुचियाताल झील के सौंदर्यीकरण के लिए करीब 21 करोड़ रुपए की योजना पर किए जा रहे कार्यों को भी निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए। सचिव ने भवाली में लकड़ी टॉल क्षेत्र में मल्टी लेवल कार पार्किंग और व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य, बेसमेंट में पार्किंग और भूतल व प्रथम तल पर लगभग 40 दुकानों के प्रस्तावित निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य कार्यों का भी जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से पंकज सनवाल खुलबे।
0: प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है। शासन प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा की व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। खराब मौसम को देखते हुए धाम क्षेत्र और यात्रा मार्गों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। वहीं रुद्रप्रयाग के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन रजवान ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों के जरिए केदारनाथ पैदल मार्ग के संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है। साथ ही जिला आपदा नियंत्रण कक्ष से पूरे यात्रा मार्ग की निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि यात्रा मार्ग पर पुलिस, SDRF, NDRF और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के 647 जवान तैनात हैं, जो तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सहायता में जुटे हुए हैं।
2: आपदा प्रबंधन का और जो यात्रियों के प्रति जो प्लान है, तो वो हमारे जगह जगह पर रेस्क्यू टीमें लगाई गई हैं और जो चेतावनी तंत्र है हमारे, जो कि कंट्रोल रूम से लगातार उनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है और यहीं से मौसम का जो फॉरकास्ट वगैरह है वो भी यहां से ही हम लोग अनाउंसमेंट के जरिए यात्रियों तक पहुंचा रहे हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम लोग उनको सचेत कर रहे हैं और कि सुरक्षित स्थानों पर रहें और अपनी यात्रा सुरक्षित बनाएं। वहां पर सर ITBP है, NDRF है, SDRF है, पुलिस है और होमगार्ड के जवान हैं, PRD के जवान हैं और आपदा मित्र हैं, DDRF है और YMF है और MTF है, म्यूल टास्क फोर्स भी जानवरों के लिए जो काम कर रही है। टोटल 647 लोग जो अभी यात्रा मार्ग पे हैं वो कार्यरत।
0: टिहरी जिले में धनौल्टी की उप जिलाधिकारी नीलू चावला ने जिले की सीमा के अंतर्गत 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। निषेधाज्ञा आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होने के साथ ही अगले 6 माह तक प्रभावी रहेगा। जारी आदेश के अनुसार लखवाड़ परियोजना क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों और संगठनों के धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, जुलूस, मार्ग अवरोध और कार्यस्थल पर अनाधिकृत प्रवेश जैसी गतिविधियों की आशंका है। इसे देखते हुए शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके तहत परियोजना के समस्त कार्यस्थलों से 500 मीटर की परिधि में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, बिना अनुमति धरना प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग और हथियार, ज्वलनशील पदार्थ आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही परियोजना स्थल, कार्यालय, आवासीय परिसर व निर्माण क्षेत्र में अनाधिकृत प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। स्थानीय निवासियों को अपने घरों में आने जाने व कृषि कार्यों के लिए शांतिपूर्ण आवाजाही की अनुमति दी गई है।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित

0: प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर देहरादून नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि निगम की टीम लगातार शहर में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि शहर के संवेदनशील कचरा स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, साथ ही कूड़ा उठाने वाले वाहनों की समय समय पर निगरानी भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि गीले और सूखे कूड़े के अलग अलग निस्तारण और सेग्रीगेशन को लेकर भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है, ताकि देहरादून स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन कर सके।
2: उसको लेके हमारी तैयारी है, हमारी टीमें मुस्तैद हैं और हमारे जहाँ जहाँ पे GVP पॉइंट्स हैं उनको हटाने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा शहर में कूड़े जो उठाने वाली गाड़ियाँ प्रॉपर समय पे पहुँचे और उसके लिए कार्य हो रहा है, और लगातार जो है गीला कूड़ा सूखा कूड़ा जो है वो अलग अलग सेग्रीगेट हो, इसके लिए भी कार्य लगातार किया जा रहा है।
1: हरिद्वार में सरकारी जमीनों पर कब्जा हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। आगामी कांवड़ मेले और अर्धकुंभ से पहले जिले भर में यह विशेष अभियान चलेगा। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि जिले में विभिन्न सरकारी विभागों की भूमि पर हुए अतिक्रमणों की सूची तैयार की जा रही है। कब्जाधारियों को पहले 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा, इसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्राम समाज, तालाब, नहर, नदी और अन्य सरकारी भूमि को हर हाल में अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। साथ ही जहां से कब्जा हटाया जाएगा वहां दोबारा अतिक्रमण होने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी की जवाबदेही भी तय होगी।
3: मुख्यतः जो PWD NH है, सिंचाई विभाग है, ग्राम पंचायत की जो जमीन है या अन्य विभाग जो भी है, शिक्षा विभाग हो या कोई और भी विभाग हो, सभी से लिस्ट हमने मंगाई है कि जहां जहां पर अतिक्रमण चिन्हित है 15 दिन का नोटिस देने की कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। उसके बाद जैसे कि अन्य जगह भी है, भले वो हमारे रेलवे की लैंड हो या कुंभ मेले में UP सिंचाई और उत्तराखंड सिंचाई की जमीन हो, वहाँ पर भी कुछ निर्माण हमने देखे हैं जो कि लंबे समय से हो गए हैं। कुछ निर्माण परमानेंट नेचर के हैं, कुछ टेम्परेरी नेचर के हैं। सभी को अपने अपने स्तर से अधिकारी देखेंगे और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में गति देंगे। अतिक्रमण जहाँ से भी हटाया जाएगा वहाँ पर जो एक अधिकारी है, भले वो हमारे राजस्व विभाग का लेखपाल हो या कोई SDO या JE हो सिंचाई विभाग का या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के SDO हो, सभी की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। जो भी अधिकारी के क्षेत्र में या कर्मचारी के क्षेत्र में अतिक्रमण है और उसके क्षेत्र में हटा दिया गया है, पुनः अगर अतिक्रमण होता है तो उनकी जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा है कि वह अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने बताया कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आवास सचिव डॉ R. राजेश कुमार ने नैनीताल जिले में झीलों के संरक्षण और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार की परियोजनाओं का निरीक्षण किया। प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी, शासन प्रशासन ने श्रद्धालुओं की बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा की व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर देहरादून नगर निगम ने तेज की तैयारियां, निगम की टीम लगातार शहर में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटी। और हरिद्वार जिले में सरकारी जमीनों पर कब्जा हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.8 मेगा हर्ट्ज़ पर। दिन के 1:15 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत। पहले आपको सुनवा रहे हैं इब्राहिम अश्क की रचना, आवाज़ हंसराज हंस की।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
2: संकल्प बेहतर उत्तराखंड कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: और लीजिए अब सुनिए अनुराधा पोडवाल की आवाज में पयाम सईदी की गजल।

0: सुनील घर तो चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
1: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है,
0: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
1: बल्ब्स, प्लग्स, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI,
0: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
1: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
0: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
2: सुगम संगीत कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं। सोनाली राठौर और रूप कुमार राठौर के गाए इस नगमे के साथ

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है, आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
3: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोटकुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
2: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
2: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्डखे, नंदा बोर्डखे, हनुमान बोर्डखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
3: और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
3: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
2: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
3: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
3: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
2: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
3: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
2: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
3: ये कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
2: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
4: धन्यवाद।
2: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:30 हुए हैं। पेश है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आज सुनिए कड़ी संख्या 1296।

0: के श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
1: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं
0: जी,
1: लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में
0: जी।
1: आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
0: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समता मूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
1: इसको हम समता मूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना
0: जी।
1: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समता मूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना
0: जी।
1: अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं
0: जी।
1: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं, ठीक है
0: जी।
1: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है, तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ, तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है
0: जी।
1: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा, उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन ले, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो
0: जी,
1: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती
0: जी।
1: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं? सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं
0: जी। आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समता मूलक शिक्षा में क्या अंतर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
1: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं
0: जी।
1: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी
0: जी।
1: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है, या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे। लेकिन हाँ, जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है, इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे। तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्य धारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझें। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे, और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए, तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ
0: जी।
1: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की, और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े, और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है
0: जी। प्रोफेसर भारती, आपने

0: बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
1: बिल्कुल।
0: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं।
1: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया
0: जी,
1: ठीक है। इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
0: जी,
1: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं
0: जी।
1: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है
0: जी।
1: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं
0: जी।
1: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं
0: जी।
1: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है
0: जी।
1: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है
0: जी।
1: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है
0: जी।
1: सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं
0: जी।
1: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं, उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है
0: जी।
1: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं
0: जी।
1: इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है। तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में
0: जी।
1: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
0: जी।
1: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है
0: जी। आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
1: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं
0: जी,
1: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से संकेतों से पहचानते
0: जी।
1: हैं। जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
0: जी,
1: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की
0: जी।
1: आप सोचिए आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
0: जी,
1: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है
0: जी।

0: अच्छा, अब ये लोग क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते, अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा
1: जी।
0: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है
1: जी।
0: दोनों भाषाओं में अंतर है और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत
1: जी।
0: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में
1: जी,
0: ठीक है, लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहाँ? उत्तरी भारत में।
1: बिल्कुल।
0: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं
1: जी।
0: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी की किसी और मौखिक भाषा में है
1: जी। ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी और समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं
0: जी। देखो, सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं, जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं
1: जी।
0: लेकिन इन वीडियोज में ऑडियो भी है
1: जी,
0: और इन वीडियोज में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ ही साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है
1: जी,
0: ताकि कोई भी छात्र चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख सके। इसके अलावा CIET NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है जो बहुत सरलता से CIT की वेबसाइट पर उपलब्ध है
1: जी।
0: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं? इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
1: जी
0: आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है, लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज
1: जी।
0: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं
1: जी,
0: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है? ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें
1: जी।
0: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो
1: जी,
0: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो, व्हीलचेयर आसानी से पहुंच जाए
1: जी।
0: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है, उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो
1: जी।
0: आपके विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो। टेक्टाइल पाथ क्या? आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा
1: जी जी।
0: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें।
1: बिल्कुल।
0: पीली टाइलें कैसी हैं? उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं
1: जी,
0: उनके उभारों को महसूस
1: बिल्कुल
0: कर सकते हैं, मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं
1: जी।
0: ये स्पर्शनीय टाइल बताती है कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें
1: जी।
0: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं
1: जी।
0: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी CIT NCERT की है, वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए

0: जांच सूची बनाना, जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है, जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों, विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है। और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है
1: जी।
0: तो ये भी एक हमारी पहल है
1: जी। प्रोफेसर भारती, अभी आपने ये जानकारी दी कि एनसीईआरटी की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं, तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
0: ये किताबें आपको बहुत सरलता से सीआईईटी के वेब पेज से मिल सकती हैं। आप सीआईईटी के वेब पेज पे जाइए, वहाँ पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी
1: जी।
0: और एक और सरल उपाय है
1: जी,
0: आजकल तो गूगल हम सब की मदद के लिए है ही है, गूगल पर जाइए, लिखिए ऑडियो बुक्स सीआईईटी एनसीईआरटी, आपको सीधा वहाँ उसी पेज पे ले जाएगा और आप वहाँ से ले सकते हैं
1: जी।
0: एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है। और सीआईटी वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती है
1: जी।
0: और यह किताबें आपको एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को सीआईटी की वेबसाइट से, एनसीआरटी ऑफिशियल यूट्यूब से और साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निशुल्क, बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं
1: जी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में एनसीईआरटी की क्या पहल है?
0: बिल्कुल, आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए एनसीईआरटी की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं
1: जी,
0: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं
1: जी।
0: उनकी कहानियां, उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों, हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं
1: जी,
0: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं, उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती
1: जी।
0: तो सबसे बड़ी बात तो यही है। और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं
1: जी।
0: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है, लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है
1: जी। बिल्कुल। तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
0: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात की है। उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं, और भारतीय सांकेतिक भाषा की। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चे को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं, समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह भी है, बहुत सरल से शब्दों में, कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए, साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है, इसी कड़ी में जुड़ता है, शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी
1: जी।
0: मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके
1: जी।
0: यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा, इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा
1: जी।
0: जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं, तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं
1: जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती, इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की

0: शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्ज्वल होता जाएगा। हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
1: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए। ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोता भी सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की कड़ी संख्या 1296।

0: AIR at 90.
1: ये आकाशवाणी है। नौ दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।
3: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के बजे हैं 2 और इस समय श्रोता सुनते हैं कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम उत्तराखंड के लोकगीत। शुभारंभ कर रहे हैं गढ़वाली लोकगीत के साथ, कलाकार हैं चंद्र सिंह राही।

0: una radio nema.
1: और अब समापन कर रहे हैं एक गढ़वाली लोकगीत के साथ, गायिका है विमला भंडारी।

0: उत्तराखंड के लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:15 होने को ही कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1 लाख

0: लाख 94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज, अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
2: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताए, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफिन नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातक को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। जीएसटी रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा

0: 28,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
1: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
2: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
3: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
2: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
4: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113.50 रुपए होगी। मुंबई में 43.50 रुपए की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067.50 रुपए होगी। कोलकाता में 53.50 रुपए की वृद्धि के साथ व्यवसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255.50 रुपए होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपए होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली

0: इसराइली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की

0: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
2: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
1: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमा के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय है पर्वतीय क्षेत्रों हेतु कीवी की वैज्ञानिक विधि से बागवानी। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर SK वर्मा।
4: प्रिय किसान भाइयों, आइए आज हम सभी कीवी फल के बारे में जानें व पहचानें। कीवी फल सहिष्णु, गोल या बेलनाकार होते हैं तथा हल्के भूरे रेशों द्वारा ढके रहते हैं। फल का गूदा हरे रंग का तथा काले छोटे बीजों से भरा रहता है। इसकी उत्पत्ति चीन से हुई है, जहां यह यांग टाओ के नाम से जाना जाता है। यह एक बहुवर्षीय बल्लरी पौधा है, जिसमें नर व मादा अलग अलग होते हैं। इसे चाइनीज गूजबेरी भी कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम एक्टिनीडिया चाइनेंसिस है। कीवी फल के पौधे भारत में

सर्वप्रथम बेंगलोर के लालबाग गार्डन में लगाए गए। यहाँ पर फलत में नहीं आने के कारण इसके पौधे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पादप प्रवेशन प्लांट इंट्रोडक्शन विभाग के उपकेंद्र फागली शिमला हिमाचल प्रदेश में लगाए गए, जिसकी एलिसन किस्म शिमला में पहली बार 1969 में फलत में आई। पुनः इस केंद्र में अन्य प्रजातियां न्यूजीलैंड से मंगाकर लगाई गईं। उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBPGR क्षेत्रीय केंद्र भवाली निगलाट नैनीताल में इसकी 6 प्रजातियों को सन 1990 में शिमला से मंगाकर लगाया गया। यहाँ पर पहली बार एलिसन व हेवार्ड किस्में सन 1992 में फलत में आईं। इसका फल पोषक तत्वों से भरपूर एवं स्फूर्तिदायक होता है। इसके लिए विशेष जलवायु की आवश्यकता होती है। इसे समुद्र तल से 200 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र में उगाया जा सकता है, जहां जाड़े का तापमान 200 से 300 घंटे 7 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर आ जाता है। इसकी पैदावार के लिए 1200 से 1500 मीटर तक की ऊंचाई आदर्श मानी जाती है। यह एक पतझड़ वाला बल्लरी पौधा है, जो सुसुप्त अवस्था में 0 से नीचे का तापमान सहन कर लेता है। इस केंद्र द्वारा उत्तराखंड के अलावा नागालैंड मेघालय अरुणाचल प्रदेश दक्षिण भारत में भी इसके पौधे लगाए जा चुके हैं। इसकी कुल 6 प्रजातियां एबट एलिसन ब्रूनो हेवार्ड मोंटी व तोमरी इस केंद्र पर उगाई गई हैं, जिसमें तोमरी एक नर प्रजाति है। रेड कीवी व हाइब्रिड पौधों का मूल्यांकन भी किया जा रहा है। इस फल के लिए गहरी दोमट मिट्टी जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो तथा पीएच मान 7.3 से कम हो उपयुक्त होती है। कीवी फल के पौधे ज़्यादा लवणयुक्त भूमि के प्रति सहनशील होते हैं। कीवी के पौधों का प्रसारण कटिंग ग्राफ्टिंग एवं लेयरिंग द्वारा किया जाता है। बीजू पौध तैयार करने के लिए पहले नर्सरी बेड तैयार कर लेते हैं। नर्सरी बेड की लंबाई अधिक से अधिक 3 मीटर व चौड़ाई 1.2 मीटर रखनी चाहिए। नर्सरियों बेडों में ओक बांझ के या अन्य पौधों के सड़े हुए पत्तों का पाउडर, जिसे हम साधारण भाषा में पोरा कहते हैं, बेड के ऊपर लगभग 6 इंच मोटी परत डालकर मिट्टी में मिला देते हैं। इसको मिलाने से मिट्टी काफ़ी हल्की हो जाती है, जो बीज के अंकुरण के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। कीवी के पके हुए फलों को लेकर एक बाल्टी में या अन्य बर्तन में मसलकर बीज को धो लिया जाता है तथा छानकर अन्य बर्तन में रख देते हैं। बीजों को सुखाया नहीं जाता है, सुखाने से इनकी अंकुरण क्षमता छीण हो जाती है। बीजों को तुरंत ही नर्सरी बेड में पंक्ति से 2.5 से 3.5 इंच की गहराई से बुआई की जाती है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी कम से कम 6 इंच तथा अधिक से अधिक 9 इंच रखनी चाहिए। दिसंबर जनवरी माह तक रूट स्टॉक, जिसके तनों की मोटाई पेंसिल की मोटाई के बराबर हो जाती है, कलम
बांध

बढ़ने के लिए उपयुक्त होते हैं। कीवी के पौधों का रोपण समय शीत ऋतु जनवरी माह का होता है। इसके लिए 5 से 5 मीटर की दूरी पर 1 से 1 मीटर आकार के गड्ढा तैयार कर उसमें 1/3 भाग गोबर की सड़ी खाद से भर देते हैं। अब इसे मिट्टी के साथ मिश्रित कर पौधों की रोपाई करके पानी डाल देना चाहिए। कीवी बागवानी का रोपण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इसमें नर व मादा पौधे अलग अलग होते हैं, जिसमें मादा पौधों से फल प्राप्त होते हैं। यदि खेत छोटे छोटे सीढ़ीदार टेरेस वाले हों तो हर 2 मादा पौधों के बाद 1 नर पौधा लगाना चाहिए। 4 मादा + 1 नर तथा अगले टेरेस में मादा के नीचे या ऊपर नर तथा नर के सामने मादा पौधों को लगाते हैं ताकि परागण प्रक्रिया में बाधा न पड़े। सामान्य परिस्थितियों में 1 नाली 200 वर्ग मीटर में 8 मादा पौधों के साथ 1 नर पौधे का रोपण किया जा सकता है। कीवी के पौधों में प्रारंभ में 2 से 3 वर्षों तक 30 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद तथा 0.5 किलोग्राम NPK मिश्रण 120/60 व 60 के अनुपात में प्रति पौधा देना चाहिए। पौधे के बढ़ने के साथ खाद की मात्रा भी बढ़ा देनी चाहिए। प्रतिवर्ष 15% की दर से नाइट्रोजन युक्त उर्वरक प्रति पौधा बढ़ाते रहना चाहिए। 3 से 10 वर्ष पश्चात पूर्ण विकसित पौधों में 50 से 60 किलोग्राम गोबर की खाद एवं 700 ग्राम पोटेशियम देना चाहिए। इसकी बल्लरी अंगूर के पौधे के समान होती है, जिन्हें जमीन से ऊपर रोकने के लिए मजबूत ढांचा लोहे के खंभों एवं तारों से टी बार एवं परगोला विधि के अनुसार तैयार किया जाता है। पौध लगाने के बाद गड्ढे से 1.5 फीट की दूरी पर 1 डंडा पेड़ को आधार देने के लिए लगा देते हैं ताकि इसके सहारे पौधा ऊंचाई में बढ़ सके, मुड़े नहीं। साल भर बाद दिसंबर जनवरी में जब पौधा 2-2.5 मीटर तक बढ़ जाए तो उसे 1.5 मीटर की ऊंचाई पर काट देना चाहिए। पौधे में प्रारंभ से ही 2 शाखाएं रखनी चाहिए ताकि फैलने पर दोनों शाखाएं एक दूसरे के विपरीत बढ़ सकें। दूसरे वर्ष पौधे से फिर शाखाओं का निकलना प्रारंभ हो जाता है, उन्हें फैलते देते रहना चाहिए। पौधे की टहनियों की छटाई करते समय एक टहनी पर 5 या 6 कलिकाएं बढ़ छोड़कर उसकी छटाई करनी चाहिए, क्योंकि जो 5 या 6 कलिकाएं हमने छोड़ी हैं उनसे ही फलत वाली कलियां निकलती हैं, अन्य से फलत वाली कलियां नहीं निकलती हैं। कीवी में 3 से 4 वर्षों में फूल व फल आना प्रारंभ होता है। इसके पौधों में परागण वायवीय व मधुमक्खियों द्वारा होता है। पूर्ण विकसित पौधे 5 से 7 वर्षों से 50 से 60 किलोग्राम फल प्रति पौधा या 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर प्राप्त किया जा सकता है। इस फल की तुड़ाई अक्टूबर से दिसंबर माह तक की जाती है। उत्तराखंड की भौगोलिक दशा में कीवी के पौधों पर अभी तक किसी प्रकार का रोग व कीड़े का प्रकोप पिछले 27 वर्षों से नहीं देखा गया है। कीवी फल के शीघ्र खराब न होने के कारण इसका विपणन प्रबंधन बहुत आसान है। फल पकने से पूर्व तोड़ लिए जाते हैं। तोड़ने के पश्चात आकर्षक दिखने के लिए इसके रोम को हटाकर पॉलीथीन में

0: रख लिया जाता है। खाने योग्य मुलायम अवस्था में आने में सामान्य तापक्रम पर इसे लगभग 2 सप्ताह का समय लगता है। यह 2 सप्ताह विपणन प्रबंधन में प्रयुक्त किया जा सकता है। कीवी फल पकने के पश्चात छिलका उतारकर समूचा फल बीज सहित खाया जाता है। इसके फलों से नेक्टर, कैंडी, बटर, पापड़, टॉफी, जैम व जेली सफलतापूर्वक बनाए जा रहे हैं। फलों के अंदर बहुत छोटे काले रंग के बीज होते हैं जिन्हें खाया जाता है। बीजों में 34% वसा तथा 15% प्रोटीन व अन्य खनिज लवण होते हैं। आजकल इसकी गुणवत्ता को देखते हुए इसका प्रयोग डेंगू बुखार व अन्य वायरल बुखारों में किया जा रहा है। इस प्रकार यह फल अपनी सहिष्णुता, व्यापकता, ज़्यादा उत्पादन एवं पोषक गुणों के कारण उत्तराखंड के किसानों की आर्थिक स्थिति में अपनी बहुमूल्य भागीदारी निभा रहा है।
1: पर्वतीय क्षेत्रों हेतु कीवी की वैज्ञानिक विधि से बागवानी, इस विषय पर डॉक्टर एस के वर्मा से खेती की बातें कार्यक्रम में श्रोता सुन रहे थे जानकारी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है संध्या 5 बजे। आज रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, रात 9:30 पर पब्लिक स्पीक, ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे। शाम 5:05 पर कुमाऊनी लोकगीत आप सुनते हैं शैल स्वर में, आज कलाकार होंगे प्रकाश रावत। शाम 5:15 पर युववाणी कार्यक्रम सुनवाया जाएगा जिसमें आज की बात का विषय रहेगा अभिभावकों की सीख, जीवन की सीख, साहित्य जगत और आज का इतिहास भी युवा साथी सुन सकेंगे। संध्या 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे वैश्विक अभिभावक दिवस, विश्व दुग्ध दिवस और मिशन लाइफ के तहत सुनिएगा ई कचरा कैसे करें निस्तारण। इसी कार्यक्रम में वार्ता प्रसारित होगी ईजा बाबू प्रति हमर कर्तव्य और दायित्व, वार्ताकार होंगी श्रीमती ज्योति पथनी। संध्या 6:41 पर भक्ति संगीत सुनिएगा, आज ओम व्यास और शर्मा बंधुओं के गाए भजनों का आनंद आप ले सकेंगे। संध्या 7 बजे ग्राम जगत कार्यक्रम होगा जिसमें आज की बातें होंगी डिजिटल कृषि के लाभ और विश्व दुग्ध दिवस पर चर्चा सुनिएगा फसलों पर मौसम परिवर्तन का प्रभाव। शाम 7:40 पर और रात 9:15 पर इंद्रधनुष में फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे। सुगम संगीत सबरस में आप सुनेंगे रात 8 बजे, इसके अलावा रात 10 बजे भी सुगम संगीत सुनवाया जाएगा और रात 10:30 पर फिल्म संगीत श्रोता सुन सकेंगे। ये था विवरण हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार और आज के फनकार हैं भारतीय फिल्म जगत के जाने माने निर्देशक, लेखक और सिनेमेटोग्राफर लक्ष्मण उत्तेकर। आज इनका जन्मदिन है तो लक्ष्मण उत्तेकर को उनके जन्मदिन की हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आपने हिंदी और मराठी सिनेमा दोनों ही सिनेमा जगत में अपनी एक ख़ास पहचान बनाई है, ख़ास तौर पर भावनात्मक, पारिवारिक और सामाजिक विषयों पर आधारित फिल्मों के लिए आप जाने जाते हैं। लक्ष्मण उत्तेकर का जन्म 1 जून 1980 को महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले में हुआ था और बचपन में ही वो मुंबई आ गए और उन्हें कब

संघर्षों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि कई शोधों ने बताया है कि उन्होंने जीवन यापन के लिए अंडे बेचे, वड़ा पाव का स्टॉल तक लगाया और साफ सफाई का काम भी उन्होंने किया। और बाद में फिल्म स्टूडियो के माहौल से प्रेरित होकर उन्होंने कैमरा विभाग में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे फिल्म उद्योग में उनकी रुचि बढ़ी। निर्देशक बनने से पहले वो एक बेहद सफल सिनेमाटोग्राफर रहे। उन्होंने कई चर्चित फिल्मों में कैमरा संभाला, जिनमें शामिल हैं इंग्लिश विंग्लिश, डियर जिंदगी हिंदी मीडियम, 102 नॉट आउट, ब्लू जैसे फिल्मों में उन्होंने सिनेमाटोग्राफर के रूप में काम किया और उनके कैमरा वर्क की बेहद तारीफ भी हुई।

तो श्रोताओं, फिल्म निर्देशन की बात करें तो हिंदी फिल्म जगत में आने से पहले उन्होंने साल 2014 में अपनी पहली फिल्म निर्देशित की, जो कि मराठी में थी। नाम था तापाल। ये ग्रामीण जीवन पर आधारित और मानवीय संवेदनाओं पर आधारित फिल्म थी। इस फिल्म को समीक्षकों ने बेहद सराहा और लोगों को भी पसंद आई ये फिल्म। इसके बाद हिंदी फिल्म जगत की बात करें तो साल 2019 में लुका छुपी इस फिल्म से उन्होंने हिंदी फिल्म जगत में कदम रखा। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे कार्तिक आर्यन और कृति सेनन। लिव इन रिलेशनशिप पर आधारित ये फिल्म रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बहुत ही हिट साबित हुई और लक्ष्मण उत्तेकर को मुख्य धारा के सफल निर्देशकों में शामिल किया गया।

तो श्रोताओं, 2021 में प्रदर्शित हुई फिल्म मिमी सरोगेसी और मातृत्व पर आधारित ये फिल्म दर्शकों और समीक्षकों दोनों को ही बहुत पसंद आई। कृति सेनन के अभिनय की भी खूब प्रशंसा हुई। इसके बाद साल 2023 में जरा हटके जरा बचके ये फिल्म आई, विकी कौशल और सारा अली खान से अभिनीत ये फिल्म थी। ये मध्यम बजट की फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही। और साल 2025 में सबसे इनकी सुपरहिट फिल्म आई छावा। ये फिल्म छत्रपति शिवाजी संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की और साल 2025 की ये सबसे बड़ी हिट हिंदी फिल्मों में शुमार हुई।

0: और इस फिल्म के ज़रिए उनके निर्देशन को बुलंदियों पर पहुंचने का सुअवसर मिला।
1: जिजाऊ साहब ने हमसे एक बात कही थी, जैसे माँ पार्वती के बगैर शिव शंभू अधूरे हैं, उसी तरह यीशु के बगैर ये शंभू।

0: राज के बारे में आप हमसे ज्यादा सोचती हैं।
1: क्योंकि सखी इस महल में नहीं अपने श्री के मन में रहती है।
2: एक ही फनकार फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अभी श्रोता सुन रहे थे और आज के फनकार थे जाने माने भारतीय फिल्मों के निर्देशक, लेखक और सिनेमाटोग्राफर लक्ष्मण उत्तेकर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 3 बजे हैं और इस समय श्रोताओं के लिए हम लेकर आते हैं सदाबहार फिल्मी गीत। श्रोताओं, ये मीठी सी आवाज़ आपने सुनी, क्या बात नहीं थी, सब कुछ था इनकी आवाज़ में। भारतीय संगीत जगत की बेहद सुरीली, दिग्गज, मधुर, आकर्षक आवाज़ की मल्लिका, जिन्होंने कई पीढ़ियों तक दर्शकों को अपनी खूबसूरत आवाज़ के जरिए मंत्रमुग्ध किया। उनकी मधुर गायकी से सजे ना जाने कितने सुरीले गाने

सुने हैं और हम हमेशा सुनते रहेंगे। कल 31 मई को ये महान पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर पंचतत्व में विलीन हो गई। यह आवाज शरीर रूप से हमेशा के लिए बंद है उनके लिए, लेकिन हम उनकी आवाज को हमेशा सुनते रहेंगे उनके बेशुमार खूबसूरत नगमों के जरिए। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं आज सदाबहार फिल्मी गीत सुमन कल्याणपुर जी को समर्पित है। उनकी मधुर मिठास भरी गायकी से सजे उनके विविध गीतों से उन्हें हम श्रद्धा नमन करते हैं।

श्रोताओं, सुमन कल्याणपुर जी का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में, जो कि उस वक्त भारत का हिस्सा था, वहाँ हुआ था। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इनके पिता काम करते थे और उनका नाम था शंकर बाबू, उनकी पत्नी का नाम सीता, और उन्होंने अपनी नन्ही सी बिटिया का नाम सुमन रखा। सुमन के अलावा शंकर बाबू के यहाँ 5 संतानें हुई। बच्चों की बेहतर पढ़ाई लिखाई का सपना संजोकर शंकर बाबू परिवार सहित साल 1943 में मुंबई चले आए। सुमन का रुझान, सुमन कल्याणपुर जी का रुझान बचपन से ही पेंटिंग और संगीत की तरफ था। उन्होंने ग्रेजुएशन भी आर्ट्स में ही किया। सुमन जी पेंटर बनना चाहती थीं, लेकिन उनके पिता के एक मित्र थे पंडित केशव राव, जिन्हें सुरीली आवाज़ की परख थी और उन्होंने सुमन जी की आवाज़ को परख लिया। उन्होंने सुमन जी के पिता को ये सलाह दी कि उन्हें संगीत सिखाए, और इस तरह सुमन कल्याणपुर ने संगीत का अभ्यास शुरू किया।

तो श्रोताओं, साल 1943 में मुंबई आने पर पढ़ाई और संगीत का प्रशिक्षण उन्होंने लेना शुरू किया। अपने गुरु यशवंत देव से बाकायदा उन्होंने संगीत की बारीकियाँ सीखी और मराठी फिल्म शुक्राजी चांदनी में पहली बार उन्हें गाने का अवसर मिला। फिर जब वो 17 साल की थीं तो उन्हें एक बार फिर मंगू फिल्म में गाने का मौका मिला और बाद में नौशाद जी, जो कि उस दौर के जाने माने संगीतकार थे, उनके निर्देशन में फिल्म दरवाज़ा में सुमन जी को 5 गाने गाने का अवसर मिला। इसके बाद सुमन कल्याणपुर जी इंडस्ट्री में मजबूती से अपने पैर जमाने में कामयाब हो गई।

श्रुतो सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में वो मिठास घुली थी कि कई बार लता मंगेशकर जी की आवाज़ से उनकी आवाज़ काफ़ी हद तक मिलती थी। दोनों के गाने का अंदाज और सुरों पर पकड़ कुछ इस तरह थी कि कई बार उनकी और लता जी की आवाज़ के बीच अंतर करना श्रोताओं का, दर्शकों का मुश्किल हो जाता था। और ये उनकी खूबी कहिए या फिर ना कहिए, दोनों ही बातें हैं। साल 1960 के दशक में लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफ़ी साहब के बीच कुछ विवाद हुआ तो सुमन कल्याणपुर जी संगीतकारों की पसंद बन गई और उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर गाने गाए, जिनमें ये गाना तो बेहद चर्चित रहा।

मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ तो एक से बढ़कर एक हिट सॉन्ग्स उन्होंने गाए। इसके अलावा मुकेश, किशोर कुमार, तलत महमूद, मन्ना डे, गीता दत्त, हेमंत कुमार जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ भी उनके गाने बेहद सुपर हिट रहे।

श्रोताओं, सुमन कल्याणपुर जी में संगीत की बेहद स्वाभाविक समझ थी। उनके गीतों में स्पष्ट उच्चारण और लय की बदौलत वो सहजता से ही गीत के भाव को आत्मसात कर लेती थीं। गीतों में उर्दू फारसी शब्दों का उच्चारण करते समय सुमन कल्याणपुर जी कभी भी लड़खड़ाती नहीं थीं। उनकी गायन शैली बेदाग बेहद साफ थी। ढाका में जन्मी थीं सुमन कल्याणपुर जी, तो उन्हें उर्दू का बेहद अच्छा ज्ञान था। उन्होंने अपने कई गानों में अपने सटीक उच्चारण का भरपूर इस्तेमाल किया। वो उर्दू, बांग्ला और अपनी मातृभाषा मराठी में पारंगत थीं। यही कारण है कि वो हर तरह के गीत सहजता के साथ गा लेती थी। इसके अलावा शास्त्रीय संगीत में उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी, समृद्ध थी। इसीलिए वो जब गाती थी तो शास्त्रीय संगीत की झलक भी उनकी आवाज़ में साफ नज़र आती थी।

तो सुमन कल्याणपुर जी, हिंदी में तो अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू बिखेरती ही थी। इसके अलावा मराठी, असमी, कन्नड़, बांग्ला और उड़िया समेत कई भाषाओं में उन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ दी है।

लगभग अपने 28 साल के करियर में सुमन कल्याणपुर जी ने ना सिर्फ पार्श्व गायन के क्षेत्र में अपना एक सम्मानजनक स्थान बनाया, बल्कि कई पुरस्कारों से वो सम्मानित हुई। हिंदी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय गीत के लिए प्रतिष्ठित सुर श्रृंगार संसद पुरस्कार उन्हें 1966 और 1970 में दो बार प्राप्त हुआ। साल 2009 में लता मंगेशकर पुरस्कार से वो सम्मानित हुई और रसरंग नासिक का फाल्के पुरस्कार भी उन्हें मिला। मियां तानसेन पुरस्कार से भी उन्हें अलंकृत किया गया। इसके अलावा साल 2023 में पद्म भूषण से भी सम्मानित हुई सुमन कल्याणपुर जी।

सुमन कल्याणपुर जी की मीठी आवाज़ के कई बेशुमार गाने हमने सुने हैं और उनमें से कुछ गानों का जिक्र हम करना चाहेंगे। यूं तो एक लंबी फहरिस्त है, कुछ गाने जो बेहद चर्चित रहे राजकुमार फिल्म से, तुमने पुकारा हम चले आए, ब्रह्मचारी फिल्म से आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, फिल्म जब जब फूल खिली, ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, बात एक रात की, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मिर्ज़ा गालिब, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, नूर महल, मेरे महबूब न जा आज की रात न जा, फ़र्ज़, तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है, रेशम की डोरी फिल्म से, और राखी पर तो ये गाना एक तरह से हर बहन भाई ने प्यार से एक दूसरे को सम्मान दिया है, राखी बंधवाई है। इसके अलावा साथ ही फिल्म का मेरा प्यार भी तू है, सरस्वती चंद फिल्म का, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, जैसे कई गाने हैं बेहद सुरीले गाने जिन्हें हमने सुना है। और इन गानों को सुनकर सुमन जी की खूबसूरत आवाज़ से हम रूबरू होते हैं और होते ही रहेंगे।

तो श्रोताओं, सुमन कल्याणपुर जी के सुरीली आवाज़ का जादू यूं ही चलता रहेगा। उन्होंने अपनी सुरीली आवाज़

तो श्रोताओं, सुमन कल्याणपुर जी के सुरीली आवाज़ का जादू यूं ही चलता रहेगा। उन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ से कभी हमें हंसाया, कभी गुदगुदाया, कभी आंखें नम की, कभी उनकी शरारत भरी आवाज़ को हमने सुना। हर तरह के भावों की अभिव्यक्ति उनके गानों में हमने महसूस की है और ये एहसास हमें हमेशा होता रहेगा जब जब हम उनके गानों को सुनते रहेंगे। इन फिजाओं में उनकी मीठी आवाज़ का जादू हमेशा चलता रहेगा। उन्हें एक बार पुनः श्रद्धा नमन।

तो श्रोताओं, सदाबहार फिल्म गीत का सफर आज यहीं तक। नमस्कार। अभी श्रोता सुन रहे थे सदाबहार फिल्म गीत FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में संध्या 5 बजे हम फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: FM 16.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 5 बजने वाले हैं। अब हमारी आज की सायंकालीन सभा के प्रसारण आरंभ हो रहे हैं। सभा के आरंभ में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ओम मिन आउं लाइन ने आज नई दिल्ली में ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के बारे में द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत के साथ बातचीत के लिए कल मुंबई भी जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। इस समझौता पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण, चमड़ा, ऑटोमोबाइल और समुद्री उत्पाद जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
2: I am confident that this comprehensive agreement
3: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
2: of our shared future.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पर श्री गोयल के एक लेख को साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये समझौता भारतीय निर्यातकों को बाजारों में विविधता लाने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। इस दौरान क्षेत्र में निर्बाध व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप समुद्र के अन्य वैध उपयोगों के लिए मजबूत समर्थन भी व्यक्त किया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ

0: राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियों पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रहा है।
1: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के रामसिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य कृषि भूमि की रक्षा करना और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मिट्टी और कृषि भूमि की रक्षा करना है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक महिला की उन्नाव स्थित जिला विधि सेवा प्राधिकरण के 2018 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके पति ने जिला विधि सेवा प्राधिकरण के समक्ष दर्ज समझौते को तलाक का निर्णय मानकर पुनर्विवाह किया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में गरज और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। संध्या के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शैल स्वर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं प्रकाश रावत का गाया लोकगीत। श्रोताओ, हमारी सभा के सभी कार्यक्रम इस समय आप मीडियम वेव 187.3 मीटर अर्थात 1602 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के पिथौरागढ़ केंद्र और 101.5 मेगाहर्ट्ज़ पर FM केंद्र बागेश्वर से भी सुन सकते हैं।

प्रकाश रावत के गाए इसी लोकगीत के साथ शैलस्वर कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब एक नज़र हमारे आज के शेष और कल दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। पहले आज के शेष कार्यक्रम, आज रात्रि 9:30 पर सुनेगा कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और रात्रि 8:30 पर आप सुनते हैं स्पोर्ट्स कैन। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। संध्या 6:50 पर आप सुनते हैं गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और 7:30 पर सुनेगा कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से कुछ ही समय पश्चात संध्या 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। उत्तरायण कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 5:45। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे ईजा बाबू प्रति हमर कर्तव्य और दायित्व विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगी श्रीमती ज्योति पथने। भक्ति संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे संध्या 6:41 पर। ग्राम जगत कार्यक्रम होगा संध्या 7:00। फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे संध्या 7:40 पर और रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम में और रात्रि 10:30 पर फिल्म संगीत के कार्यक्रम में। मिले जुले गीत गजलों का कार्यक्रम सबरस होगा रात्रि 8:00। आज रात्रि 10:00 आप सुनेंगे सुगम संगीत। ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र डालते हैं कल दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर।

हमारी कल प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी प्रातः 5:55 पर। 6:05 पर आप सुनेंगे विचार बिंदु। तत्पश्चात 6:10 पर आराधना कार्यक्रम के तहत सुनेगा कुछ भजन। आज की बात कार्यक्रम का समय रहेगा प्रातः 6:40। 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। श्री रामचरित मानस कान पाठ का समय रहेगा प्रातः 7:10। प्रातः 7:30 पर कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी में कल आप सुनेंगे गोपाल राम के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत। प्रातः 7:50 पर हिंदी कार्यक्रम में कल सुनेगा श्री दयाल चंद्र पांडे का काव्य पाठ। प्रातः 8:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम गीत निरसर हम आपके लिए लेकर आएंगे कल सुबह 9:05 पर।

10:05 पर होगा कार्यक्रम सबरंग और 10:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरभार। फौजी भाई फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए सुनेंगे कल सुबह 11:00। 11:30 पर आप सुनेंगे कुमाऊनी गढ़वाली और जौनसारी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकसुर मेरी पसंद। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे दिन में 12:00। 12:30 पर महिलाएं सुनेंगे कार्यक्रम एपन। सुगम संगीत सुनेगा दिन में 1:15 पर। 1:30 पर आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1297वीं कड़ी। उत्तराखंड के लोकगीत सुनेगा दिन में 2:00। 2:30 पर होंगी खेती की बातें। कल इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे आधुनिक कृषि में माइक्रो बायोलॉजी का योगदान विषय पर जानकारी देंगे श्री संजय कुमार। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 2:45 पर। एक ही फनकार कार्यक्रम में अपराह्न सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम के तहत 3:00। हमारी कल सायंकालीन सभा आरंभ होगी 5:00। 5:05 पर शैलस्वर कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे गोविंद सिंह रावल का गाया लोकगीत। कल रात्रि 10:00 सुनेगा खेल दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। संध्या 6:50 पर आप सुनेंगे गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और 7:30 पर आप सुनते हैं कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। युवा साथी युवाणी कार्यक्रम सुनेंगे संध्या 5:15 पर। उत्तरायण कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 5:45। भक्ति संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे संध्या 6:41 पर। किसान भाई किसान वाणी कार्यक्रम सुनेंगे संध्या 7:00। कल इस कार्यक्रम में सुनेगा पॉली हाउस में बेमौसमी सब्जियों की खेती विषय पर डॉक्टर उत्कर्ष कुमार से भेंट वार्ता। फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे संध्या 7:40 पर। रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम में और कल रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे गजलों का फरमाइशी कार्यक्रम महफिल। मिले जुले गीत गजलों का कार्यक्रम सबरस होगा रात्रि 8:00। ये थे हमारे आज के शेष और कल दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब युवा साथी सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

युवाणी सुनने वाले सभी दोस्तों को आपकी रेडियो मित्र राशिका का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युवाणी के आज के अंक में। दोस्तों आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज कैलेंडर का एक बहुत ही खूबसूरत पन्ना खुला है और दोस्तों आज ही के दिन हम मना रहे हैं ग्लोबल पेरेंट्स डे यानी वैश्विक अभिभावक दिवस। दोस्तों जीवन में बहुत से शिक्षक मिलते हैं, बहुत सी किताबें हमें ज्ञान देती हैं, लेकिन हमारी पहली पाठशाला हमारा घर होता है और हमारे पहले शिक्षक होते हैं हमारे माता पिता। जब हम छोटे होते हैं तब शायद हमें उनकी बातें बार बार सुनकर अच्छा नहीं लगता। समय पर उठो, ईमानदारी से अपना होमवर्क करो, बड़ों का सम्मान करो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। ये बातें उस समय साधारण लगती है लेकिन जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं हमें एहसास होता है यही छोटी छोटी सीखें हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों ज़रा सोचिए, जब हम पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं या जब हम पहली बार चलना सीखते हैं तो गिर के उठना हमें कौन सिखाता है? जब कभी परीक्षा में कम अंक आते हैं तब किसने हमें हार ना मानने का साहस दिया? जब भी जीवन में

कठिनाइयाँ आती हैं, तब किसने कहा कि कोशिश करते रहो, सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, वो हैं हमारे अभिभावक, जो कि न सिर्फ हमें जन्म देते हैं, बल्कि अपने अनुभवों, संघर्षों और मूल्यों से हमारा व्यक्तित्व भी गढ़ते हैं। वो ही हमें जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ प्रेम, धैर्य और त्याग का अर्थ भी समझाते हैं। दोस्तों, आज के दौर में तकनीक ने बहुत कुछ बदल दिया है। मोबाइल और इंटरनेट से जानकारी तो बढ़ा दी जाती है, लेकिन माता पिता के अनुभव से आज भी हमें जीवन जीने की समझ मिलती है। कहते हैं ना दोस्तों कि पेड़ों की जड़ें जितनी मजबूत होती हैं, वो उतना ही ऊंचा बढ़ता है, और इंसान के संस्कार जितने मजबूत होते हैं, वे उतना ही सफल होता है। और हमारे संस्कारों का श्रेय जाता है हमारे माता पिता को। दोस्तों, विश्व अभिभावक दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। उनका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि कई बार हम जीवन की दौड़ में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि जिन लोगों ने हमें चलना सिखाया, उन्हीं को हम समय देना भूल जाते हैं। दोस्तों, आखिर में आपसे मैं ये कहना चाहूँगी कि माता पिता की सीख किताबों के शब्द नहीं, जीवन के अनुभव हैं। जो इन्हें समझ लेता है, वो जीवन की हर परीक्षा में सफल हो जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की बात। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए करते हैं आपका मनोरंजन एक गीत के साथ।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम युववाणी में। अब बढ़ते हैं आज के विशेष अंक साहित्य जगत की ओर। और आज साहित्य जगत में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के उस महान कवि की जिनकी लेखनी में जनता की पीड़ा, प्रकृति की सुंदरता और समाज की सच्चाई एक साथ दिखाई देती। दोस्तों हम बात कर रहे हैं जन कवि नागार्जुन की। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्रा था। उनका जन्म 30 जून 1911 को बिहार के मधुबनी जिले में हुआ था। उन्होंने हिंदी और मैथिली दोनों भाषाओं में साहित्य सृजन किया। वो अपनी सरल भाषा, निर्भीक विचारों और जन सरोकारों के कारण वे जन कवि के रूप से प्रसिद्ध हुए। उनकी कविताएं केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि आम लोगों की जीवन, संघर्ष और सपनों का दस्तावेज है। उन्होंने साहित्य को समाज से जोड़ने का काम किया। उन्होंने किसानों, मजदूरों, छात्रों और वंचित वर्ग की समस्याओं को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। उनकी लेखनी में सत्ता से सवाल पूछने का साहस और जनता के प्रति गहरी संवेदना दिखाई देती है।

दोस्तों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जानते हैं उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं को। सबसे पहले जानते हैं अकाल और उसके बाद। ये कविता अकाल से प्रभावित लोगों की पीड़ा को अत्यंत मार्मिक चित्रण करती है। कवि बताते हैं कि भूख केवल पेट की समस्या नहीं बल्कि ये पूरे समाज को प्रभावित करती है। ये कविता हमें दूसरों के दुख को समझने, संवेदनशील बनने की प्रेरणा देती है। उनकी एक और रचना बादल को घिरते देखा है उनकी सबसे लोकप्रिय कविताओं में से एक है। इसमें प्रकृति का अत्यंत सुंदर और जीवंत चित्रण मिलता है। बादलों, पहाड़ों और प्रकृति के विभिन्न दृश्यों के माध्यम से कवि जीवन की सुंदरता और आशा का संदेश देते हैं। दोस्तों वे केवल एक कवि ही नहीं बल्कि उपन्यासकार, निबंधकार भी थे। उनके प्रसिद्ध उपन्यासों में रतिनाथ की चाची बाबा बटेसर नाथ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन रचनाओं में ग्रामीण जीवन,

0: संदेश देते हैं। दोस्तों, वे केवल एक कवि ही नहीं बल्कि उपन्यासकार, निबंधकार भी थे। उनके प्रसिद्ध उपन्यासों में रतिनाथ की चाची बाबा बटेसर नाथ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन रचनाओं में ग्रामीण जीवन, भारतीय समाज की वास्तविक तस्वीर दिखाई देती है। नागार्जुन का मानना था कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को दिशा देना भी है। यही कारण है कि उनकी रचनाएं आज भी उतनी प्रासंगिक हैं जितनी अपने समय में थी।
1: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए हैं।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक, जागो।

दोस्तों, कार्यक्रम में बढ़ते हैं आज के इतिहास की ओर और जानते हैं क्यों है आज का दिन खास इतिहास के पन्ने में। दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 2001 में नेपाल राजघराने के क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने अपने राजपरिवार के 9 लोगों की हत्या कर दी थी। मरने वालों में उनके पिता राजा वीरेंद्र, माता रानी ऐश्वर्या और शाही परिवार के 7 और सदस्य शामिल थे। परिवार की लोगों की हत्या के बाद दीपेंद्र ने खुद को भी गोली मार ली। आज ही के दिन वर्ष 1869 में थॉमस एल्वा एडिसन को मिला था उनका पहला पेटेंट। पूरी दुनिया में थॉमस एल्वा एडिसन को इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार के लिए जाना जाता है, लेकिन एडिसन मल्टी टैलेंटेड इंसान थे। फोनोग्राफ, कैमरा, टेलीफोन से लेकर बैटरी तक उन्हीं की देन है। 18 अक्टूबर 1931 को जब उनका निधन हुआ था, तब उनके नाम पे 1093 पेटेंट रजिस्टर्ड थे। उन्हें अपने आविष्कारों के लिए पेटेंट मिलने की शुरुआत आज ही के दिन से हुई थी। 1 जून 1869 में उन्हें इलेक्ट्रिक वोट रिकॉर्डर के लिए पेटेंट मिला था। ये उनके साइंटिफिक करियर का पहला पेटेंट था। आज ही के दिन वर्ष 1926 में हॉलीवुड एक्ट्रेस मर्लिन मुनरो का जन्म हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 2008 में आईपीएल के पहले संस्करण में फाइनल में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था। आज ही के दिन वर्ष 1929 में बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस नरगिस का जन्म हुआ था। नरगिस को एक्टिंग का शौक नहीं था, लेकिन उनकी मां की इच्छा थी कि नरगिस अभिनेत्री बने। महज 6 साल की उम्र में बतौर बाल कलाकार उन्होंने फिल्मों में एंट्री ली। 60 के दशक में नरगिस ने राज कपूर के साथ कई फिल्में की। 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया नरगिस की फिल्मी करियर में मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान सुनील दत्त ने नरगिस को आग से बचाया था। कहा जाता है कि इस घटना के बाद नरगिस ने सुनील दत्त को अपना जीवन साथी चुन लिया। 1967 में आई उनकी फिल्म रात और दिन के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये पहला मौका था जब किसी अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। वे राज्यसभा सदस्य भी रही और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। कैंसर से जूझ रही नरगिस ने 30 मई 1981 को दुनिया से अलविदा कह दिया। दोस्तों, ये था हमारा आज का इतिहास। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए

दोस्तों, हमारा कल का पूछा गया प्रश्न था, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? जिसका सही उत्तर है, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। और सही उत्तर लिख भेजने वाले हमारे दोस्तों के नाम हैं, रामपुर रोड हल्द्वानी से गंगा सिंह रावत, काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल सुरेशे, सुषमा सुरेशे, मायरा सुरेशे, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, जगदीश जौहरी। दोस्तों, इसी क्रम में नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, ग्लोबल अभिभावक दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर, ग्लोबल अभिभावक दिवस कब मनाया जाता है? अगर जानते हैं आप इसका सही उत्तर तो लिख भेजिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9411011222 पर। सही उत्तर लिख भेजने वाले दोस्तों के नाम कल इसी कार्यक्रम में उद्घोषित किए जाएंगे। इसी के साथ अपनी दोस्त राशिका को अनुमति दीजिए आज के युवाणी कार्यक्रम से। नमस्कार।

दोस्तों अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आज के प्रश्न की ओर। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम पूछते हैं आपसे एक प्रश्न और बताते हैं बीते दिन पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर, साथ ही सही उत्तर लिख भेजने वाले हमारे दोस्तों के नाम।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम उत्तरायण।

उत्तरायण कार्यक्रम सुनने वाले सब श्रोतान के संतोष कुमार कोटली नमस्कार। श्रोताओं हम आपको कार्यक्रम माध्यम लिए रहे हैं कुछ बातचीत, कुछ जानकारी और दगड़ पर कुछ कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीत। दगड़ियों कार्यक्रम की शुरुआत करना आप लोगों का कुछ बातचीत दगड़ और दगड़ियों जैसा कई जहाँ कि माता पिता गुरुदेव का और यह बात बिल्कुल ठीक ले चुकी, लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में माँ बाप नक नाम जो छू गुरु और देवता हवेले पहले ली जा कि, लेकिन हम जब ये दुनिया में उन्हों तो हमको ये दुनिया रस्त दिखाने वाले हमारे माँ बाप होनी और हमको ये दुनिया में लूनी वाले हमारे माँ बाप होनी और उनर सम्मान करण, उनर इज्जत करण, उनर सुख दुख ध्यान धरण हम लोगों ने कर्तव्य छू। दौड़ियो आप लोगों ने तो मैं ये बात ये जी लाग रही कि लेकिन आजक दिन हम मना लाग रही वैश्विक अभिभावक दिवस और यह दिन हर साल 1 जूनक दिन मनाई जा और संयुक्त राष्ट्र 2012 बैठी यह दिन को मनाने घोषणा करी। दौड़ियो माँ बाप लिजिक जो दिन हूँ उसी तो रोजे दिन माँ बापों का हूँ, लेकिन हमर माँ बाप जो छन हम लोगों के पाल बेर पोष बेर पढ़ बेर लिख बेर जब अपन खुटा पा ठाल करनी आत्मनिर्भर हम उनको बनानी तो बहुत से मेहनत उनको करना पड़ी, बहुत से परेशानियों का सामना उनको करना पड़ू, तब जबेर जे हम लोग अपने खुटापा ठाल होनू या फिर अपने पेट भरने लायक हम लोग बनू। आज जुल मनखी जुल पद पर छू उ पद पर जाना जी उनर मैं बाबुल बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनर पिछाड़ी देखभाल उनर कर रहे हैं, तब जबेर जे कोई मनखी एक भल भविष्य अपन चुनू भल लक्ष्य अपन प्राप्त करूँ, तो अगर हमारे माँ बाप नहीं होना तो हमारे लिए जीवन आसान नहीं होना। यह बात के हम तब बटिक सोच सकूँ कि जब बटिक मनखी जो हूँ एक छोट भाव जो हूँ अपन खुटापा ठाड़े नहीं हो सकन, लेकिन माँ बापों को आऊँ पकड़ गिर वो ठाड़े ही हो सीखूँ और हिटन सीखूँ। और दगड़ियों हम लोगों को कर्तव्य बनूँ कि हम लोग जब हम माबूल हमारे माँ बाबूल हमल जी ये तो कुछ कर रहो तो उनर जो बुढ़ापा छू उमें हम लोग उनर सहयोगी बनूँ, उनर सहायता करूँ, उनर मदद करूँ और उनके एक भल जीवन हम दियूँ।

हम देखूं कि जब मन की ठूल जहाँ धीरे धीरे बुढ़ापा तरफ जहाँ, तो वीक उम्र दगाड़ वीक शारीरिक कमजोरी ले बढ़ जी और धीरे धीरे वो कमजोर होते जहाँ। तो उस वक्त में हमार फर्ज बनू कि हम अपने माँ बाबू को सहार बनू और उनके एक आरामदायक जीवन जीऊँ। देखो यो जो दिवस हम मनाना लाग रही, एक मनाना मुख्य उद्देश्य छू कि हम लोगों का अपने माँ बाबू का सम्मान करण। कई बार कहूँ कि मन की ठुल हवेर जब आत्मनिर्भर बन जानी, तो यो सोच लेने कि वो यही प्रकार ठुल हरनल और अपनों नर माँ बाबू प्रति के कर्तव्य छी उनको भूल जानी। तो यह बात का हम लोगों के बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए और हम लोगों का अपने माँ बाबू जो छू सम्मान करना चाहिए और उनर हर सुख दुख में सहायक बनना चाहिए। ये के अलावा हमारे जीवन में माँ बाबू के अहमियत छू यह बात के जान रहे जी, हम लोगों के उन लोगों को देखना चाहिए जन जनूल कोई ना कारणवश अपने माँ बाप जो छन बहुत जल्दी या बहुत कम उम्र में खो हाली। उन लोगों को माँ बापों कमी महसूस ही और हमारे देश में हमारे पूरे विश्व में बहुत से लोग या छन जो पैदा होते ही यो दुनिया में जन्म लेते ही अपने माँ बापों को खो दिनी। तो दगड़ियो जगले माँ बाप मिल रखी उनके उनर अहमियत को समझना चाहिए और उनर सम्मान करना चाहिए और उनर सम्मान कर बेर अपने जीवन में आई माँ बाबू प्रति आपको कर्तव्य को समझना चाहिए और उनका सेवा पानी करना चाहिए। दगड़ियों जो ला आप माँ बाबू सेवा पानी कर लो तो निश्चित रूपन उनके जीवन में कोई ल कष्ट नहीं होल कि, लेकिन कई जहाँ की माँ बाबू खुटा में जो थू स्वर्ग छू। और अगर हम लोग अपने माँ बाबू की सेवा कर लो तो जरूर हम लोग उनके स्वर्ग ज सुखक प्राप्ति है। अगिन आप लोगों का बातचीत करो आओ कार्यक्रम में सुन लूँ शैलजा मसीहा गाई यो लोकगीत।

0: तोड़े लाभ हम सुन लागरा छी शैलजा मसीह गाइये लोकगीत और अब कार्यक्रम में आगे सुनू ईजा बजू प्रति हमर कर्तव्य और दायित्व विषय पर श्रीमती ज्योति पत्नी दगल करी गई यो बातचीत।
1: वैश्विक अभिभावक दिवस हर साल 1 जून हूँ पुरदूड़ी भर में इच बौजुक निस्वार्थ प्रेम समर्पण और नांतिनाक लालन पालन में उनर योगदान के सम्मानित करना लीजी मनाई जा। यह दिन नांतिनाक उनर इच बौजू बीच विशेष बंधन के सम्मान करो। यह दिन नांतिनाक अपुर इच बौजू को धन्यवाद करणक अवसर दियो। हमर जीवन में सामाजिक विकास में आर्थिक विकास में इच बौजुक बहुत ठुल भूमिका ही। इज बौजू अपुर नांतिनाक प्रति अपुर प्रमुख जिम्मेदारियों प्रति और उनर विकास में अपुर भूमिका के महत्व के लिए जागरूक होने लागरीन। उचित सीमाओं वाल स्वस्थ वातावरण नांतिनाक विकास लीजी बहुत महत्वपूर्ण छू। इज बौजू बनन आर्थिक सफलता और सामाजिक विकास के प्रभावित करो। इज बौजू बनन सिर्फ जन्मदिन हैती बल्कि यह नांतिनाक लालन पालन करण उनको शिक्षा दिन उनको भल संस्कार दिन सामाजिक बनुन और मुश्किल बखत में उनर सहार बनने छू। इज बौजू बनन एक कभी ना खत्म होने वाल सीखनी अनुभव छू। एक बार जब आप लोग एक स्वीकार कर लिछा तो फिर पहन मुड़ना कोई बात नहीं हो। वैसे अभिभावक एक अध्ययनक अनुसार नांतिनाक अपुर बाबूक सक्रिय भूमिका बहुत लाभ हूँ। ईजा बौजू को आजक बखत में अपुर नांतिनाहू बातचीत करन बहुत ठुल मायने रखूँ। ईजा बाबू प्रोत्साहन उनर समर्थन उनर गतिविधि नांतिनाक बहुत ठुल पहचान प्रदान करूँ जो नांतिनाक विकास में महत्वपूर्ण कामों में निपुणता प्राप्त करन में सक्षम बढ़ूँ। एक भल शिक्षा व्यक्ति के एक सफल करियर प्रदान करूँ। जैलू सामाजिक सेवा करूँ। ईजा बौजू को अपु परिवारक सदस्यों दगड़ मिलवे उनर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे बातचीत करण चाहे जैल उनर समस्याक में उन समस्याक पत्त चल सको ताकि मुश्किल और कठिन समय में सहायता कर सको। नांतिनाक सफलता में ईजा बाबू बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ही। जो ईजा बाबू अपू नांतिनाक शिक्षा में रुचि धरनी उनको सफल बढ़नक उनर सफल बढ़ने संभावना ज्यादा ही। कोई ले नांतिन हो वह पहली स्कूल वह घर हो। ईजा बाबू जो माहौल में उनर पालन पोषण करनी उही माहौल में नांतिन ज्यादा सीखू। यह कुन गलत

डिज्नी हॉल की नांतिनाग शिक्षा में ईजा बाबू भूमिका ज्यादे हुई। याक लीजी ईजा बाबू भागीदारी ज्यादे छो। नांतिनाग ठूल उपलब्धियां हासिल करने के लीजी एक एकल काम तैयारी करन पड़ सकी। हालांकि हर नांतिन अलग अलग हूँ। स्टीव स्टेटक कुण छू कि ईजा बाबू सही मार्गदर्शन ले उन्हें नांतिना में सर्वोत्तम क्षमता लाई जा सका। ईजा बाबू यह सुनिश्चित करण चाहे कि उन्हें नांतिना के रोज भल नींद मिलो। ज़्यादातर विद्यार्थी के अपूर्ण अधिक क्षमता काम करने लीजिए 9 या 10 घंटा नींद जरूरी है। ईजा बाजू को स्कूल टाइम बारे में पत्ते होने चाहे। नांतिनाग स्कूल में व्यवहार कस छू यल पत्ते होने चाहे। अपूर्ण नांतिनाग रोज स्कूल में उपस्थिति जाँच करण चाहे। यह लिए साबित हूँ कि उन्हें शिक्षा तुम्हार लीजिए महत्वपूर्ण छू। अभिभावक शिक्षक दगे सामूहिक काम करबे यह सुनिश्चित करण चाहे कि उन्हर छात्र उनको हर सप्ताह स्कूल में के काम पूर्ण करबे चुनौती दूँ। अभिभावक नांतिनाग लीजिए दृढ़ लक्ष्य निर्धारित करण चाहे और उनको बढ़ाई रखन चाहे और अपन नांतिना पर विश्वास बढ़ाए रखन चाहे। ईजा बाजू को ध्यान रखन चाहे कि वो अपन नांतिनाग शारीरिक या मानसिक रूप ले उनको अपन नांतिनाग के शारीरिक या मानसिक रूप ले प्रशिक्षित करन चाहे। जैल वो ज़्यादा मेहनत कर सको और स्कूल में भल व्यवहार बढ़ा सको। ईजा बाजू नांतिनाग जीवन में प्रकाश स्तंभ होनी। वो अपन नांतिना नींव धरनी और उनको जीवन भर जरूरी कौशल परिपूर्ण बनोनी। ईजा बाबू अपन नांतिना की रक्षा करनी उनर विकास को सुनिश्चित करने लीजिए अनगिणी निस्वार्थ बलिदान देनी। वैश्विक ईजा बाबू दिवस पर नांतिन अपूर्ण ईजा बाबू प्रति उनर द्वारा करी गई सब कार्यों के लीजिए आभार व्यक्त करनी। वास्तव में ईजा बाबू दगे हमर रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण और सच्ची बंधन छू और यह दिन हमको उन्हें समर्पण और सम्मान करन चाहे। जो नांतिन अपूर्ण ईजा बाबू दगे दोस्ती बढ़े रखनी और उनर विश्वास को बढ़े रखनी उन्हें सम्मान करनी और उनर दगे भल रिश्ते बढ़े रखनी वो बहुत भाग्यशाली होनी। ईजा बाबू हूँ वास्तव में एक आशीर्वाद छू। यह द्विपक्ष में लागू हूँ कि ईजा बाबू ले अपूर्ण नांतिना प्रति अपूर्ण पहली जिम्मेदारी और उनर विकास में अपूर्ण भूमिका महत्व को समझन चाहे। नांतिनाग स्वस्थ वातावरण में सही नियमों दगे पालन पोषण होन जरूरी छू और यह कह लीजिए ईजा बाबू सबसे भल आदर्श होनी। एक अध्ययन में पत्ते चलो कि नांतिनाग होने वाल आघात और भावात्मक घाव उनर विकास और जीवन के प्रति दृष्टिकोण के ज़्यादा हद तक बाधित करूँ। 17 सितंबर 2012 के संयुक्त राष्ट्र 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस के रूप में घोषित कर रखो। यह दिवस का उद्देश्य ईजा बाबू खुनक महत्व और नांतिना सकारात्मक विकास लीजी आवश्यक सुरक्षा और साधन प्रदान करने में उनर भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ूँ छू। आखिरकार ईजा बाबू ही नांतिनाग पहली शिक्षक और मानवीय संपर्क होनी। सामुदायिक नेता ईजा बाबू नांतिन शिक्षक और पारिवारिक संगठन यह दिवस को मनुनक लीजी और प्रभावी पालन पोषण बढ़ावा दिनक लीजी एकजुट होनी। ईजा बाबू लीजी और एक परिवार में स्थिरता बढ़ावा दिन लीजिए व्यापक रूप ले अभियान और शैक्षिक कार्यक्रम ले आयोजित करी जानी जमें ईजा बाबू और नांतिनाग रिश्ते को और बढ़ावा मिलू। नांतिन जिले सीखूँ वो सब अपूर्ण ईजा बाबू और परिवार बटी सीखूँ। यह कह लीजिए ईजा बाबू और पारिवारिक व्यवहार नांतिना को बहुत सीख दूँ। ईजा बाबू और नांतिनाग रिश्ते प्यार विश्वास और सम्मान पर आधारित हों। ईजा बाबू नांतिनाग प्रति स्नेही धैर्यवान और मार्गदर्शक व्यवहार धरन चाहे। जैल नांतिन बिना डरी अपूर्ण बात के कह सकूँ। बदले में नांतिना के लिए ईजा बाबू सम्मान और उन्हें आज्ञा पालन करन चाहे। ईजा बाबू नांतिनाग उम्र अनुसार उन्हें समस्याओं और भावनाओं को समझन चाहे। अगर वो कोई गलती करनी तो उन पर चिल्लान या मारना बजाय उनको प्रेमल समझन चाहे। ईजा बाबू नांतिनाग दगा खुलवे बात करन चाहे। वो स्कूल में कस महसूस करनी उन्हें रुचि के छू इन बातों को जान लीजिए हमेशा टाइम निकालन चाहे। हर नांतिन में अपूर्ण क्षमता और गुण होनी। कभी ले अपूर्ण नांतिना तुलना दोह नांतिना दगे नहीं करन चाहे। येल उनर आत्मविश्वास कम हूँ। नांतिन अपूर्ण ईजा बाबू को देखबे बहुत कुछ सीखनी। अगर आप लोग चाचा कि अपूर्ण नांतिन ठुलाक सम्मान करो सच बुलाओ तो अपूर्ण

0: लय उसे व्यवहार करन पड़ल। ईजा बाबू नंतिनाक नियमों पालन कर ईजा बाबू को नंतिनाक नियमों पालन करुन सीखन चाहे जय, लेकिन यह शक्ति ईजा बाबू को अपन नंतिनाक नियम पालन करुन सीखन चाहे अपुर ईजा बाबू प्रति आदर और सम्मानक व्यवहार हुन चाहे उनर विचार और निर्णयक सम्मान करन चाहे। ईजा बाबू नंतिनाक भलाई लीजिए ही नियम बढ़नी एक लीजिए उनर बातु और सलाह गंभीरता लेन चाहे। नंतिनाक अपुर दिन भरक बात अपुर ईजा बाबू दगे साझा करन चाहे, मुश्किल बखत में उन्हों सलाह लेन चाहे। ईजा बाबू नंतिनाक लीजिए बहुत त्याग करनी उनर प्रयासों लीजिए उनको धन्यवाद कुन चाहे और उनर काम में छोट मोट मदद करवे अपुर प्यार देखुन चाहे। ईजा बाबू और नंतिनाक बीच आपसी भल तालमेल हुन चाहे। नंतिनाक यह सुरक्षित माहौल दिन चाहे कि वो बिना डरी अपुर गलती की स्वीकार कर सकूँ। अपुन नंतिनाक एक भल टाइम दिन चाहे पूरे परिवार दग मिलजुड़े खान खान चाहे दगड़ में थोड़ी टाइम बीतुन चाहे जैल रिश्ते और मजबूत होनी। नंतिनाक विकास में सब लोगों की अहम भूमिका ही। नंतिनाक देखभालक मतलब प्यार दिन और उनको मार्गदर्शन प्रदान करूँ छूँ जो स्वस्थ विकास लीजिए बहुत जरूरी छूँ। यह लीजिए आज हर व्यक्ति को सम्मानित करी जा जो नंतिनाक लीजिए ईजा बाबू भूमिका निभू। एक भल अभिभावक बनने लीजिए थोड़ी सरल कौशलों आवश्यकता ही जो सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा दियो। वैश्विक अभिभावक दिवस के एक उत्सव रूप में मनुंचे हर उम्रक नंतिन दिन में थोड़ी टाइम निकाल बे अपुर ईजा बाबू को धन्यवाद दी सको। ईजा बाबू अपुर नंतिना दगे टाइम बितबे अपुर भूमिका को और मजबूत बना सकनी। भल परवरिश करबे अपुर विचार के सार्वजनिक रूप में व्यक्त कर सकनी। अपुर परिवार के इकट्ठा करबे ले पारिवारिक दिवस मना सकनी। पारिवारिक समय ले दिन कभी कभी परिवार दगले पिकनिक मनुंचे इन तरीकों ले हम परिवार दिवस मना सकनु। संयुक्त राष्ट्र ले 2012 में शरद ऋतु में वैश्विक ईजा बाबू दिवस मनुनक लीजी एक प्रस्ताव पारित करो। यह एक पहली आयोजन 1 जून 2013 हो। यह दिन दुनिक सब हिस्सों में रुनीवाल ईजा बाबू को नंतिनाक प्रति उनर निस्वार्थ समर्पण और उनर रिश्ते को पोषित करनक लीजी उनर आजीवन बलिदानक लीजी उनर सराहना करनक लीजी अवसर प्रदान करो। ईजा बाबू अपन नंतिना में एकाग्रता ध्यान और आत्मनियंत्रण विकसित करने में योगदान देनी। नंतिनाक मन में अगर नकारात्मक सोच पैदी तो उनको सुधारन में उनर मदद करनी। ईजा बाबू होने नातल हमूल अपुन नंतिना के शिक्षा का अधिकार दिन चाहे। नंतिना के स्वास्थ्य और खुशहाली का अधिकार दिन चाहे। आजकल बदलते बखत में ईजा बाबू लीजिए पालन पोषण अधिक चुनौतीपूर्ण है गो। यह कई कारण छिन। आजकल जीवन शैली एकल परिवार और ईजा बाबू दोनों कामकाजी हूँ और इंटरनेट डिजिटल तकनीकी यले एक बहुत ठुल चुनौती छू। आजकल नंतिन अपुर ज़्यादा बखत वीडियो गेम सोशल मीडिया और ऑनलाइन सामान में बितुनी जैल उनर शरीर और सामाजिक विकास प्रभावित हूँ। सोशल मीडिया प्रभाव कारण नंतिना में मानसिक तनाव जस डिप्रेशन एंग्जाइटी ले बढ़न लग रहा। यह और ले कई कारण छिन जस समय कमी कारण आजकल ईजा बाबू घंटों तक कामों में व्यस्त होनी जैल नंतिना के पूर्व समय और भावात्मक सहार नहीं मिल पान। आजकल संयुक्त परिवारक टूटनक ले एक कारण छो। एकल परिवारक कारण नंतिना के घरक बुजुर्गों सही मार्गदर्शन और अनुभव नहीं मिल पान जैल जो पहली पालन पोषण कर आसान बनुची। आजकल डिजिटल युग में यह चुनौती ले निपटने लीजिए ईजा बाबू को तकनीकी व दूर बजाय उनको डिजिटल दुनिया सही और गलत पाठ पढ़ने की आवश्यकता छो।
1: दगड़ियोला हम सुन लग रहा छी ईजा बाबू प्रति हमर कर्तव्य और दायित्व विषय पर श्रीमती ज्योति पत्नी द्वारा कही गई बातचीत और

झुमुकी न तुली झलके छो छुप छुपा झुमुकी न तुली झलके छो रंग

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: दगड़ियों, हम देखते हैं कि आज हमारे समाज में, हमारे देश में फैली हुई समस्याओं, परेशानियों की बात करूं तो बहुत से समस्या थी, बहुत से परेशानी थी, जमा की बेरोजगारी ले एक मुख्य समस्या थी। आज हम देखते हैं कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों बटी बहुत से लोग जो थे अपनी पलायन करने लग रही और यहाँ बटी पलायन कर वेर जो छू अपन घर वापस नहीं लग रही, जैल के हमारे पहाड़ों का विकास जो छू रुकन लग रहा और यहाँ हमारे गाँव गाँव वीरान होने लग रही। आज हम देखते हैं कि अगर हम लोग थोड़ा सा मेहनत करूँ, थोड़ा सा हिम्मत करूँ और थोड़ा बहुत सूझबूझक दगड़ हम लोग चाहूँ तो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में रवेर बहुत से काम धंधे कर सकूँ। हम देखते हैं कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में करी जानी कामों में पशुपालन छू, दुग्ध व्यवसाय छू, मत्स्य पालन छू, बकरी पालन छू, ये के अलावा बागवानी छू, बहुत से कारोबार हम कर सकूँ। देखिए दुग्ध व्यवसाय तो एक यश व्यवसाय छू जो कि बहुत भल ये वक्त में चल सकूँ कि, लेकिन आज हम देखते हैं कि बाजार में दूध और दूध बटी बनी हुई सामानों की बहुत ज़्यादा मांग ही और आज भल दामों पर जो छू दूध बिकूँ। आज हम देखूँ अगर थोड़ा बहुत मेहनत कर वेर अगर हम लोग डेयरी व्यवसाय चला लूँ या दूध पशुपालन कर वे दूध बेच लूँ या दूध से बनी हुई बहुत से जो सामान हूँ जैसे कि पनीर छू, घी छू, मक्खन छू, इनको बेचूँ तो निश्चित रूप पर हमार जो काश्तकार भवनी छन उनके एक फायदा हल और निश्चित रूप पर उन भल फायदे में कमाल। आज हम मनाने लग रहे विश्व दुग्ध दिवस और दगड़ियों हर साल एक जून के दिन हम यह दिवस के मनानू। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन 2001 बटी यह दिनक शुरुआत करी और यह दिनक मनाने का मुख्य उद्देश्य चूंकि दूधक महत्व को समझण, डेयरी क्षेत्र में बढ़ावा करूँ और लोगों को जागरूक करूँ। हम लोग देखूँ कि हमारे दूध बटी हमारे शरीर में बहुत से पोषक तत्व मिलने जैसे कि कैल्शियम छू, प्रोटीन छू, विटामिन छू, विटामिन डी छू, बहुत से पोषक तत्व हमारे शरीर को मिलनी और जो हमारे शरीर जी बहुत जरूरी होनी। दूध हमारे हड्डी मजबूत होनी और ताकतवर हम लोग बढ़ू। अगर कोई ले मनखी चाहो तो अपने नज़दीक में डेयरी व्यवसाय खोल सकूँ, वो अपने नज़दीक में कोई ले विकास खंड में जाओ या फिर किसी संबंधित विभागों में जाओ तो वहाँ जब संपर्क कर सकूँ और दुग्ध व्यवसाय खोल सकूँ। और अगर हमारे पर्वतीय क्षेत्र युवाओं को हम बात करूँ तो यही क्षेत्र में रवेर अपन गाँव घरों में रवेर अगर हम लोग दुग्ध व्यवसाय या डेयरी व्यवसाय के अपन लूँ तो हम अपन विकास तो कर लूँ दगड़ पार हमारे गाँव क्षेत्र ले विकास हम लोग कर लूँ। थोड़े आगे आप लोगों का बातचीत करो आओ कार्यक्रम में सुन लूँ नरेंद्र सिंह नेगी और अनिता कंडारी गाई यह लोकगीत।

0: ਤਗੜੇ ਲਮ ਸੁਣਾ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਨੇਗੀ ਔਰ ਇੰਤਾ ਕੰਡਾਰੀ ਗਾਈ ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤ।
1: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगा कर भी दिए।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
0: आज एक वक्त जो छू विकासा वक्त छू, और यह विकासा वक्त में हम लोग बहुत से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो उपयोग करनु और जो हमको बहुत ज़्यादा सुविधा देनी, जैसे कि मोबाइल फ़ोन छू, टैबलेट छू, कंप्यूटर छू, लैपटॉप छू, चार्जर,

ईयरफोन, ये के अलावा वॉशिंग मशीन छू, माइक्रोवेव छू, कैमरा छू, सीसीटीवी कैमरा छू, बल्ब एलईडी बल्ब छन या ट्यूबलाइट छू, तो बहुत से यस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हम उपयोग करनु। और दगड़ियों अगर यो खराब हगा या बंद हगा तो हम लोग जो छू उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दें, या तो उनको कथक है स्टोर रूम में फेंक दिनु, या फिर कथक है इतका उतका खेल दिनु, या फिर कबाड़ी बाल के बेच दिनु। तो दगड़ियों हम लोग उनकी यस गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि, लेकिन यूं जोले उपकरण हनी यूं बहुत से बीमारियों को पैद करनी, जैसे कि किडनी खराब छू, कैंसर छू, ये के अलावा बहुत से बीमारी पैद होना क्यों कारण बननी। तो ये एक लीजिए हम लोगों के जो छू ये जब उपकरण हमारे बंद पड़ गए तो हम लोगों के ये एक बहुत जल्दी एक निस्तारण करना चाहें। और ये निस्तारण करना जी हम लोगों के जो अधिकृत केंद्र छन, ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर छू, वह हम लोगों के इनको जुड़ चें ताकि वो एक भली के तरीका निस्तारण करो। और हम लोग अगर सोचूं कि हम लोग इनको जल दूँ या फिर इनको नष्ट कर दूँ, तो वो कहूँ कि जल वेर ये मट्टी निकलने वाली जो धूं हूँ वो हमार वायुमंडल के खराब करूँ और जो बहुत सी बीमारियों का कारण बन सकूँ। तो ये कह लीजिए अपने घर में जो ले आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपयोग करने लगा छा, अगर वो बंद पड़ गो तो वीक सही तरीका सही ढंग वीक निस्तारण करना चाहें और उन बटी होने वाले दुष्प्रभाव बटी हमको बचन चाहें। आगे आप लोगों का बातचीत करो आओ कार्यक्रम में सुन लो ललित मोहन पांडे गाई या लोकगीत।

उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें पीएम सूर्य घर .gov.in पर।

यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद। जिसने गर्व किया उसका पतन हुआ। स्वामी विवेकानंद।

0: सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद। जिसने गर्व किया उसका पतन हुआ। स्वामी विवेकानंद। हिंदी का प्रयोग करें, इससे कार्यक्षमता, गुणवत्ता, उत्पादकता और योग्यता में वृद्धि होती है। हिंदी राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भाषा है। यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल। आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगा। किसानों को आधुनिक खेती और संतुलित उर्वरक के उपयोग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। एक महीने में 27,911 इनर लाइन परमिट जारी। और चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुली। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। और अब समाचार विस्तार से। चमोली जिले की नीति घाटी में गत 31 मई से 2 जून तक आयोजित हो रहे नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन के अंतर्गत विभिन्न स्पर्धाओं के विजेताओं को आज सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत यह आयोजन सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज योजना के माध्यम से सीमांत क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होने के साथ ही रिवर्स माइग्रेशन को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 11,000 फीट की ऊंचाई पर आयोजित यह अल्ट्रा रन युवाओं के अदम्य साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास का प्रतीक बनकर उभरा है। इस दौरान श्री धामी ने क्षेत्र में पर्यटन विकास को नई गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। गौरतलब है कि पर्यटन विभाग द्वारा भारतीय सेना और आईटीबीपी के सहयोग से आयोजित इस आयोजन में देश के 27 राज्यों से आए 1,200 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इसका उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना, स्थानीय संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाना और युवाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग तथा वन विभाग के अंतर्गत चयनित 276 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्यों में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है, जिससे योग्य और प्रतिभाशाली युवाओं को उनका अधिकार मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में लगभग 33,000 युवाओं को पूरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर सरकारी सेवाओं में जोड़ने का कार्य किया गया है।
2: हमने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसके तहत भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाया गया, जवाबदेह बनाया गया और पहले प्रतिभा से अधिक पैरवी और परिश्रम से अधिक सिफारिशों की चर्चा होती थी, लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं, बल्कि प्रतिभा, योग्यता और क्षमता से आज चयन होता है। इसीलिए हम ये नकल का कानून लाए और उसका परिणाम भी हुआ कि आज युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ चयन का अवसर मिल रहा है। और मुझे गर्व है कि इन 4.5 वर्षों में 33,000 युवाओं को पूरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर सरकारी सेवाओं से जुड़ने का अवसर मिला है।
1: किसानों को आधुनिक खेती और संतुलित उर्वरक के उपयोग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आज से प्रदेश में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून जिले में सहसपुर के ढाकी गांव से एक महीने तक चलने वाले इस अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया और

0: बीमा योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट किसानों को 25,000 की धनराशि के चेक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कृषि मंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक, कृषि विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और प्रगतिशील किसान गांव-गांव जाकर किसानों को संतुलित खाद उपयोग और वैज्ञानिक खेती की जानकारी देंगे।
1: आज 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक खेत बचाओ अभियान की शुरुआत हमने आज यहां से की है। हमने लोगों से अपील की है कि लोग ने रासायनिक खाद का प्रयोग करके अपने जमीन की उर्वरक शक्ति को कम कर लिया है और कई कैंसर जैसे रोग उससे हो रहे हैं। ऐसे में प्राकृतिक खेती को करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमारी सरकार पूरी मदद कर रही है, बीज हम दे रहे हैं, खाद हम दे रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है ये शुरुआत आज यहां से आगाज हमने आज यहां से किया है, ये पूरे 30 तारीख तक चलेगा और किसान इसका लाभ देगा।
0: कृषि मंत्री ने किसानों से मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरक के उपयोग, जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और मिट्टी संरक्षण के प्रति जागरूक होने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है।
0: पिथौरागढ़ जिले में आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और पर्यटकों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। 1 मई से शुरू हुई यात्रा के मात्र 1 महीने में जारी इनलाइन परमिट्स की संख्या 27,911 पहुंच गई है, जो यात्रा के प्रति श्रद्धालुओं की बढ़ती आस्था और आकर्षण को दर्शाता है। यह यात्रा क्षेत्रीय पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को नई गति प्रदान कर रही है, जिससे सीमांत क्षेत्र के विकास को भी बल मिल रहा है। वहीं जिला प्रशासन ने यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों से आवश्यक दस्तावेजों को अपने पास रखने, मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपनी यात्रा संपन्न करने की अपील की है। चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इस अवसर पर पर्यटकों में भारी उत्साह देखने को मिला। वहीं वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पतियों के संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है। अधिकारियों ने पर्यटकों से कहा है कि वे फूलों को तोड़ने, कूड़ा फैलाने या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों से बचें। फूलों की घाटी विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्र में स्थित है, ऐसे में मौसम विभाग के अलर्ट, स्थानीय मौसम की स्थिति और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित और सुखद बनी रहे। वहीं वन विभाग के अनुसार वर्तमान में फूलों की घाटी में 300 से अधिक प्रजातियों के पुष्प और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की ओर से बागेश्वर में 10 दिवसीय मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण शुरू किया गया है। प्रशिक्षण में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 25 युवाओं और महिलाओं को बटन मशरूम, मिल्की मशरूम और ऑयस्टर मशरूम के उत्पादन की तकनीक सिखाई जा रही है। मास्टर ट्रेनर ममता मेहरा ने बताया कि मशरूम उत्पादन कम जगह, कम लागत और सीमित संसाधनों में शुरू किया जा सकता है।
3: जैसे कि मशरूम तो हमारे 1400 प्रकार के हैं, 1400 प्रकार में हमने बेसिक जो मशरूम, इनको प्रैक्टिकल अभी 2 प्रकार का प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, बाकी का थ्योरी के माध्यम से करवा रहे हैं। और ये एक छोटे से बंद कमरे में अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर सकते हैं। जैसे अन्य जो हम खेती करते हैं उनके मुकाबले हमारा जो मशरूम है ये कम जगह में और अधिक मुनाफा और कम लागत में आसानी से कर सकते हैं जिसको हम।
0: प्रशिक्षणार्थी नंदन सिंह ने बताया कि मशरूम उत्पादन जैसे स्वरोजगार आधारित प्रशिक्षण स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए विकल्प तैयार कर सकते हैं।
4: इसको हम आगे आगे जाके जो है इस पे काम कर सकते हैं, जिसे अपना छोटा मोटा रोजगार कर सकते हैं। तो गांव में और भी कई लोग जो बेरोजगार हैं, तो इसे जो है एक दूसरे को प्रेरणा मिल सकती है, तो इसको हम धीरे धीरे मार्केट में ला सकते हैं और इसके फायदे बहुत हैं। काफी चीजों से ये जो है भरपूर प्रोटीन है इसमें, मतलब दवाइयों के काम में आ सकता है ये, और छोटे बच्चों के प्रोटीन जिनमें जो कैल्शियम की कमी है उसका पूरा इसका फायदा है। तो इसको हम एक अपना रोजगार के

0: तरफ देख सक रहे हैं। तो मतलब अभी तो ये हमारा परीक्षण है, मतलब तो आगे चल के देखते हैं, हम इसमें पूरा अपना 100% मतलब काम करने के लिए सोच रहे हैं। तो साथ में जो अपने युवा साथी हैं गांव में, तो हर किसी को हम इसके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे।
1: पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित 17 शिकायतें दर्ज की गईं। जिलाधिकारी ने अधिकांश शिकायतों का मौके पर निस्तारण कराते हुए शेष प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जनता मिलन, सीएम हेल्पलाइन और अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगा। किसानों को आधुनिक खेती और संतुलित उर्वरक के उपयोग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। एक महीने में 27,911 इनर लाइन परमिट जारी। और चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुल गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम की पहली भक्ति रचना हम आपको सुना रहे हैं ओम व्यास के स्वर में।

शर्मा बंधु की गाई सी भक्ति रचना के साथ भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:50 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटा गढ़ोली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ में दीपक सिंह रावत। पहली मुख्य समाचार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में विभिन्न विभागों के अंतर्गत चयनित 276 अभ्यर्थियों थे नियुक्ति पत्र प्रदान करी। प्रदेश में चार धाम यात्रा सुचारू रूप से जारी, शासन प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं को सुविधाओं और सुरक्षा को व्यापक व्यवस्थाएं करेगी। हरिद्वार में सरकारी जमीन पर कब्जा हटाना को विशेष अभियान चले जाणुच और चमोली जिला में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी पर्यटकों को खुली। अब समाचार एक छोर बटे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में नगर और ग्राम नियोजन विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग और वन विभाग के अंतर्गत चयनित 276 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करें। ये अवसर पर मुख्यमंत्री ने नव चयनित कार्मिकों से अपेक्षा करी कि वो अपनी कार्यकुशलता, ईमानदारी, संवेदनशीलता और कर्तव्य निष्ठा के माध्यम से जन सेवा थे सर्वोच्च प्राथमिकता दियाला। उन्होंने बोली कि प्रदेश सरकार ने राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू करी, भर्ती प्रक्रिया थे पारदर्शी, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त बनायुच, जैसे योग्य और प्रतिभाशाली युवाओं थे उनका अधिकार मिलना छन। मुख्यमंत्री ने बोली कि पिछला 4.5 वर्षों में लगभग 33,000 युवाओं थे पूरी पारदर्शिता और मेरिटा के आधार पर सरकारी सेवाओं से जुड़े जानो च।
1: हमने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसके तहत भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाया गया, जवाबदेह बनाया गया और पहले प्रतिभा से अधिक पैरवी और परिश्रम से अधिक सिफारिशों की चर्चा होती थी, लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं, बल्कि प्रतिभा, योग्यता और क्षमता से आज चयन होता है। इसीलिए हम ये नकल का कानून लाए और उसका परिणाम भी हुआ कि आज युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ चयन का अवसर मिल रहा है और मुझे गर्व है कि इन 4.5 वर्षों में 33,000 युवाओं को पूरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर सरकारी सेवाओं से जुड़ने का अवसर मिला है।
0: प्रदेश में चार धाम यात्रा सुचारू रूप से जारी च, शासन प्रशासन की ओर बटे श्रद्धालुओं को सुविधाओं और सुरक्षा खुण व्यापक व्यवस्थाएं करेगी। खराब मौसम से देखते हुए चार धाम क्षेत्र और यात्रा मार्गों पर विशेष सतर्कता बरती जानी च। वकील रुद्रप्रयाग के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन रजवारा ने बताया कि CCTV कैमरों के जरिया केदारनाथ पैदल मार्ग के संवेदनशील क्षेत्रों को निगरानी करे जानी च। दगड़म जिला आपदा नियंत्रण कक्ष बटे पूरी यात्रा मार्ग की निगरानी करे जानी च। उन्होंने बताया कि यात्रा मार्ग पर पुलिस, SDRF, NDRF और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को 647 जवान तैनात छन, जो तीर्थ यात्रियों को सुरक्षा और सहायता से जुड़िया छन।
2: आपदा प्रबंधन का और जो यात्रियों के प्रति जो प्लान है तो वो हमारे जगह जगह पर रेस्क्यू टीमें लगाई गई हैं और जो चेतावनी तंत्र है हमारे, जो कि कंट्रोल रूम से लगातार उनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है और यहीं से मौसम का जो फॉरकास्ट वगैरह है वो भी यहां से ही हम लोग अनाउंसमेंट के जरिए यात्रियों तक पहुँचा रहे हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम लोग उनको सचेत कर रहे हैं और कि सुरक्षित स्थानों पर रहें और अपनी यात्रा सुरक्षित बनाएं। वहां पर सर ITBP है, NDRF है, SDRF है, पुलिस है और होमगार्ड के जवान हैं, PRD के जवान हैं और आपदा मित्र हैं, DDRF है और YMF है और MTF है, म्यूल टास्क फोर्स भी जानवरों के लिए जो काम कर रही है। टोटल 647 लोग जो अभी यात्रा

0: पे है वो कार्यरत।
1: हर देश में आज दुई अलग अलग सड़क हादसों में एक महिला की मौत हो गया जबकि 42 अन्य घायल हुई। हरिद्वार के सप्तऋषि के पास आज राजस्थान के यात्रियों को बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक महिला की मौत हो गया जबकि 37 अन्य घायल हुई। तीन गंभीर घायलों थे एम्स ऋषिकेश खून रेफर करे गया। शेष घायलों को उपचार मिला अस्पताल में करे जाणु च। उन्हें टिहरी जिला में ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंडी खाल और चंबा के बीच खेदार मोड़ पर आज चार धाम यात्रियों थे लिजाण वाली एक बस सड़क किनारा पलटी गया। हादसे में 5 यात्री घायल हुए गिन जबकि अन्य यात्री सुरक्षित छन।
2: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणु जे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
1: हरिद्वार में सरकारी जमीनों पर कब्जा हटाना खुण विशेष अभियान चले जालू। जिलाधिकारी मयूस दीक्षितन बताए कि जिला में विभिन्न सरकारी विभागों को भूमि पर हुआ अतिक्रमण को सूचित तैयार करे जानी च। कब्जाधारियों थे पहली 15 दिन का नोटिस दिए जानो च। यहाँ का बाद प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करे जाली। उन साफ कह रही कि सरकारी भूमि थे हर हाल में अतिक्रमण मुक्त करे जालू। दगड़म जख बटे कब्जा हटे जालू वक्त दोबारा अतिक्रमण होने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी को जवाबदेही भी तय करे जाले।
3: मुख्यतः जो पीडब्ल्यूडी एनएच है सिंचाई विभाग है ग्राम पंचायत की जो जमीन है या अन्य विभाग जो भी है शिक्षा विभाग हो या कोई और भी विभाग हो सभी से लिस्ट हमने मंगाई है कि जहाँ जहाँ पर अतिक्रमण चिन्हित है 15 दिन का नोटिस देने की कार्रवाई की जाएगी जैसा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। उसके बाद जैसे कि अन्य जगह भी हैं भले वो हमारे रेलवे की लैंड हो या कुंभ मेले में यूपी सिंचाई या उत्तराखंड सिंचाई की जमीन हो वहाँ पर भी कुछ निर्माण हमने देखे हैं जो कि लंबे समय से हो गए हैं। कुछ निर्माण परमानेंट नेचर के हैं कुछ टेम्परेरी नेचर के हैं। सभी को अपने अपने स्तर से अधिकारी देखेंगे और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में गति देंगे। अतिक्रमण जहाँ से भी हटाया जाएगा वहाँ पर जो एक अधिकारी है भले वो हमारे राजस्व विभाग का लेखपाल हो या कोई SDO या JE हो सिंचाई विभाग का या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के SDO हो सभी की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। जो भी अधिकारी के क्षेत्र में या कर्मचारी के क्षेत्र में अतिक्रमण है और उसके क्षेत्र में हटा दिया गया है पुनः अगर अतिक्रमण होता है तो उनकी जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी।
1: चमोली जिला में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी थे आज बटे पर्यटकों खून खुले गया। यह अवसर पर पर्यटकों में भारी उत्साह देखने खून मिली। वकी वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी के जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पतियों के संरक्षण में सहयोग करने की अपील करी। अधिकारियों ने पर्यटकों से बोली कि वो फूलों थे तोड़न कूड़ा फैलान और पर्यावरण थे नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों से बचा। अधिकारियों के अनुसार फूलों की घाटी विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला क्षेत्र में स्थित इनमें मौसम विभाग का अलर्ट स्थानीय मौसम की स्थिति और सुरक्षा मानकों थे ध्यान में रखते हुए पर्यटकों थे आवश्यक दिशा निर्देश जारी करे जाना छन जैसे उनकी यात्रा सुरक्षित और सुखद बनी रैली। वक्की वन विभाग के अनुसार वर्तमान में फूलों को घाटी में 300 से अधिक प्रजातियों को पुष्प और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद छन। आगामी दिनों में घाटी और अधिक रंग बिरंगा फूलों से आच्छादित होने का दगड़ यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अपर चरम पर पहुंच जाली। स्वच्छ सर्वेक्षण ते लेकी देहरादून नगर निगम ने तैयारियां तेज करी। मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि निगम की टीम लगातार शहर में सफाई व्यवस्था थे बेहतर बनाने में जुटी च। उन्होंने बोली कि शहर के संवेदनशील कचरा स्थलों पर विशेष ध्यान दिए जाणु च। दगड़म कूड़ा उठाने वाला वाहनों को समय समय पर निगरानी भी करे जानी च। उन्होंने बताया कि गीला और सूखा कूड़ा के अलग अलग निस्तारण और सेग्रीगेशन थे लेकी भी लगातार अभियान चले जाणु च जैसे देहरादून स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन कर सक।
4: उसको लेके हमारी तैयारी है हमारी टीमें मुस्तैद हैं और हमारे जहाँ जहाँ पे GVP पॉइंट्स हैं उनको हटाने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा शहर में कूड़े जो उठाने वाली गाड़ियाँ प्रॉपर समय पे पहुँचे वो उसके लिए कार्य हो रहा है और लगातार जो है गीला कूड़ा सूखा कूड़ा जो है वो अलग अलग सेग्रीगेट हो इसके लिए भी कार्य लगातार किया जा रहा है।
1: पौड़ी के जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित 17 शिकायतें दर्ज करेगी। जिलाधिकारी ने अधिकांश शिकायतों को मौके पर निस्तारण करते हुए शेष प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों से समयबद्ध कार्यवाही का निर्देश दिन। यह दौरान उन CM हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से जनता मिलन CM हेल्पलाइन और अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों को गंभीरता प्राथमिकता और संतोषजनक ढंग से निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दे। आखिर में मुख्य समाचार एक दा फिर से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में विभिन्न विभागों के अंतर्गत चयनित 200 छत

0: 76 अभ्यर्थियों थे नियुक्ति पत्र प्रदान करीन। प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी। शासन प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं को सुविधाओं और सुरक्षा खुण व्यापक व्यवस्थाएं करे गिन। हरिद्वार में सरकारी जमीनों पर कब्जा हटाना खुण विशेष अभियान चले जालू और चमोली जिला में स्थित विश्व धरोहर फूलों को घाटी पर्यटकों खुण खुली। यहाँ का दगड़म गडलिमा प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त होंदु। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत।

ग्राम जगत कार्यक्रम सोनी सब श्रोतान के रमा शंकर एक नमस्कार श्रोता स्वागत छो कार्यक्रम ग्राम जगत में। तगड़ियो मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हूँ स्वस्थ रहन और हमारे शरीर को स्वस्थ धारणा के लिए हमको कई सारे चीज़ों की जरूरत पड़ी और उन चीज़ों में एक सबसे भल और पौष्टिक चीज़ छो दूध। दगड़ियो दूध शब्द सुनते ही हम सब नंग मन में यह बात है कि दूध की जरूरत हमको हर हमेशा बनी रहे, चाहे वो घर में छोट नंतिन को दूध की जरूरत हो, हमको चाह लीजिए दूध की जरूरत हो, या दूध से बनी हुई कोई भी पदार्थ यानी कि खीर छू, दली छू, सेवैया छू और बहुत सारे चीज़ जो हम दूधल जन्म में दूधक इस्तेमाल हैं। तो कूड़ा मतलब यह छू कि हमारे रति व्यति ब्याह तक जो ले दिनचर्या छू उन्हें दूध से सबसे महत्वपूर्ण छू और दूध की जरूरत हमको हमेशा बनी रहे। अब दूधक लीजिए हम बात करूँ तो दूध में हम देख लूँ कि भल क्वालिटी दूध या भल दूधक जरूरत हर मनखी को बनी रहे और यह कह लीजिए कही जा कि अगर भल दूध हम उत्पादन कर लूँ तो उसके बाजार में बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तकड़ियों भल दूध कृषि उत्पादन हो, कृषि लोगों के दूध की जरूरत पूरी करी जाओ या दुग्ध उत्पादन का बढ़ने के लिए जी के काम हमको करना पड़े, यह सब चीज़ों के ध्यान में रखते हुए और मनखी के स्वास्थ्य के लिए ध्यान में रखते हुए हर साल 1 जून मनाई जा विश्व दुग्ध दिवस। यह दूध दिन का मनाने के पिछाड़ जो उद्देश्य छो वो यही छो कि जो दूध छो वो दूध एक पहुँच हर मनखी तक हो और हर मनखी के पौष्टिक शुद्ध और ताज दूध मिल सको ताकि वो दूधक जो गुण छे वो हर मनखी को जब मिले तो मनखी के स्वास्थ्य भल और मनखी के स्वास्थ्य भल होने बाद हम एक देश के सही तरीके से आगे बढ़ने में मदद हमको मिल सके। दगड़ दगड़े जो किसान कृषि कार्य तक जुड़ी होनी, दुग्ध व्यवसाय तक जुड़ी होनी, उन्हें आजीविका के लिए समृद्धकरण में यह दुग्ध बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकूँ। तो दगड़ियों अब दुग्ध के लिए अगर हम बात करूँ तो आज भारत जो छू दुनिया में सबसे ठूल दुग्ध उत्पादक देश छू और हमारे यहाँ जो दुग्ध उत्पादन है वो लगातार बढ़ाने लग रहा है। यह में सबसे महत्वपूर्ण बात यह छू कि दुग्ध उत्पादन के बीच हमको अपन पशु नस्ल में सुधार करना पड़ो, क्योंकि कि अगर हम परंपरागत तरीके पशु नस्ल के धर्म जैसे कि हमारे घरों पर हूँ, अगर हमारे पास कोई नस्ल पशु छू या नस्ल गोर छिन भैंस छिन तो उन्हें प्रजाति क्यों कि उन्नत नहीं हो पाए, वही कई कारण हो सकते हैं। एक तो हम प्राकृतिक गर्भाधान उनको कराना तो उनमें नस्ल सुधार की संभावना कम है और गर्भाधान होने के लिए संभावना कम है। तो यही बात के ध्यान में धरते हुए देश में बढ़ती हुई दूध की जरूरत को ध्यान में रखते हुए कृत्रिम गर्भाधान एक तकनीक हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई और लगातार जो किसान यह कृत्रिम गर्भाधान तरीका दुग्ध उत्पादन बढ़ने लग रही उनको काफ़ी भल फायदे में मिलने लग गए। यह फायदे हूँ कि एक तो भल और

नस्लक पशु तैयार होनी, हमार गोर छे हमार भैंस छे वो भल नस्लक तैयार होनी, और जब नस्लक भल होनी तो दूध ला भल देनी, और उन्हें दूध देने क्षमता ला भली, वो हिष्ट पुष्ट ला होनी, तो वही फायद हमको यह हूँ कि हमार दूध बन सकूँ। और दूसर जो किसान दूध का काम देखकर जुड़ी हुई छे उनके प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा कई सारे योजना चलाई जाने लग रही, जमें कि उनके गुड़ और भैंस खरीदने के लिए सब्सिडी पर लोन दी जा, यह अलावा और जो पशुधन पशु चारा छो वो पशु चारा खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाए, या उन केंद्रों पर पशु चारा उपलब्ध कराई जाए जहाँ सरकार द्वारा संचालित डेयरी होनी, ताकि हमार काश्तकार सही तरीका दुग्ध उत्पादन में रुचि ले सकें, उन्हें पशु को पोषण आहार मिल सको। और यह अलावा राष्ट्रीय डेयरी विकास जस कार्यक्रम में चलाई जाने लग रही, जो कि एक डेयरी उद्योग का बढ़ाने के लिए डेयरी व्यवसाय का आगे बढ़ाने के लिए मदद करना काम न करनी। तो देखियो आज दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन छो जो विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जा, और यह दिवस पिछाड़ जो सोच ले जाए कि दूध जस पदार्थ के ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य तक कैसे पहुँच बढ़ाई जाओ, कैसे वो दूध काम में लगी हुई जो हमारे किसान से दुग्ध व्यवसाय से उनको उन्नत तरीका आगे बढ़ाई जाओ, तो ये सब चीज़ों को मिल देर यह दुग्ध दिवस मनाई जा। और हम ये उम्मीद कर लूँ कि जो ल हमारे काश्तकार काम में लगी हुई थी काम को और आगे बढ़ाने के लिए नई नई वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करें, ताकि हम पूरे समाज के एक स्वच्छ और सही प्रकार का दूध दे सकूँ।

0: श्रोतालय समेत सर्ने गाई योग्यता पुलिस पुणर्थ्या और हम बात करने लग सी विश्व दुग्ध दिवस के बारे में तो यही विषय पर हम आपको सुनने लग रहे क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता कि दुग्ध व्यवसाय अपने बेन कशित हमार काश्तकार अपना जो बढ़ा सकनी तो यूं से एक युवा काश्तकार हरिंदर सिंह बिस्ट ग्राम कल्टानी जिला अल्मोड़ा तो आओ सुनो यहाँ तक करी गई यह क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता। श्रोताओं आज हम पहुँचे हैं ग्राम कल्टानी पोस्ट जलना विकासखंड लमगढ़ा में और यहाँ हमारी मुलाकात एक युवा दुग्ध व्यवसायी से हो रही है। इनसे बातचीत करते हैं तो सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा।
1: मेरा नाम हरिंद बिष्ट है, मैं ग्राम कल्टानी पूछनामाई जलना पड़ती है विकासखंड लमगढ़ा है।
0: तो बिष्ट जी मैं देख रहा हूँ कि आपने काफ़ी गायें पाली हुई हैं और दुग्ध व्यवसाय आप कर रहे हैं तो कितनी गायें आपने पाली हैं?
1: अभी मेरे वर्तमान में 6 गायें हैं। पहले शुरुआत हमने एक गाय से की थी।
0: अच्छा।
1: एक गाय हम लेके आए थे, ये हम लेके आए थे रुद्रपुर के पास, एक से आगे बिलासपुर एक जगह पड़ती है, वहाँ एक शनिवार के दिन मेला लगता है, पशु मेला। तो मैं मेले में गया हुआ था, कोई इधर यहाँ डॉक्टर साहब थे उनके साथ गया हुआ था, उनकी प्रेरणा थी कि दूध व्यवसाय ज़्यादा। हम एक गाय लेके आए थे, जब यहाँ गाय ले आए तब देखा कि वो यहाँ के माहौल में ढल रही है, घास भी लोकल घास खाने लगी है, चारों में जो चारे की यहाँ कमी हो जाती है, तो हम यहाँ जो बाज का जो पत्ता होता है वो खिलाते हैं, तो वो खाना भी उसने शुरू कर लिया, तो हमें इससे उत्साहित हो गए। फिर उसके बाद हम गए यहाँ से गए करनाल डेयरी में,
0: मतलब हरियाणा,
1: हरियाणा। तो वहाँ जाके हमने देखा कि गायें कैसे कैसे पलती हैं। फिर डॉक्टर साहब ने उसके साथ हम 3-4 दिन डेयरी में ही वहाँ देखा कौन सी अच्छी नस्ल की होती है। करनाल से हम 2 गायें लेके आए थे और बाकी हमने इधर पन्नगर से गायें खरीदी। अब जाके भी धीरे धीरे जो जो व्यवसाय है मतलब ठीक हो गया, जिससे हम एक अपनी जो आजीविका हम चला सकते हैं।
0: एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप हरियाणा भी पहुँचे और पंतनगर भी गए, तो ये विचार आपको कैसे आया कि इस व्यवसाय को मुझे करना चाहिए?
1: जब मैं ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब हम आए तो देखा कि यार बेरोजगारी बहुत है, अपने फैक्ट्री में चक्कर काटने हैं, तो हमने सोचा कि
0: मैं आपको रुकना चाहूँगा। आपने कहा मैं ट्रेनिंग पूरी करके आया, क्या किया आपने?
1: मैं यहाँ से हमने ITI करने के बाद इलेक्ट्रीशियन से डिप्लोमा लिया था, तो उसके बाद अब देखा कि इस फैक्ट्री की हालत बहुत बुरी है, तो हमने कहा कि अपना व्यवसाय होना चाहिए, जिससे अपना व्यवसाय करके कम से कम कम आय होगी, मगर हम अपना व्यवसाय होगा। मतलब ये नहीं कि कल ठेकेदार हमको निकाल दे, कल फिर उसका मन में आए फिर वो रख ले, मतलब एक अपना व्यवसाय है तो कम से कम हम उस पर एक हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
0: जैसे आपने बताया कि अभी आपके पास 6 गायें हैं, तो ये गायें आपने जो खरीदी हैं अपने खुद के प्रयास से खरीदी या सरकार की कोई योजना का आपने लाभ उठाया?
1: शुरू में तो जो गाय खरीदी हम अपने पैसे से खरीदी थी, उसके बाद नाबार्ड द्वारा बैंक से लोन लिया था
0: जी। अभी 6 गायें आपके पास जो हैं ये कौन से नस्ल की गायें हैं?
1: अभी मेरे पास इसमें एक होल्स्टीन फ्रीजन है और 2 जर्सी हैं और एक साहिवाल और सिंधी मतलब जर्सी का क्रॉस है।
0: तो प्रतिदिन कितना लीटर आपका दूध का औसत उत्पादन है?
1: एक ऐसे तो हम जो लेते हैं कि 10 से 15 लीटर।

0: एक बीज हमें एक 15 लीटर के आसपास दूध का उत्पादन हो जाता है, मतलब हमारा जो साल भर का जो औसत रहता है 30 से 40 लीटर प्रतिदिन का रहता है।
1: तो बाजार आपको कैसे उपलब्ध होता है दूध के लिए?
0: हाँ, यहाँ से हमारा ये कि जो बाजार है अलमोड़ा मार्केट, हम वहीं ये दूध भेजते हैं। गाड़ी लगी है, हमारी परमानेंट दुकानें लगी हुई हैं, तो वहाँ से हम वो रोड में ला के जो गाड़ी आती पड़ती है, तो हम लोकल अलमोड़ा जो मार्केट है वहाँ दूध भेजते हैं।
1: किस तरह से आप इनके लिए चारे की व्यवस्था करते हैं? क्योंकि अभी आपने कहा पहाड़ में हरा चारा मिलना बड़ी मुसीबत का काम है और काफ़ी कठिनाई से मिलता है, फिर आप व्यावसायिक तौर पर कर रहे हैं, तो आपने इसका क्या विकल्प निकाला है?
0: इसमें जो आप जो देख रहे हैं जो बगीचा है, पहले सेब का बगीचा था पहाड़ में, अभी सेब की पैदावार मौसम की वजह से ये कम हो रही है। तो करीब जब मैंने शुरुआत की थी 2003-04 में, तब से ही यहाँ बांज के पेड़ हमने लगाने शुरू किए थे। तो अब बरसात में भी ठीक है, गर्मी में भी कभी कभी चारा हो जाता है, तो जाड़ों में जो कमी होती है, तो जैसे उसमें बिमल का पत्ता हो गया, ये बांज का पत्ता हो गया और खड़क का पत्ता हो गया, तो और एक दूधीले का जो पेड़ हो गया, तो हम ये पेड़ हमने उस टाइम उगाए थे। तो अब जाके ये काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो इससे हमें पर्याप्त मात्रा में इस पत्ते का वो हरे चारे के तौर पर हम इसमें उगाते हैं। बाकी नवंबर दिसंबर में तो ठंड काफ़ी होने की वजह से इधर तो जो चरी घास होती है वो भी पैदावार कम होती है, मगर थोड़ा सा धूप निकलने के बाद फरवरी मार्च के बाद वो स्टार्ट हो जाती है।
1: बरसीम और दूसरी प्रजाति की घास, उनके बारे में आपने नहीं सोचा?
0: वो भी हमने लगाई, मगर ये कि हमारे वहाँ अत्यधिक ठंड होने के कारण इसकी पैदावार नहीं हो पाती नवंबर दिसंबर में। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर इसकी ग्रोथ भी पड़ती है, हम उस टाइम उपयोग करते हैं। जिस टाइम बर्फ पड़ती है, ठंडा होता है, तो उस टाइम पर ये दूधीले का पत्ता, खड़क का, बिमल का पत्ता और ये बांज का पत्ता, यही हरी चारे के रूप में उपयोग करते हैं।
1: बाजार में भी बहुत सारे पौष्टिक चारे पशुओं के लिए आते हैं, क्या आप उनका भी प्रयोग करते हैं?
0: हम जो अपने गायों के लिए करते हैं, हमने मिलाया गेहूँ का चोकर, 30% गेहूँ का चोकर हो गया, और 30% उसमें खली होगी सरसों की, और करीब करीब 30-35% इस पर दालों की चुन्नी जो होगी, इसको मिला के इसमें 2% मिनरल मिक्सचर आता है वो मिला के, और 2-3% इसमें नमक मिलाते हैं, और नमक भी आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करके इसको रात्रि को भिगा के सुबह इसको हम चारे के रूप में, दाने के रूप में इसको देते हैं।
1: पूरे साल भर आपका दूध का उत्पादन होता है, तो अगर हम आय के हिसाब से बात करें तो कितनी इनकम या आय आपको इससे प्राप्त हो जाती होगी?
0: क्या औसतन अगर हम लगाएं तो 10 से 15 हज़ार रुपये महीना हमें इससे प्राप्त हो जाता है, मतलब
1: ये 10 से 15 हज़ार बच जाता है।
0: हाँ, 10,000 रुपये, 10 से 12 हज़ार रुपये हमारे पास ये बच जाता है।
1: और साथ में उसका दोहरा फायदा यह है कि पूरे घर के लिए दूध, दही, घी सब कुछ मिल जाता है।
0: हाँ, दूध है बच्चों के लिए, दूध हो गया, दही और घी की, और जो कि जो गोबर से है उससे भी हमें खाद के रूप में बड़े जो साग सब्जी जो आप देख रहे हैं, साग सब्जी जो लगी है इसके लिए भी पर्याप्त मात्रा में गोबर हो जाता है। मतलब पहाड़ों में एक प्रकार की सोच ये रहती थी कि अधिक जानवर पालने हैं और भैंस अधिक पालनी है तो वो गोबर अधिक देगी, गायें कम गोबर देती हैं तो गोबर वो अधिक देगी, तो अधिक हमारे खेतों के लिए खाद मिल पाएगी। मगर इन जो नस्ल की पालने का भी हम देखते हैं कि पर्याप्त मात्रा में गोबर इन मतलब साल भर खाद की कमी भी नहीं होती।
1: अच्छा, एक बात मैं और जानना चाह रहा हूँ कि आप जैसे हरियाणा से गाय को यहाँ लाए, और हरियाणा का जो मौसम है और आपके गाँव का जो मौसम है उसमें काफ़ी धरती आसमान का अंतर मैं कहूँगा, तो आपकी गायें इस वातावरण में कैसे ढली?
0: हमेशा हमने कोशिश ये की कि जब हम गाय लेके आए कि गर्मी और बरसात के बीच में ही हम लेके आए, तो उससे रहता कि यहाँ भी टेम्परेचर तो अधिक रहता ही है, मगर जाड़े आते आते तक वो उस माहौल में ढल जाती हैं। अब थोड़ा दिक्कत वहाँ से यहाँ लाने में दिक्कत तो रहती है, परेशानियाँ तो रहती है, मगर थोड़ा सा डॉक्टर साहब की मदद लेके या गायें यहाँ ढल जाती हैं,
1: मतलब स्वस्थ रहती।
0: हाँ, स्वस्थ रहती।
1: कभी आपकी गायों को कोई बीमारी लगती है तो आप किस तरह से उनका उपचार करते हैं?
0: विशेषकर जो बीमारियां यहाँ जो लगती हैं, यहाँ एक तो खुरपका, मुंहपका, उसका प्रकोप ज़्यादा है
1: जो आमतौर पर बरसात में ज़्यादा।
0: हाँ, बरसात में जो ज़्यादा होती है, और एक जो जानवर उनके पेट में जो कीड़े जो हो जाते हैं उनको टाइम पर दवा देनी होती है कीड़े मारने की, पेट में जो कीड़े हो जाते हैं उनको ना देने से जो एक दस्त की बीमारी हो जाती है वो बीमारी अधिक रहती है, अतिसार जो पेट पेचिस लगना, और एक ये अधिक दूध देने वाली जो गायें होती हैं इन पर जो है कि कैल्शियम की कमी होने से ब्याने के समय में पूरी इनकी जो जान निकल जाए जिसको बोलते हैं बच्चेदानी बाहर आ जाना, एक वो बीमारी भी इनमें रहती है
1: मतलब प्रसव के समय। हाँ, प्रसव

0: के समय में, तो इसलिए हमें इनको है कि टाइम से इनको कैल्शियम की मात्रा भी देते रहें, और जो हम दाना दे रहे हैं वो भी पर्याप्त मात्रा से दाना देते रहें, और जो टीके जो लगने हैं वो टीके पहले लगवा दें। हाँ, और दूसरा ये है कि हमारा जो अपना पशुशाला है, जहाँ हमारी गौशाला है, उसका मेन है कि साफ सफाई का जो मेन ध्यान रखना, उस मतलब एक जो बैठने की जगह समतल हो, आरामदायक हो, और जो उनका जो गोबर है और पेशाब है उसकी जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
1: मतलब उनके मल का जो निवारण है वो
0: हाँ
1: ठीक तरह से हो।
0: हाँ ठीक तरीके से हो, तो उसमें वो भीगे ना रहें।
1: बिल्कुल।
0: इस वजह से भी हमारी काफ़ी बीमारियां कम हो जाती हैं। कभी कभी उसमें बरसात के समय चूने का छिड़काव कर लें
1: अच्छा।
0: या फिनाइल से धो लें, जो परजीवी चिपक जाते हैं बरसात के समय में, किलनी और जुए हो जाते हैं, को मारने के लिए बाजार से ही जो डॉक्टर साहब लिखे दवा, तो उसी का ये घोल बना के प्रयोग करना है। अगर हमारे जानवर स्वस्थ रहेगा, साफ सुथरे वातावरण में रहेगा, तो काफ़ी हद तक हमारी इन बीमारियों से बचा जाएगा। कोशिश करें कि हमारा जानवर पानी अधिक पिए।
1: अच्छे पशुधन के लिए जरूरी है कि पशुशाला गौशाला की साफ सफाई का पर्याप्त ध्यान हमें रखना चाहिए।
0: हाँ, और ध्यान ये देना है कि जो दुधिया होता है उसके भी नाखून बड़े ना हो और वो भी बीमार ना हो। और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि हमारा जो दुधिया है वो भी विशेष पर अपने काम में निपुण होना चाहिए, और वो जितनी जल्दी दूध निकालेगा और जो फैट की मात्रा भी उसमें पर्याप्त मिलेगी।
1: जी, बहुत अच्छी बात आपने हमसे की, और अभी बहुत सारी बातें हम आपसे करना चाहते हैं, पर हमारे सामने समय की भी बात देता है। और चलते चलते मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कभी आपके मन में ये विचार नहीं आता कि मैदानों की तरफ जाया जाए और वहाँ कोई अच्छी सी नौकरी की जाए, टेक्निकल ट्रेड्स के आपने आईटीआई किया हुआ है?
0: शुरू शुरू में तो आया था विचार, जब जानवर बीमार हो जाता था और हमें उतना जानकारी नहीं रह पाती थी, और दूध की विपणन की व्यवस्था सही नहीं हो पाती थी, तब लगता था। पर अब इतने सालों से काम करते करते मन में अब ये एक संतुष्टि है कि प्लेन्स की जो भागदौड़ है, वहाँ का जो मिलावटी दूध भी आ रहा है वो भी पूरा मिलावटी है, वहाँ साग सब्जियों में पूरा मिलावट है, उससे तो यहाँ एक सुकून है। सबसे बड़ी बात है कि आज हम देख रहे हैं कि जितने भी बड़े पूंजीपति हैं या बड़े पैसे वाले लोग हैं, यहाँ आके हमें लोगों से ज़मीन खरीद के वो लोग बस रहे हैं, तो हम इसको छोड़ के क्यों जाएँ। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ परेशानियाँ जरूर आती हैं शुरुआत करने में, मगर जहाँ एक प्रकार शुरुआत हो जाती है तो फिर बहुत हद तक यहाँ भी हम मजे से जीवन यापन कर सकते हैं।
1: बहुत बढ़िया देश जी, इन्हीं बातों के साथ आपसे हम विदा लेते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो भी श्रोता हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आपकी बातों से सीख लेंगे और पहाड़ के अंदर ही अपने रोजगार के कामों को करने के लिए आगे आएंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: श्रोताओं, विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर आप लोग सुन रहे हैं दुग्ध उत्पादन कर आयोजित करने वाला ग्राम कल्टानी विकास खंड लमगढ़ जिला अल्मोड़ा का दुग्ध व्यवसाय हरिंदर सिंह विष्ट दगड़ करी गई और क्षेत्र संकुलित भेंट वार्ता। और अब कार्यक्रम में अगर आपको सुना लूँ योग।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार कुमाऊनी में हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों दगण मी योगिता बिष्ट। पली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल देहरादूनम विभिन्न विभागों के अंतर्गत चयनित 276 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र प्रदान करी। प्रदेशम चार धाम यात्रा सुचारू रूपल जारी। शासन प्रशासन कोर बटी श्रद्धालुओं सुविधाओं और सुरक्षाओं लीजी व्यापक व्यवस्थाएं करी जारी। हरिद्वारम सरकारी जमीनों पर कब्जे हटाना लीजी विशेष अभियान चलाए जाल और चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर फूलों घाटी पर्यटकों के लीजी खुल गए। अब समाचार विस्तार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल आज देहरादूनम नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग और वन विभाग के अंतर्गत चयनित 276 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र प्रदान करी। यह मौके पर मुख्यमंत्री नव चयनित कार्मिकों हेते अपेक्षा करी कि वह अपन कार्यकुशलता, ईमानदारी, संवेदनशीलता और कर्तव्य निष्ठा के माध्यम जनसेवा के सर्वोच्च प्राथमिकता दियाल। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य देशक सबू हबे सख्त नकल विरोधी कानून लागू करबेर भर्ती प्रक्रिया के पारदर्शी, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त बने है, जैल योग्य और प्रतिभाशाली युवाओं के उनर अधिकार मिले रहो। मुख्यमंत्री कहो कि पिछड़ 4.5 सालों में लगभग 33,000 जवान नंतिनों के पूर्व पारदर्शिता और मेरिटक आधार पर सरकार सेवाओं हेबे जोड़ना काम करी जेरो।
1: हमने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसके तहत भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाया गया, जवाबदेह बनाया गया और पहले प्रतिभा से अधिक पैरवी और परिश्रम से अधिक सिफारिशों की चर्चा होती थी, लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं, बल्कि प्रतिभा, योग्यता और क्षमता से आज चयन होता है। इसीलिए हम ये नकल का कानून लाए और उसका परिणाम भी हुआ कि आज युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ चयन का अवसर मिल रहा है और मुझे गर्व है कि इन 4.5 वर्षों में 33,000 युवाओं को पूरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर सरकारी सेवाओं से जुड़ने का अवसर मिला है।
0: प्रदेशम चारधाम यात्रा सुचारू रूपल जारी छू। शासन प्रशासन कोर बटी श्रद्धालुओं सुविधाओं और सुरक्षा के लिए भल इंतजाम करी जारी। खराब मौसम के देखते हुए धाम क्षेत्र और यात्रा मार्गों पर विशेष सतर्कता बरती जा रहे। वहीं रुद्रप्रयाग के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन रजवारल बता कि CCTV कैमरों के जरिए केदारनाथ पैदल मार्ग के संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी करी जा रहे। यह एक दगड़ जिला आपदा नियंत्रण कक्ष बटी पूरी यात्रा मार्ग की निगरानी ले करी जा रहे। उन्होंने बता कि यात्रा मार्ग पर पुलिस, SDRF, NDRF और अन्य सुरक्षा एजेंसियों 647 जवान तैनात छन, जो तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और सहायता में ले रही।
2: आपदा प्रबंधन का और जो यात्रियों के प्रति जो प्लान है तो वो हमारे जगह जगह पर रेस्क्यू टीमें लगाई गई हैं और जो चेतावनी तंत्र है हमारे जो कि कंट्रोल रूम से लगातार उनकी माउंटिंग भी की जा रही है और यहीं से मौसम का जो फॉरकास्ट वगैरह है वो भी यहां से ही हम लोग अनाउंसमेंट के जरिए यात्रियों तक पहुंचा रहे हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम लोग उनको सचेत कर रहे हैं और कि सुरक्षित स्थानों पर रहें और अपनी यात्रा सुरक्षित बनाएं। वहां पर सर ITBP है, NDRF है, SDRF है, पुलिस है और होमगार्ड के जवान हैं, PRD के जवान हैं और आपदा मित्र हैं, DDRF है और YMF है और MTF है, म्यूल टास्क फोर्स भी जानवरों के लिए जो काम कर रही है। टोटल 647 लोग जो अभी यात्रा मार्ग पे हैं वो कार्यरत।
0: प्रदेश में आज दुई अलग अलग सड़क हादसों में एक सैनिक मौत है गई जबकि 42 जनी घायल है गए। हरिद्वारक सप्तऋषि के पास आज राजस्थानक यात्रियों बस दुर्घटनाग्रस्त है जानल एक सैनिक मौत है गई जबकि 37 अन्य घायल हैंगी। तीन गंभीर घायलों के एम्स ऋषिकेश लीजी रेफर करी जा रो, बाग घायलों के इलाज म्योल अस्पतालम करी जा रो। उथा टिहरी जिलम ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंडी खाल और चंबा बीचम खेतधार मोड़ पर आज चार धाम यात्रियों के लिबे जा रही एक बस सड़क किनार पलट गई। यो हादसे में 5 यात्री घायल है गए जबकि बाग बची यात्री सुरक्षित छन।

0: प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताज़ा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी। हरिद्वारम सरकारी जमीनों पर कब्जे हटाने के लिए विशेष सफाई अभियान चलाई जाल। जिलाधिकारी मयूर दीक्षितल बता कि जिले में विभिन्न सरकारी विभागों की जमीन पर है अतिक्रमणों की सूची तैयार करी जा रही। कब्जे करने वालों के पली 15 दिन का नोटिस दी जाए या एक बाद प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करी जाए। उन्होंने स्पष्ट करो कि सरकार जमीन के हर हाल में अतिक्रमण मुक्त कराए जाए। यह एक दगड़ जहाँ बटी कब्जे हटाए जाल वहीं दोबारा अतिक्रमण होने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी जवाबदेही ले तैयार करी जाए।
1: मुख्यतः जो पीडब्ल्यूडी एनएच है, सिंचाई विभाग है, ग्राम पंचायत की जो जमीन है या अन्य विभाग जो भी है, शिक्षा विभाग हो या कोई और भी विभाग हो, सभी से लिस्ट हमने मंगाई है कि जहाँ जहाँ पर अतिक्रमण चिन्हित है 15 दिन का नोटिस देने की कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। उसके बाद जैसे कि अन्य जगह भी हैं, भले ही वो हमारे रेलवे की लैंड हो या कुंभ मेले में यूपी सिंचाई या उत्तराखंड सिंचाई की जमीन हो, वहाँ पर भी कुछ निर्माण हमने देखे हैं जो कि लंबे समय से हो गए हैं। कुछ निर्माण परमानेंट नेचर के हैं, कुछ टेम्परेरी नेचर के हैं। सभी को अपने अपने स्तर से अधिकारी देखेंगे और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में गति देंगे। अतिक्रमण जहाँ से भी हटाया जाएगा वहाँ पे जो एक अधिकारी है, भले वो हमारे राजस्व विभाग का लेखपाल हो या कोई SDO या JE हो सिंचाई विभाग का या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के SDO हो, सभी की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। जो भी अधिकारी के क्षेत्र में या कर्मचारी के क्षेत्र में अतिक्रमण है और उसके क्षेत्र में हटा दिया गया है, पुनः अगर अतिक्रमण होता है तो उनकी जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी।
0: चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर फूलों घाटी के आज बटी पर्यटकों के लिए खुल है। यह मौके पर पर्यटकों में बहुत उत्साह देखने लीजिए मिलो। वहीं वन विभाग पर्यटकों हते घाटी की जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पतियों के संरक्षण में सहयोग करने का अपील करी। अधिकारियों पर्यटकों हते कहो कि ऊ फूलों के तोड़न, गद्दर फैलान या पर्यावरण के नुकसान पहुंचाने वाला काम नहीं करो। अधिकारियों के अनुसार फूलों घाटी विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले इलाकम छू, इसमें मौसम विभाग अलर्ट, स्थानीय मौसम स्थिति और सुरक्षा मानकों के ध्यान में धरते हुए पर्यटकों के जरूरी दिशा निर्देश जारी करी जा रही ताकि उन्हें यात्रा सुरक्षित और सुखद बनी रहो। वहीं वन विभाग के अनुसार वर्तमान में फूलों घाटी में 300 हेबे ज्यादा प्रजातियों फूल और दुर्लभ वनस्पति मौजूद छन। आने वाले दिनों में घाटी आए ज्यादा रंग बिरंगी फूलों ढक जाल और यह प्राकृतिक सुंदरता अपूर्ण चरम पर पूज जाल। स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए देहरादून नगर निगम तैयारी तेज कर हनी। मेयर सौरभ थपलियालल बता कि निगमक टीम लगातार शहर सफाई व्यवस्था के भल बनाण में ले रहे। उन्होंने कहा कि शहरक संवेदनशील कचरा स्थलों पर खास ध्यान दी जा रो। एक दगन गद्दर उठाने वाले वाहनों को बखत बखत पर निगरानी ले करी जा रहे। उन्होंने बताया कि गील और सूखी गद्दर अलग अलग निस्तारण और सेग्रीगेशन के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे ताकि देहरादून स्वच्छ सर्वेक्षण में भल प्रदर्शन कर सको।
2: इसको लेके हमारी तैयारी है, हमारी टीमें मुस्तैद हैं और हमारे जहाँ भी GVP पॉइंट्स हैं उनको हटाने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा शहर में कूड़े जो उठाने वाली गाड़ियाँ प्रॉपर समय पे पहुँचे तो उसके लिए कार्य हो रहा है और लगातार जो है गीला कूड़ा सूखा कूड़ा जो है वो अलग अलग सेग्रीगेट हो, इसके लिए भी कार्य लगातार किए जा रहे हैं।
0: पौड़ी जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागारम हई जनता मिलन कार्यक्रम में विभिन्न विभागों हेबे संबंधित 17 शिकायत दर्ज करी गई। जिलाधिकारी ज्यादातर शिकायतों को मौके पर निस्तारण करते हुए बाग बची मामलों में संबंधित अधिकारियों के बखत पर कार्रवाई करने का निर्देश दी। एक दौरान उन्होंने CM हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों के जनता मिलन, CM हेल्पलाइन और अन्य माध्यमों मिलने वाले शिकायतों का गंभीरता, प्राथमिकता और संतोषजनक ढंगल निस्तारण करने लीजी निर्देश दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार आई सुनो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील देहरादून विभिन्न विभागों के अंतर्गत चयनित 276 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र प्रदान करी। प्रदेशम चार धाम यात्रा सुचारू रूपल जारी। शासन प्रशासन कोर बटी श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं करी जा रही। हरिद्वारम सरकारी जमीनों पर कब्जे हटाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाल और चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर फूलों घाटी पर्यटकों के लिए खुल गए। यह कदगर कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यो अंक समाप्त हो। नमस्कार।

FM 16.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। संध्या के 7:40 में है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं 36 चाइना टाउन फिल्म के इस गीत से, जिसे आवाज़ दी है कुणाल गांजावाला और अलका याग्निक ने। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए। सुनिए पापा द ग्रेट फिल्म से उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है MM करीम ने।

आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं कयामत से कयामत तक फिल्म से उदित नारायण और साथियों की आवाज़ें हैं। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आनंद मिलन ने।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं आ अब लौट चले फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

हाँ, अब लौट चले फिल्म के इसी गीत के साथ। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है मिले जुले गीत गजलों का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं मेहदी हसन के गाए इस नगमे से।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं मिले जुले गीत गजलों का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का अगला नगमा आइए सुनते हैं सोनू निगम की आवाज़ में।

मिले जुले गीत गजलों का कार्यक्रम सबरस इस समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं मीर तकी मीर का कलाम फनकार है जगजीत सिंह।

जगजीत सिंह की गाई सी गज़ल के साथ मिले जुले गीत गज़लों का कार्यक्रम सबरस अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। WTT फेडर टेबल टेनिस में दिव्यांशी भौमिक ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए महिला सिंगल्स का खिताब जीता। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीता, फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 22वीं एशियाई U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी। भारतीय पुरुष टीम ने U18 हॉकी एशिया कप में कोरिया को 4-1 से हराया और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से शुरू। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भारत का नेतृत्व करेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं टेबल टेनिस से, जहां दिव्यांशी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। WTT फेडर टेबल टेनिस में भारत की दिव्यांशी भौमिक ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए महिला सिंगल्स का खिताब जीता। आइए जानते हैं उनके प्रदर्शन के बारे में।
1: दिव्यांशी भौमिक 15 वर्ष की आयु में टेबल टेनिस प्रतियोगिता में सिंगल्स खिताब जीतने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई हैं। विश्व रैंकिंग में 211वें स्थान पर काबिज दिव्यांशी ने फाइनल में चीनी ताइपे की विश्व नंबर 38 ये यी तियान को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से पराजित किया। वे जापान की स्टार खिलाड़ी मीवा हरिमोतो के बाद WTT फीडर सर्किट में महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली दुनिया की दूसरी सबसे युवा खिलाड़ी मानी जा रही हैं। दिव्यांशी ने अपने शानदार अभियान में एक और स्वर्णिम उपलब्धि जोड़ते हुए महिला डबल्स वर्ग का स्वर्ण पदक भी जीता। दिव्यांशी ने सिंड्रेला दास के साथ मिलकर जापान की साची आओकी और कोकोना मुरामात्सु की जोड़ी को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराया। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
0: अब सीधे रुख करते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर, जहां डिफेंडिंग चैंपियन ने टाइटल डिफेंड करते हुए शानदार जीत दर्ज की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL का खिताब लगातार दूसरी बार जीता, फाइनल में RCB ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। आइए सुनते हैं विशेष शुक्ला की खास रिपोर्ट।
2: फाइनल मुकाबले में टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस 8 विकेट पर 155 रन ही बना सकी। पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले गुजरात के सलामी बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन इस अहम मैच में फ्लॉप रहे। सुदर्शन 12 और गिल 10 रन बनाकर आउट हुए। GT की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर एकमात्र सफल बल्लेबाज रहे। सुंदर ने नाबाद 50 रन की पारी खेली। रसिक सलामडार ने 27 रन देकर सर्वाधिक 3 विकेट लिए। 156 रन के लक्ष्य के जवाब में वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली ने RCB को तेज शुरुआत दी और 5वें ओवर के भीतर 62 रन बना दिए। अय्यर ने ताबड़तोड़ 32 रन की पारी खेली। 89 रन पर 3 विकेट गवा देने के बाद विराट कोहली ने एक छोर संभाले रखा और 25 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह विराट का IPL में सबसे तेज अर्धशतक था। विराट ने 42 गेंदों पर 3 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 75 रन की पारी खेलकर RCB को 5 विकेट से जीत दिलाने और लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। कोहली ने 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर RCB को चैंपियन बनाया।
3: That's it. He finishes off in style with a 6. It's back-to-back titles for RCB. They won it after 18 years. They win it in the 19th.
2: RCB ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 161 रन बनाकर खिताब जीता। फाइनल में विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद विराट कोहली ने कहा कि मैं इसी तरीके से मुकाबले को अपनी टीम के लिए जिताना चाहता था।
4: Well, Virat, many congratulations yet again a player of the match. You saved the best for the last.
5: It's stuff that you dream of. I've thought of this moment many times that you know once when we win the IPL I should be standing there hitting the winning runs and tonight it was possible. So yeah, just a dream day for us and as I mentioned straight after the game as well, we just felt really relaxed coming to the game today and really confident about how we wanted to go about our game and what kind of team we have and you, that gives you confidence to just you know see any kind of situation through. But yeah, in a chase I felt really comfortable out there knowing exactly what to do.

0: 2025 में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को हराकर आईपीएल का पहला खिताब जीता था। रजत पाटीदार की कप्तानी में बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार खिताब जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के एलीट ग्रुप में शिरकत कर ली है।
1: सो दिस वन इज फॉर यू अगेन आरसीबी फैंस। ई साला नु कप नमदू।
0: वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। प्रतियोगिता में सबसे अधिक 776 रन बनाने के लिए वैभव को ऑरेंज कैप से भी नवाजा गया। वैभव ने सबसे अधिक 72 छक्के लगाए और उन्हें सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन के साथ साथ इमर्जिंग प्लेयर का भी अवार्ड मिला। अवार्ड लेने के बाद वैभव ने कहा, इस प्रतियोगिता से मेरे खेल में बहुत सुधार हुआ है।
2: इस सीजन सर प्रेशर्स के गेम में कैसे खेलना है, अपने गेम को कब किस तरीके से चेंज करना है? हर गेम में आप एक मोड से नहीं खेल सकते हो, आपको गेम के सिचुएशन को रीड करके खेलना पड़ेगा और टीम का क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग खेलना पड़ेगा। तो ये चीज काफी सीखने को मिला प्लेऑफ्स के गेम्स में भी।
0: 17 वर्ष तक आईपीएल खिताब का इंतजार करने वाली आरसीबी का यह लगातार दूसरा खिताब है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उत्कृष्ट प्रदर्शन भारत के युवा एथलीटों के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस उपलब्धि से आने वाले वर्षों में और भी भारतीय युवा इस खेल में भाग लेंगे। गृह मंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि खिलाड़ियों की उपलब्धि भारत की अपार खेल प्रतिभा का प्रमाण है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेल क्षेत्र में लगातार प्रगति हो रही है और युवा शक्ति ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भारत ने हांगकांग में आयोजित हुई 4 दिवसीय प्रतियोगिता में 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया। चीन 14 स्वर्ण, 9 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ पहले, वहीं जापान 5 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य के साथ तीसरे स्थान पर रहा। और अब रुख करते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। इंडोनेशिया के जकार्ता में कल से इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भारत का नेतृत्व करेंगे।
4: सिंगापुर ओपन जीतने के बाद आत्मविश्वास से भरपूर भारत की स्टार पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल से इंडोनेशिया ओपन में भाग लेंगे। भारतीय जोड़ी अपने पहले मुकाबले में 4वीं वरीयता प्राप्त मलेशिया के कांग खाई शिंग और आरोन ताई से भिड़ेंगे। पुरुष डबल्स में भारत की दूसरी जोड़ी MR अर्जुन हरहरन अमसा करुणन का मुकाबला मलेशिया के नूर मोहद अजरीन, आयुष अजरीन और तान वी क्यूंग से होगा। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु अपने अभियान की शुरुआत बुसानहन आंग बांग रुंग फान से खेलेंगी। अन्य भारतीय खिलाड़ियों में मालविका मंसूर का सामना थाईलैंड की 7वीं वरीयता प्राप्त पोन पावी चोचुवोंग से होगा, जबकि उन्नति हुडा को पहले दौर में जापान की विश्व की नंबर 12वीं खिलाड़ी नोजुमी ओकुहारा जैसी मजबूत प्रतिद्वंदी मिली है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले मुकाबले में इंडोनेशिया के अलवी फरहान से भिड़ेंगे। वहीं किदांबी श्रीकांत का सामना जापान की युशी तनाका से होगा। आयुष शेट्टी का मुकाबला चीन के वेंग होंग यांग से होगा, जबकि HS प्रणॉय आयरलैंड के एनट के खिलाफ चुनौती पेश करेंगे। मिक डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो के साथ रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद इंडोनेशिया की फेब्रियाना द्वीपुजी कुस्मा और मेलिसा ट्रियास पुष्पिता सारी के साथ खेलेंगी। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
3: अब बात कर लेते हैं हॉकी की। पुरुष अंडर 18 हॉकी में आज एशिया कप के पूले मुकाबले में कोरिया को 4-1 से हराकर भारत ने शानदार जीत दर्ज की। कप्तान केतन कुशवाहा के 2 गोल किए। कुशवाहा ने 33वें और 36वें मिनट में गोल दागे, जबकि वरिंदर सिंह ने 5वें और शाहरुख अली 54वें मिनट में 1-1 गोल किया। भारत अब 3 जून को अपने अंतिम पूले मुकाबले में चीनी ताइपे से भिड़ेगा। अब रुख कर लेते फुटबॉल की ओर। भारत ने महिला SAFF फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय टीम ने कल गोवा के मारगांव स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-0 से हराकर चैंपियनशिप के ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं 11 जून से शुरू होने वाला फीफा फुटबॉल विश्व कप का प्रसारण भारत में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड करेगा। जी ने टूर्नामेंट से 10 दिन पहले आज फुटबॉल की विश्व संचालन संस्था फीफा के साथ 8 साल की भागीदारी की घोषणा की। रांची में आयोजित हुई फेडरेशन कप में 100 मीटर

0: फ्री स्टाइल दौड़ स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर ने कल मन की बात के 134वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने प्रतियोगिता में हुई कठिनाइयों और संघर्ष के बारे में जाना।
1: सिर्फ दो दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है। 100 मीटर रेस में दौड़ना कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है?
2: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
3: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है, तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई भी स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
3: सर जी, पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर वीर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कॉम्पिटिशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है, एंड हमारे हाथों में है वो चीज, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
2: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था भी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं, तो दोस्ती भी चाहिए सर। बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कॉम्पिटिशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
3: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ

0: mesmo que escumar. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: Both sides underscored the
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमा के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: of our shared future.
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनेरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: लाइन से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों की विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
3: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
0: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
3: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर DR पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-1041, 011-237-1717 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
6: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी।

आज के इंद्रधनुष कार्यक्रम में हम आपको सुनाने जा रहे हैं किशोर कुमार के गाए कुछ नगमे। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए, सुनिए कॉलेज गर्ल फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में। शिव कुमार सरोज के लिखे इस गीत को संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

एथेंस और 10.8 MHz पर आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं किशोर कुमार के गाए कुछ नगमे। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं मेरे जीवन साथी फिल्म से। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है RD बर्मन ने।

इंद्रधनुष कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं कटी पतंग फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

कटी पतंग फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 9:30 में हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। श्रोताओं, गर्मी का मौसम चल रहा है। ये मौसम जहां अपने साथ रसीले आम, तरबूज, लीची, खरबूज जैसे स्वादिष्ट फल लाता है, वहीं लू का प्रकोप भी। देश के कई हिस्से इस समय लू यानी हीट वेव से जूझ रहे हैं। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बारिश होने से गर्मी से राहत भी मिलती है। भीषण गर्मी के मौसम में लू कई बार जानलेवा भी साबित होता है। ऐसे में जरूरी है कि हम लू से बचाव के लिए सावधानियां बरतें। हमारा आज का कार्यक्रम इसी पर आधारित है। लू से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और लू लगने की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति की सहायता किस प्रकार करनी चाहिए, इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में

0: लीची खरबूज जैसे स्वादिष्ट फल लाता है, वहीं लू का प्रकोप भी। देश के कई हिस्से इस समय लू यानी हीट वेव से जूझ रहे हैं। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बारिश होने से गर्मी से राहत भी मिलती है। भीषण गर्मी के मौसम में लू कई बार जानलेवा भी साबित होता है। ऐसे में जरूरी है कि हम लू से बचाव के लिए सावधानियां बरतें। हमारा आज का कार्यक्रम इसी पर आधारित है। लू से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और लू लगने की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति की सहायता किस प्रकार करनी चाहिए, इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है। श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप इस पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमाशंकर वाजपेयी रायबरेली से। जी रमाशंकर जी,
1: नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था कि लू से बड़ी पुरानी सुनते आए हैं, लू में प्याज बहुत ही बचाव करता है और अन्य कोई भी साधन जिस तरह से लू से बचा जा सके वो कृपया बताएं।
2: रूपाली जी, जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि लू के समय में प्याज से बहुत बहुत ही बचाव मिलता है, तो इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस मेरे पास है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी, बट फिर भी जो हम पुराने समय से ये जो धारणाएं चलती आ रही हैं इनमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। तो आप प्याज जैसी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना फ्लूइड इनटेक यानी कि पीने की जो तरल पदार्थ जो होते हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लू के समय में बचने के लिए है एक एडिक्वेट फ्लूइड इंटेक यानी कि तरल पदार्थ का सही मात्रा में आपको आपको लेना है, और इसके अलावा आपको गर्म जगह से बचना है। मतलब अगर घर से बाहर जितना हो सके उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, घर जितना हो सके घर के अंदर रहना है, तो ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। खाने पीने में आपको जो भी आपको भी मौसमी फल जो मैडम ने अभी बताए तरबूज लीची आम इनका सेवन करना है, और तरल पदार्थ का आपको पर्याप्त मात्रा में सेवन करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है।
0: डॉक्टर रूपाली, आपने कहा कि पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लिक्विड लेना चाहिए, तो किस तरह के तरल पदार्थों को लेना ठीक रहेगा ताकि जो शुगर का जो लेवल है वो बॉडी में वो कंट्रोल्ड रहे?
2: आप नारियल पानी ले सकते हैं, आप आम रस आम पन्ना जो कि बहुत गर्मी के समय में बहुत ही एक कॉमन एक कूल ड्रिंक माना जाता है, बेल का रस, इस तरह के जो नेचुरल ड्रिंक्स हैं आप उनको प्रिपेयर कीजिए, आप उनको लीजिए और आप नॉर्मल अपना पानी लीजिए। और अगर आपको डिहाइड्रेशन क्रैम्प्स जैसी अगर फीलिंग आती है तब आप ORS का जो मेडिकल ORS जो अवेलेबल है उसका सेवन भी कर सकते हैं।
0: श्रीकांत झागड़े हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी क्या पूछना चाहते हैं आप?
3: हेलो
0: जी
3: नमस्कार।
0: नमस्कार,
3: मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ पुणे महाराष्ट्र से। मेरा दो सवाल है, ये बहुत अधिक गर्मी में जैसे थकान है चिड़चिड़ापन है बेचैनी लगती है, तो उसी स्थिति में क्या करना चाहिए? और दूसरा ये था कि ऐसे में मतलब ब्लड प्रेशर वाले ने क्या सावधानियां रखनी चाहिए, खासकर ना हाई बीपी वाले ने रखनी?
2: हाँ जी, देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि जो हाई बीपी के जो मरीज़ होते हैं वो बहुत समय इस तरह की कुछ दवाइयों पे होते हैं जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, एंड वो जो लोग होते हैं दे आर प्री डिस्पोज टू हैव हीट स्ट्रोक, मतलब उनको हीट स्ट्रोक की कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी कोमॉर्बिडिटी है या कोई और आपको बीमारी से अगर आप ग्रस्त हैं, कोई भी क्रॉनिक आपको डिजीज़ है COPD अस्थमा ब्लड प्रेशर की बीमारी शुगर की बीमारी, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को धूप से गर्मी से बचा कर रखें, क्योंकि इसमें आपका जो कार्डियो रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म्स हैं वो सब कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि

0: इस तरह के मरीज को खास ध्यान रखना है।
1: डॉक्टर पटनायक, आपसे हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि हीट वेव यानी लू क्या है।
2: देखिए, ये हीट वेव जो लू बोलते हैं बहुत भाषा में, तो हमारा जो समर टाइम में जो ज़्यादातर कि अप्रैल मई जून थोड़ा सा जुलाई पार्ट में भी, तो क्या टेम्परेचर जो तापमान है, ये तापमान है उसका साधारणतः नॉर्मल से कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो गर्मी का महीना है, गर्मी का महीना है तो टेम्परेचर साधारणतः ज़्यादा रहता है, लेकिन जो नॉर्मल होता है हमारा जो क्लाइमेटोलॉजी 30 साल का एवरेज जो उसको नॉर्मल बोलते हैं, उससे भी थोड़ा ज़्यादा होता है, कंटिन्यूसली कुछ दिन के लिए प्रिवेल करता है, तो वो हम उसको एक हीट वेव डिफाइन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम डेफिनेशन अगर हम करेंगे तो 40 डिग्री से अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो एंड उसका जो नॉर्मल से 4.5 से 6.4 तक अगर हो गया तो हीट वेव हम बोलेंगे। अगर उस 6.4 से भी ज़्यादा डिपार्चर जो कि नॉर्मल से ज़्यादा इतना हो गया तो सीवियर हीट वेव बोलेंगे। तो ये एक डेफिनेशन के हिसाब में हम जैसे कि नॉर्मल से अगर इतना तो करते हैं। और एक डेफिनेशन ये भी है कि अगर 45 डिग्री हो गया तो हम उसको हीट वेव कर देंगे।
1: लेकिन क्या ये अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग होता है? जैसे कोस्टल एरियाज के लिए अलग होगा, प्लेन्स के लिए अलग होगा।
2: हाँ, कोस्टल एरिया के लिए थोड़ा सा है कि कोस्टल एरिया में 37 डिग्री होने के बाद भी हमने हीट वेव करते हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया में जो ह्यूमिडिटी का थोड़ा प्रभाव रहता है ना, तो इससे कारण ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। तो अगर तापमान बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन जो ह्यूमिडिटी जो एयर का ह्यूमिडिटी होता है कोस्टल एरिया में उसको मिलता है, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा कोस्टल जो 37 डिग्री से ज़्यादा होना वो कोस्टल एरिया है।
1: और प्लेन्स के लिए?
2: प्लेन्स के लिए 40 डिग्री से ज़्यादा होना।
1: एक और श्रोता है हमारे साथ, राजू लवानिया आगरा उत्तर प्रदेश से। राजू जी
3: जी, मेरा नमस्कार डॉक्टर साहब को, दीदी आपको भी
1: नमस्कार।
2: नमस्कार
3: डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था जैसे घरेलू नुस्खों में तो खैर जैसे आम का पना है, बेल का शरबत है या नींबू पानी है, ये तो खैर पुराने जो नुस्खे हैं वो तो है ही, लेकिन मेडिकल साइंस में हीट वेव का परमानेंट ट्रीटमेंट और इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट क्या है?
0: जी देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है कि आप जो गर्मी वाली जगह है उससे दूर रहें। तो अगर कोई किसी को भी इस तरह के लक्षण अगर आते हैं तो सबसे पहले हमें उस व्यक्ति को फटाफट से गर्मी वाली जगह से दूर मूव करना है। उसके बाद हमें उनको ठंडे पानी की पट्टी करनी है और साथ में अगर पॉसिबल है तो एक पंखा करना है। आप थोड़ा पानी स्प्रिंकल करके और पंखा करें, पंखा करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उससे इवेपोरेशन से जब हीट उड़ती है तो उससे और ज़्यादा आपका हीट लॉस होता है, ज़्यादा देर की अगर आप खाली उस पर ठंडा कुछ रख देंगे। उसके अलावा आपको पंखा भी ऊपर से करना है, तो पंखे के आगे थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के थोड़ी ठंडी पट्टी करना। तो ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट इलाज है जो कहीं भी किया जा सकता है।
1: लू लगने पर क्या लक्षण दिखते हैं?
0: देखिए, लू के लक्षण बहुत तरह के हो सकते हैं। माइल्ड लक्षण हो सकते हैं जिसमें कि आपको हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं, स्किन रैश हो सकते हैं जिसको कि नॉर्मल भाषा में हम प्रिकली हीट बोलते हैं या घमोरियाँ बोलते हैं। तो उसमें आपको थोड़ा पाउडर डाल लेना है, कुछ एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिनिक दवाई जैसे कि सिट्रोजीन वगैरह है उसका आप यूज़ कर सकते हैं, और पानी आपको अच्छे से पीना और ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं और हल्के रंग के हल्के कपड़े, ढीले ढाले कपड़े वो आपको पहनने हैं। तो ये हुआ हीट रैश के लिए। हीट क्रैम्प्स में आपको हो सकता है कि थोड़ा अकड़न जकड़न महसूस हो, आपको हाथ पैर सीधा करने में दिक्कत लगे, मांसपेशियों में आपको जकड़न महसूस हो, तो इस स्थिति में आपको फ्लूइड्स का ध्यान रखना। ये डिसइलेक्ट्रोलीमिया जो हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस जो हो जाता है हीट के वजह से, वो उससे होता है। तो उस समय आपको मेडिकल जो ORS है, आप ना केवल जो बाकी तरल पदार्थ जो कि हम रूटीनली लेते हैं उसके अलावा आप मेडिकली जो ORS मिलते हैं, मेडिकल ORS, आप उनका सेवन करें अगर आपको हीट क्रैम्प जैसा सिस्टम हो।
1: गंभीर लक्षण क्या हो?
0: गंभीर लक्षण हो सकते हैं आपको हीट एग्जॉशन या फिर हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक सबसे सीवियर वैरायटी है जिसमें कि आपको बेहोशी, आपका एक तो जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो 40 डिग्री कोर बॉडी टेम्परेचर जो कि आपका रेक्टल टेम्परेचर आइडली होना चाहिए, ना कि सरफेस सतह वाला नहीं, कोर बॉडी जिसमें कि रेक्टल टेम्परेचर आइडियल माना जाता है, वो 40 डिग्री से ज़्यादा अगर आपका है तो वो, प्लस आपको कुछ भी बेहोशी का लक्षण, ऑल्टर सेंसोरियम जिसको बोलते हैं, लॉस

0: ऑफ कॉन्शियसनेस, इस तरह का कोई भी लक्षण है तो ये आप सबसे सिवियर फॉर्म जो होता है हीट स्ट्रोक का उसमें गिना
1: तो
0: जाता है।
1: अगर ऐसी स्थिति हो तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले तुरंत बिल्कुल उपलब्ध कराई जा सकती है घर पर।
0: फटाफट आप उनको ठंडी जगह, तो हल्के कपड़े, ढीले कपड़े और गीला करके, कपड़ा गीला करके पंखा उसके ऊपर करना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इवन अस्पताल में भी जो सबसे पहला ट्रीटमेंट दिया जाएगा यही दिया जाएगा। हीट स्ट्रोक दो तरह का होता है, क्लासिकल और एक्सर्शनल। तो क्लासिकल में आपको यही सबसे इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव मेथड है। जो एक्सर्शनल होता है उसमें बहुत बार हम इमर्शन भी बोलते हैं कि आप उसको ठंडे पानी में इमर्स कर दो, कि कपड़े सब हटा के किसी ठंडे पानी के टब में लिटाना, वो एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक में होता है। बट जो आजकल जो मिलता है उसमें क्लासिकल हीट स्ट्रोक है, और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अगर कोई बाहर हैवी वर्क कोई कर रहा है तो उसमें क्लासिकल और एक्सर्शनल दोनों तरह का हीट स्ट्रोक हो सकता है।
1: चौधरी महेंद्र सिंह मथुरा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। जी महेंद्र जी।
2: जी कनक जी नमस्कार।
1: नमस्ते।
2: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार।
0: धन्यवाद
2: जी। मैं चाहता हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में कितना पानी पिए और कितना पानी जरूरी है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे अच्छा एक स्वस्थ व्यक्ति पानी की पूर्ति हेतु बोतल लगवाता है, यानी डिस्टिल वाटर कहें या कुछ भी कहें उसे, तो आवश्यक है या नहीं?
0: ये देखिए, एक किसी भी अडल्ट व्यक्ति की जो बॉडी होती है उसका 70-80% जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पानी है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर जो अडल्ट व्यक्ति है कम से कम उसको 8-10 ग्लास पानी डेली पीना है। ये नॉर्मल सिचुएशन की बात है, लगभग एटलीस्ट कम से कम आपको 8 ग्लास पानी पीना है, क्योंकि आपका 70-80% जो आपका बॉडी का वेट है वो उसमें वाटर है, तो उसका जो रिप्लेनिश करने के लिए आपको कम से कम 2 लीटर आपको पानी पीना है। बट अगर हम आज के समय की बात करें, जब हम लू लगने की बात कर रहे हैं, तो उस समय आपको थोड़ा सा अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 से 3 लीटर आपको पीना ही है। इसके अलावा डिपेंडिंग कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, वहाँ कितनी गर्मी है, अगर आपको लगता है बहुत पसीना आ रहा है, बहुत वाटर लॉस है, तो आप इसके अतिरिक्त भी पानी पी सकते हैं। बट नॉर्मल स्थिति में 3-3.5 लीटर से ज्यादा पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वरना उसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं।
1: और ये भी ध्यान रखना होगा कि हम पानी पीने के नाम पर या लस्सी पीने के नाम पर बहुत ज्यादा मीठी चीजें
0: बिल्कुल मीठा तो अतिरिक्त बिल्कुल ना लें, और पैक्ड इसलिए जूसेस जो है वो अवॉइड करें। नेचुरल अगर आप लें वो फिर भी,
1: जो हमारे पुराने लस्सी, छाछ, बेल का शरबत, ऐसी चीजें ज्यादा अच्छी होती है। नींबू पानी
0: बिल्कुल।
1: डॉक्टर पटनायक, कई बार वार्म नाइट और वेरी वार्म नाइट की भी चेतावनी जारी की जाती है, तो ये कब किया जाता है और इसका क्या मतलब क्या होता है?
3: देखिए ज़्यादातर क्या होता है, तो दिन का तापमान तो हमेशा समर में हाई रहता ही है, तो उससे जो हम हीट वेव का डेफिनेशन करते हैं, दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है उसके ऊपर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दिन के साथ मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया, हीट वेव हुआ, उसके बाद नाइट जब आता है तो नाइट में भी क्या होता है, जो नाइट का टेम्परेचर तापमान है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो ज़्यादा हानिकारक होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाहर में रहते हैं, ये दिन का भी गर्मी झेल लिया, उसके बाद जब नाइट का भी टेम्परेचर, अगर उनके पास एसी नहीं है जो यूज नहीं करते, तो उसको हम वार्म नाइट कहते हैं। तो उसमें तो मिनिमम टेम्परेचर जो है आपका नाइट का टेम्परेचर, वो भी अगर 4.5 to 6.4 हो गया तो उसमें वार्म नाइट वो कर दे। तो वार्म नाइट जो है नाइट टेम्परेचर में, समर के टाइम में, लेकिन नाइट टेम्परेचर में अगर अधिक हो गया तो उसको वार्म नाइट कहे,
1: और वो भी खतरनाक होता है। धर्मवीर लाइन पर है हमारे साथ दिल्ली से। जी धर्मवीर जी।
4: हेलो नमस्कार जी, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ
1: जी।
4: हमारे एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे हम गांधीनगर मार्केट में रहते हैं और दुकान, हर प्रत्येक दुकान में एसी चलते हैं, एक दो, तो एक तो उनकी भी हीट निकलती है, मार्केट में निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी बच्ची से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग सावधानी क्या बरतें हैं, जाना भी जरूरी होता है। और दूसरा मेरा ये पूछना है कि डायबिटीज मरीजों को सिकंजी और ओआर का घोल लेना ठीक है कि नहीं? और तीसरा एक और पुरानी एक बात याद आती है, बुजुर्ग कहते थे, जैसे कहते थे कि लोहा लोहे को काटता है, ऐसे जो गर्मी गर्मी को मारती है, बैलेंस बराबर करती है, अगर जितनी ज्यादा गर्मी हो आप चाय पी लें कॉफी पी लें तो बैलेंस बना रहता है, कोल्ड ड्रिंक लेना ठीक रहता है कृपा करके।
0: हाँ जी देखिए कोल्ड ड्रिंक लेना तो नहीं ठीक है ना, बट जो आप नेचुरल जो चीज़ें हैं जो आपको वैसे ठंडक प्रदान करती हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप बेल रस पी सकते हैं या फिर आप नींबू पानी ले सकते हैं, तो जो नेचुरल चीज़ें कोकोनट वाटर ले सकते हैं, तो जो तरल चीज़ें हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है। इसका मतलब कोल्ड ठंडा लेने से आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक लेने से आपकी शरीर को कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ें नहीं अवॉइड करनी है, नहीं लेनी है, वो अवॉइड करनी है। और जो आपने कहा शुगरी ड्रिंक, क्या डायबिटीज़ के मरीज़ को हम दे सकते हैं? नहीं, वो अवॉइड करनी है। नींबू पानी अगर आप देंगे उनको तो आप बिना चीनी के दीजिए, नमक वाला नींबू पानी दे सकते हैं, सॉल्टेड नींबू पानी दे सकते हैं, या आप उनको लस्सी दीजिए छाछ वाली जो होती है, जो कि नमकीन लस्सी होती है, तो उनको उस कोकोनट वाटर आप दे सकते हैं।
1: जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम लू से सुरक्षा और सावधानियों पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित उपाध्याय बिहार से। अमित जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी
5: हाँ हाँ जी जी मैं सुन पा रहा हूँ। मैं सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ अमित पद्य। मैं ये मेरा ये सवाल था कि जैसे कि पिछले हम लोग देख रहे हैं तुलना करें और पिछले साल के हर एक साल से तुलना करें तो गर्मी का जो टेम्परेचर है वो लगता है बढ़ते जा रहा है। तो जैसे कि पहले टेम्परेचर हाई, अभी जैसे मई में ही टेम्परेचर इतना 45 प्लस जा रहा है, 48 तक आ जा रहा है। तो हम ये मेरा ये प्रश्न है कि स्वस्थ शरीर जो जिसका शरीर में कुछ नहीं है जाँच करने पर भी वो भी चलते चलते कभी कभी गिर जाते हैं अचानक से, उनका भी बेहोशी वह कुछ वैसे हो जाता है। तो हम लोग इसमें क्या और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि खूब पानी पीना जो भी डॉक्टर साहब बताते हैं वो सब हम लोग करते हैं, इसमें और क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं ताकि हम लोग स्वस्थ रह सकें? जी
0: देखिए जब भी आप बाहर निकलें कुछ एक आप छतरी लें या कपड़ा लें, गमछा जैसा कि कहा जाता है, गीला करके लें तो और भी अच्छा है। तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना। देखिए नॉर्मल व्यक्ति में भी ये चीज़ हो सकती है, जिसको पहले से कोई बीमारी है वो ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड है क्योंकि उसके रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। एंड स्पेशली जैसे कि कोई एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो लेते हैं ख़ास तौर से, वो लोग बहुत ही प्रीडिस्पोज्ड होते हैं इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस के लिए, हीट स्ट्रोक के लिए, क्योंकि उसमें पूरा टेम्परेचर रेगुलेशन उनका डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो लोग खास ध्यान रखें। और जो नॉर्मल व्यक्ति है तो बाहर निकलते समय ये सब प्रिकॉशंस लें, फ्लूइड्स लें, तो इतना ही है आप कर सकते हैं। और अगर कोई सिम्टम आपको लगता है हीट एग्जॉशन का या हीट स्ट्रोक का, तो इमिडिएटली ठंडी जगह पे मूव करके गीला कपड़ा रख के आप हवा कर सकते हैं।
1: तो हीट वेव किसी को भी प्रभावित कर सकता है, पर जैसा कि आपने बताया कि जिनको शुगर है या जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें इसका ज़्यादा खतरा रहता है। और कौन कौन से ऐसे वर्ग हैं, मतलब कैटेगरी क्या क्या है जिनके लोगों को इसका खतरा?
0: किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ का अगर कोई मरीज़ है, कोई अस्थमा है, कोई COPD है, कोई हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है, कोई कैंसर कीमोथेरेपी पे है, ये सब भी प्रीडिस्पोज्ड हैं। बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, ये सभी जो हाई रिस्क ग्रुप्स में ही आते हैं।
1: तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के जो आपने बात की उसमें क्या असर पड़ता है उस पर, उसके होने वाले बच्चे पर हीट वेव का?
0: देखिए जब आप हीट, अगर आप हीट से एक्सपोज्ड हैं तो आपको पेरिफेरल वेजो डायलिटेशन होता है, यानी कि आपकी जो पेरिफ्रीज की जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट आपके बॉडी से बाहर निकल सके। उसकी वजह से थोड़ा वॉल्यूम जो है आपका बाकी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई, उसके लिए ब्लड कम हो जाता है। तो ऐसे में जो बच्चा है उसका ब्लड सप्लाई भी कम हो सकता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम कोशिश करें ऐसी गर्मी की जगह से बचा कर रखें, और फ्लूइड, फिर से वही बात है, तरल पदार्थ का जितना हो सके सेवन करें।
1: महाराष्ट्र से कोल्हापुर से विजय कुमार स्वामी है हमारे अगले श्रोता।
6: हाँ जी
1: जी,
6: हाँ कनक जी, नमस्ते।
1: नमस्ते।
6: हाँ जी जी को भी नमस्ते सर। नमस्ते।
0: नमस्ते।
6: हाँ विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवा, तहसील शिवर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ मैं।
1: जी जी।
6: हाँ मेरा सवाल यह है कि अभी दिन रात पंखे जो चालू है
1: जी,
6: इसका हमारे शरीर पर कुछ असर हो सकता है क्या?
1: पंखे का असर तो गलत नहीं होगा।
0: नहीं, पंखे से फायदा है, बट अगर 40 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर है तब केवल पंखा चलाने से फायदा

0: गई हैं, तब आप एसी चला के एसी का टेम्परेचर 27 डिग्री रख के साथ में आप पंखा चलाएंगे तो उससे और आपको 4 डिग्री कम महसूस होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एसी का टेम्परेचर 15, 20, 22, 21 नहीं रखना है, 27 रखना है
1: जी,
0: ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉसिबल। और साथ में आप थोड़ा फैन तब चलाएंगे तो वो और मदद करेगा। और जैसे कि पहले वो मैं पूछ रहे थे कि हम सब जगह एसी चल रहा है, इतना गर्म है, तो और हम क्या कर सकते हैं? आपको जितना हो सके अपने छतों पे ग्रीन प्लांटेशन करना चाहिए, उससे थोड़ा सा आपका जो है
1: घर का तापमान थोड़ा
0: तापमान जो है कंट्रोल रहेगा।
1: हाँ जी, और घर के आसपास भी पौधे लगाने चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: हमारे एक श्रोता ने व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछा है डॉक्टर पटनायक कि आईएमडी की एडवाइजरी और मौसम संबंधी अपडेट आम लोग कहाँ से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
2: आईएमडी जो
1: ये मयंक शेखर जी, मैं आपको नाम बता दूं, मयंक शेखर मिश्रा हैं, ये वाराणसी से उन्होंने पूछा है।
2: हाँ, वाराणसी भी बहुत गर्मी जगह है और वहाँ पे बहुत लस्सी ये सब जो इसलिए भी चलता है। तो देखिए, जो हम जो आईएमडी जो देता है सूचना, जो हीट वेव का अर्ली वार्निंग जो बोलते हैं हम, उन बहुत सारे मेकानिज्म में हम देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, पहला तो एक है कि हम हमारा वेबसाइट में देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वेबसाइट नहीं करते अपडेट, मान लीजिए वेबसाइट नहीं देते। दूसरा हमारा जो ऐप वगैरह है उसमें भी हमारे इसका जानकारी देते हैं। ऐप के साथ साथ हम आजकल क्या कर रहे हैं, हर दिन एक वीडियो बनाते हैं, हम वीडियो बनाते हैं, उसको अपलोड किया जाता है, तो उसमें आपका पुरका जानकारी जो यूट्यूब में अपलोड किया जाता है, तो जो जो लोग उसको भी एक्सेस करते हैं उसमें से मिल रहा है, आपको ऐप से मिलेगा, व्हाट्सअप में मिलेगा, देन सोशल मीडिया फेसबुक आईएमडी का अगर कोई है जिनका अकाउंट अगर करेंगे तो उसमें मदद मिलेगा। तो ये तो ऑल इंडिया लेवल में भी है, और हमारे जो रीजनल सेंटर वगैरह, जैसे कि वाराणसी से उन्होंने बताया भाई साहब, तो लखनऊ में हमारा जो रीजनल मेट सेंटर्स है वहाँ से जो रीजनल और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इंफॉर्मेशन, उनका वेबसाइट एक अलग होता है, उनका जो डाटा बेस है जहाँ जहाँ मैसेज जाता है उनका सारा सब उन्होंने रखा है। तो हर तरह का मीडियम से हम लोगों को करते हैं।
1: इन्होंने ये भी पूछा है कि दिन के कुछ वो विशेष समय क्या है जब लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए इतनी भीषण गर्मी में?
2: ठीक है, ये दिन में जब टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो लगभग अराउंड 2:30 के आसपास, 3:30 इसी में होता है दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर। लेकिन सुबह से गर्मी शुरू हो जाता है, गर्मी टेम्परेचर भी बढ़ता है, और दूसरी बात क्या होता है कि जब नीचे का ज़मीन भी गर्म हो जाता है वहाँ से भी टेम्परेचर ऊपर रेडिएट होता है। तो ये दोनों का जब ये होता है तब मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। तो आपका इसलिए मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग उसी टाइम में 2:30 के बाद आता है, जबकि पहला 12 बजे बचपन टाइम नहीं आता है, 2:30 के बाद 3 बजे अराउंड उसमें आता है कि जब दोनों तरफ से रेडिएशन आता है। तो इसलिए उसी टाइम में नेचुरली जब डायरेक्ट सनलाइट है 11 बजे के बाद एटलीस्ट डायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा तेज है उस टाइम अवॉइड करना चाहिए। जब मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है, जब गर्मी धरती के नीचे गर्मी हो गया, गर्म हवा भी नीचे से फेंक रहा है, तो वो भी 3-4 बजे तक तो अवॉइड करना,
1: मतलब 11 से 4 तक अवॉइड करना चाहिए जहां तक हो सके। अगला सवाल है रवि जवालिया जी का हरिद्वार से।
3: हाँ जी, नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार
3: जी, मैं रवि जवालिया जड़वीरपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ, और सभी सभी विशेषज्ञ को और आपको भी नमस्कार बोल रहा हूँ जी, और आप सभी को और मेरे सभी श्रोता गणों को भी अभिभावक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जी।
1: जी आपको भी।
3: हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कोरगेटन मशीन से गत्ता कंपनी में काम करता हूँ, वो मशीन थोड़ी हीट जनरेट करती है, तो मुझे वहाँ पे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी शायद गर्मी का एहसास होता ही है सभी को। तो मैं अपने माध्यम से वैसे तो मुझे पता है, मैं श्रोता उसको भी जान मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि क्या मुझे उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए मैम जी।
1: ये जहाँ काम करते हैं वो मशीन से गर्मी निकलती है काफी, तो क्या सावधानी इनको बरतनी चाहिए?
0: तो जितना हल्का कपड़ा हो सके आप उतना हल्का कपड़ा पहने, और फिर वही अगर एक गीला कपड़ा आप सिर के आसपास लगा सकते हैं तो वो आई थिंक आपको थोड़ा मदद करेगा, और लिक्विड चीजें लेते
1: हैं। ये तो हम आपको बार बार बता रहे हैं, डॉक्टर साहब बार बार बता रहे हैं कि आपको जितना हो सके उतना तरल पदार्थ लिक्विड लेना है,
0: और आसपास कहीं पंखा है तो आप पंखा
1: बीच बीच में आप जा सकते हैं वहाँ। डॉक्टर रूपाली, बहुत छोटे बच्चे जो अभी अपनी स्थिति नहीं बता सकते हैं, ऐसे बच्चों के

0: अभिभावक कैसे समझ पाएंगे कि बच्चे को लू लग गई है?
1: जी बिल्कुल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि तो बच्चों को गर्मी के समय, जैसा सर ने बताया, 11 से 4 के बीच में आप घर से बाहर ना भेजें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा लू लगने का रिस्क होता है। और बच्चों को हमें बहुत इंश्योर करना है कि वो कम से कम 8 गिलास पानी ज़रूर पिए, क्योंकि इस समय हो सकता है बच्चा पानी कम पी रहा है। तो हमें उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चों का फ्लूइड इनटेक ठीक रहे, 11 से 4 के समय वो बाहर ना निकले। और बाकी अगर लगता है कि बच्चा कुछ भी सुस्तीपन दिखा रहा है,
0: जैसे बहुत छोटा बच्चा,
1: बिल्कुल
0: जो बहुत, का बच्चा
1: बिल्कुल
0: है,
1: बिल्कुल
0: उसके लिए
1: सुस्तीपन, दूध नहीं पीना, अगर बच्चा इतना छोटा है, बिल्कुल अगर दूध नहीं पीना या बुखार होना, तो इमिडिएटली आपको किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी को विजिट करना है और उनकी मदद लेनी है। और बच्चों को भी ढीले कपड़े, सर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हल्के फुल्के हवादार ढीले कपड़े।
0: अगला सवाल है राकेश जी का शिमला से।
2: जी नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी, मेरा दो सवाल है। पहला सवाल तो ये कि जब गर्मी बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, और कितना घातक है। और दूसरा सवाल मेरा ये कि जैसे कि अब हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र में गर्मी भी बढ़ रही है, तो इसमें मैदानी क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा? ये मेरे दोनों सवाल है।
0: जब हिल स्टेशन पे गर्मी बढ़ने लगी है तो प्लेन्स पे और भी गर्मी होगी, इनका ये पूछना है कि क्या असर पड़ेगा प्लेन्स में।
3: देखिए, जैसा कि हिल स्टेशन में थोड़ा सा हमारा ये है कि हिल स्टेशन में थोड़ा तापमान प्लेन स्टेशन से थोड़ा कम रहता है, ठीक है, तो इसलिए जैसा कि प्लेन स्टेशन से भी लोग जाते रहते हैं। तो बट आजकल क्या होता है, क्लाइमेट चेंज है, तो हिल एरिया में भी जो जैसे कि पहला इतना गर्मी नहीं होता था, आजकल हिल एरिया में भी गर्मी महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए तो हिल स्टेशन के लिए तो गर्मी आपका धीरे धीरे भी हो रहा है, पहले जो इतना नहीं हो रहा था इसलिए। लेकिन प्लेन एरिया में तो आपका उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि प्लेन एरिया में तो थोड़ा गर्मी का ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो ऑलवेज थोड़ा सा ज़्यादा है हिल स्टेशन के ऊपर। तो इसलिए हिल स्टेशन में जब हो रहा है तो उसका प्रभाव प्लेन में नहीं है, लेकिन उसका प्लेन में भी रहेगा, जब हिल में हो रहा था तो प्लेन में भी रहेगा।
0: डॉक्टर पटनायक, हीट एक्शन प्लान्स क्या है?
3: हाँ, हीट एक्शन प्लान क्या होता है कि पहला क्या हो रहा था, जब ये एक्शन प्लान नहीं होता था तो हीट क्या धीरे धीरे किल करता है, तो हीट वेव के कारण भी धीरे धीरे ग्रेजुअली डेथ जो है, नंबर ऑफ डेथ बढ़ता गया। तो गुजरात साइड में पहला ये महसूस हुआ कि बहुत सारे जो हीट रिलेटेड डेथ बढ़ रहा है, तो देखा गया कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, बहुत अनजान के कारण लोग क्या करना है क्या नहीं करना है ये नहीं जानते थे, इसलिए बहुत एक्सपोजर होता था, क्या एक्शन लेना है उनको पता नहीं था, तो इसलिए लोग थोड़ा डेथ 2010-12 में ऐसा हुआ। तो उसमें हीट एक्शन प्लान जब स्टार्ट हुआ, उसमें क्या होता है, एक जो जो भी इस राज्य में जहाँ हीट रिलेटेड ये सब इफेक्ट रहता है, तो उन्होंने वन बाय वन थोड़ा हीट एक्शन प्लान शुरू किया। तो पहला मान लो गुजरात में हीट एक्शन प्लान शुरू किया, तो हीट एक्शन प्लान में क्या होता है, ये बहुत सारे म्यूनसिपल लोग जो होते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, IMD के जो अर्ली वार्निंग देते हैं, और ये बाकी जो जो जो एडवाइजरी इशू करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पानी, ये सारे जो है एक तरीके से रहता है। तो पहला उनको क्या होता है, एक हमारे डिपार्टमेंट से अगले 5 दिन अगले 7 दिन के लिए तापमान कैसा रहेगा, वो एक पहला इन्फॉर्मेशन हो गया। तो वो इन्फॉर्मेशन के बाद फिर म्यूनसिपल जो होते हैं वो अपना काम करते हैं, अगर पानी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर ज़्यादा लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो उनको फिर मेडिकल अटेंशन देना जाता है।
0: डॉक्टर पटनायक, अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर DR पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक, आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कनकलता को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: FM 106.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं जफर हुसैन खान बदायनी के इस कव्वाली से।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इको सिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता

0: राज्य के विकास की नगर सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत कार्यक्रम का अगला नगमा ये सुनते हैं उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की आवाज में।

यामिनी दास का नगमा अभी आप सुन रहे थे, फनकार थे चंदन दास। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं गुलाम अली की गाई ये गज़ल।

गुलाम अली की गाई सी गज़ल के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 10:30 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं तीन देवियां फिल्म के इस गीत से, जिसे आवाज़ दी है किशोर कुमार और आशा भोसले ने। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है SD बर्मन ने।

फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में, आंखें फिल्म से। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है रवि ने।

आखिरी फिल्म के इस गीत के बाद आइए अब सुनते हैं प्रिंस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: ओ जाने तमन्ना किधर
1: FM 100.8 MHz पर आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में तीसरी कसम फिल्म से शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ताजमहल फिल्म का गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में चोरी चोरी फिल्म का गीत। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

और कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं 20 साल बाद फिल्म का गीत हेमंत कुमार की आवाज़ में। शकील बदायूनी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है हेमंत कुमार ने।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 11 बजे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ

0: मिन ऑनलाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitrakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुँच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन नवी ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेड बाय अपराजिता नायर। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said, both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said, Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 11:10 में हैं। अब हमारी आज की सायंकालीन सभा के प्रसारण यहीं पर संपन्न हो रहे हैं। कल प्रातः 5:55 पर हम अपनी पहली सभा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।